0: और अमित कुमार की प्यारी सी आवाज में अभी आपने सुना तेरी कसम फिल्म से लिया गीत, और इस गीत को संगीतबद्ध किया था आर डी बर्मन ने। श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद।
1: आज तो पार्टी चाहिए, चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंक

0: पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
0: RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि लगातार हमें ईमेल प्राप्त हो रहे हैं, आपकी फरमाइश भी हमें मिलती जा रही है ईमेल के माध्यम से, और हमारी भी कोशिश यही है कि हम आपकी पसंद के ये सभी गीत जरूर इस कार्यक्रम में शामिल करें और आपका मनोरंजन करें और आपके इस वीकेंड को और भी खूबसूरत बनाएं। वैसे इस कार्यक्रम के जरिए हमारा आपसे एक सवाल है, आपका परफेक्ट वीकेंड आखिर कैसा होता है? देर तक सोना, दोस्तों के साथ घूमना, फिल्म देखने जाना, या फिर अधूरे कामों को पूरा करना, पसंद का खाना खाना भी हो सकता है। और कहते हैं ना कि एक दिन खाने के नाम पर चीट डे, तो क्या आप वो चीट डे भी आज के दिन ही मनाते हैं? क्या ऐसा भी करते हैं आप? कैसे प्लान करते हैं या प्लान कर चुके हैं आप अपने वीकेंड को? हमें ईमेल के माध्यम से जरूर बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ इस प्यारे से कार्यक्रम में। तो आइए सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गीत।

तो श्रोताओं, इस गीत को सुनने के लिए हमें जो फरमाइश मिली है वो मिली है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, तिल्लू नायक और मधु नायक की। साथ ही साथ हमें ईमेल मिला है संदीप, ज्योति, मन्नत, भरत और कमल साहनी का, जो कि जालंधर से हमें ईमेल कर रहे हैं। हमें फरमाइश मिली है जो हमारे गीत सुन रहे हैं, हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, प्रसारक महोदय को नमस्कार के साथ बहुत ही अच्छा मेल इन्होंने लिखा है और जो गीत सुनने की फरमाइश भेजी वो हमने सुनवाया। अमरावती से सिद्धार्थ गुंडा ने, अर्चना ताई, हीरामन शिंदे और प्रणय प्रसिद्धि प्रतिभा गुंडा ने, यानी कि परिवार के सभी सदस्य। साथ ही साथ हमें जो एक ईमेल मिला है और बहुत ही अच्छी बात भी लिखी है कि अधूरे कामों को पूरा करते हैं और सबकी पसंद का खाना बनवाते हैं, साथ में बैठकर खाते भी हैं। तो जिस तरह से हमने पूछा था कि आप अपना वीकेंड किस तरह से मना रहे हैं, तो अब्बासी परिवार की तरफ से हमें ये ईमेल मिला है बुलंदशहर से, जो बता रहे हैं कि आज का वीकेंड वो किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज अब्बासी, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों के साथ हमें ये ईमेल मिला है। साथ ही साथ उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश, जो कि हमारे इस कार्यक्रम को लगातार सुन भी रहे हैं, हमें ईमेल भी इन्होंने लिख करके भेजा है। साथ ही मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, रितिका, बलवीर सिंह, जो कि मुरादाबाद से हैं, उत्तर प्रदेश, इन्होंने भी हमें ईमेल लिख भेजा है। तो आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और लगातार हम आपकी पसंद के गीतों को अपने इस कार्यक्रम में शामिल भी कर रहे हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में श्रोताओं अभी आपने सुना ये गीत, और हमें दिलावर खान का रघुबीर नगर से ये ईमेल मिला है और लिख रहे हैं कि हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है अपनी गलतियों को सुधारने और सपनों को पूरा करने की। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि हर सुबह नए अवसरों के साथ आती है, नए उत्सव के साथ आती है और नई उम्मीदों को लेकर के भी आती है, तो हर दिन नई शुरुआत होती है। बीते दिनों को भूलिए और नए दिन की शुरुआत एक अच्छी सुबह के साथ कीजिए। ये ईमेल हमें दिलावर खान, हसीना बानो और अलीजा नायब और लड्डू का मिला है। साथ ही साथ हमें गीत सुनने के लिए जो फरमाइशें लगातार ईमेल के माध्यम से मिल रही है, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, साथ ही साथ कार्यक्रम को सुन रहे हैं जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकेस्ट्रो, रोजी पर और विलेस, आपका मेल भी हमें मिला है जिसे हमने अपने कार्यक्रम में शामिल कर लिया है। तो आप लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने रहिए और सुनते रहिए आप ही की पसंद का ये कार्यक्रम। हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और तमन्ना भाटिया का ईमेल भी हमें मिला है। साथ ही साथ हमें जो शाहदरा दिल्ली से एक ईमेल मिला है, तुलसी मस्किन जो लिख रहे हैं कि नमस्कार लिखने के साथ साथ कि हम आपके निरंतर कार्यक्रम को सुनने वाले श्रोता हैं, तो कृपया हमारे ईमेल को भी अपने कार्यक्रम में शामिल कीजिए। तो आपका ईमेल हमने शामिल कर लिया है, आप यूं ही अपने इस कार्यक्रम को सुनते रहिए। और साथ ही साथ हमारे लोहगढ़ ठाकुरावाला से हमें जो ईमेल मिला है, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरनाल और अविराज सिंह का, इसी कार्यक्रम में हमें ईमेल मिला है असलम खान, रेशमा खान।

और उनकी पोती जर्मेश और तैमूर खान नंगली जाजू जो कि बिजनौर से लिख रहे हैं और ये भी लिख रहे हैं कि रेडियो प्रोग्राम जो है वो हम लगातार सुनते हैं, हम रेडियो के सभी कार्यक्रम सुनते हैं, यानी कि हम आपके निरंतर श्रोता बने हुए हैं। साथ ही साथ हमें एक और ईमेल मिला है मध्य प्रदेश के इंदौर से, नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे का, स्वाति, प्रयाग चौधरी, कुमारी लड्डू, देविका चौधरी ने भी हमें ईमेल लिख भेजा है और आप सभी की पसंद पर हम गीत सुनवा रहे हैं अपने इस कार्यक्रम में। एक और हमें ईमेल मिला है जो लिख रहे हैं कि हम अपने वीकेंड को घर की साफ सफाई और अधूरे काम पूरे करने में खर्च करते हैं। तो बिल्कुल, कोई सैर सपाटा करता है, दोस्तों से मिल मुलाकात, तो कोई घर के जो अधूरे काम है उन्हें पूरा करने में व्यस्त रहते हैं, यानी कि अलग अलग तरह से अपने वीकेंड को सभी लोग मनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन सरगम भी हमसे है और हम ही से ये जहां है लगातार, इसीलिए हम सुर और संगीत के कार्यक्रम के साथ आपके साथ मुखातिब हैं। कुछ ऐसा ही ख्याल आपके मन में भी आता होगा, कि ख्याल ये भी आता होगा कि आज घड़ी की टिक टिक हमें परेशान ना करे। पूरे सप्ताह तो हम घड़ी को देखकर वक्त के साथ साथ भागते रहते हैं, ऑफिस का टाइम, स्कूल, कॉलेज, मीटिंग, तमाम तरह के काम होते हैं, लेकिन वीकेंड आते ही दिल कहता है भाई आज टाइम क्या है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क इससे जरूर पड़ता है कि हमारा जो वक्त है वो खूबसूरत होना चाहिए, यादगार होना चाहिए। सही कहा ना? तो आइए अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनवा देते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़ी, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
0: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
1: कहाँ से पता चलेगा?
0: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
2: आज ही सर्च करूंगा।
0: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: वैसे क्या है ना श्रोताओं, वीकेंड हमें हमेशा याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ काम का नाम नहीं है, थोड़ा रुकना भी जरूरी है, अपनों से बात करना भी जरूरी है और खुद के लिए समय निकालना भी बहुत जरूरी है। तो आज की आपकी जो भी प्लानिंग हो, लेकिन उसमें से कुछ वक्त अपने आप के लिए जरूर निकालिए, अपनों से बात करने के लिए जरूर निकालिए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे ना तो पूरे सप्ताह के जो वर्किंग डेज होंगे ना, एक अलग ही तरह का आप में उत्साह नजर आएगा, एक अलग ही तरह की जो फ्रेशनेस जिसको हम कहते हैं ना, वो नजर आएगी, क्योंकि ये जो अपनों का साथ है यही तो है जो हमें उत्साह और उमंग से भर देती है। तो आइए अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र की आवाज में अगला गीत। और इस गीत को सुनने के लिए हमें जो फरमाइश मिली है वो मध्य प्रदेश सनावत से मिली है। मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी, रमेश चंद्र खेमुसा, भाई राजकुमार बोडाना और साथ ही साथ लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप। साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम को जो श्रोता सुन रहे हैं, मोहम्मद रफी साहब का गीत सुनने की फरमाइश इन्होंने भेजी है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश को हम जरूर पूरा करेंगे और लेकिन आपका नाम जरूर हम अभी शामिल कर लेते हैं। आशु चूक, अश्विनी चूक, गोविंद चूक, टोनी दीवान, लव दीवान और राधे भाविक ढिंगरा। तो इसके साथ ही हमें जो ईमेल मिल रहा है, राजू अग्रवाल, केशव मांगेराम चौधरी जो कि हरियाणा हिसार से हमें लिख रहे हैं, और इसके साथ साथ हमें जो एक और ईमेल मिला है वो मिला है ग्राम मंगेसापुर कानपुर से, रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, निशा, प्रज्ञा, प्रतिमा, वेद बाबू और समस्त कठेरिया परिवार जो कि लिख रहे हैं कि आपकी पसंद कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा कार्यक्रम जो है इसमें आप हमारा ईमेल जरूर शामिल कीजिए। तो आप निश्चिंत रहिए, आपका ईमेल, आपका नाम और परिवार के सभी सदस्यों का नाम हमने इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया है। साथ ही साथ हमें एक और ईमेल मिला है कृष्णा कॉलोनी से, सुभाष योगी, सुशील, बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी और बबीता मिगलानी का। मेरठ केंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ भी हमें ईमेल कर रहे हैं और लगातार वो हमारे कार्यक्रम को सुन भी रहे हैं। इसके साथ साथ जोधपुर राजस्थान से जो हमें ईमेल मिला है, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष का। तो आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है, तो आइए अपने इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में ये गीत। और इस गीत को सुनने के लिए हमें जो फरमाइश मिली है, बलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिम्पल हमें ईमेल लिख रहे हैं, जो कि हमारे कार्यक्रम को निरंतर सुन रहे हैं। साथ ही साथ इसी गीत को सुनने के लिए हमारे पास जो फरमाइश मिली है वो मिली है नाज मंजिल महसूल सीतामणि से, अकरम हुसैन, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना, आरिज वसीम, नदीम, शमीम, ममता रानी, पूनम कुमारी और बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निखत परवीन। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: जीवन की सरगम हो आई है।
1: तो श्रोताओं, अपने मन के राजा भी आप ही हैं। अपने इस वीकेंड को आपने जो भी कुछ प्लान किया है खूबसूरत अंदाज के साथ बिताइए और कल फिर से काम पर लौट जाइए नए उत्साह और नई उमंग के साथ, नई एनर्जी के साथ। हमारा ये कार्यक्रम आपकी पसंद अब संपन्न होता है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन कर नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने 26 तारीख से लागू हो गया।
3: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 20 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
2: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय

0: 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृतिक के विशेष अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। इसमें एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और रक्षा, स्वास्थ्य और एग्रीटेक जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियाद बताया। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने उन्हें कई बार वापस लौटने की चेतावनी दी, लेकिन वे सीमा बाढ़ की ओर बढ़ते रहे। इसके बाद बीएसएफ को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भी तलब किया है। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिब्याह ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और लाल सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान के एक दिन बाद आया है। श्री पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष समाप्त करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। अमरीका में भारतीय दूतावास ने वर्जीनिया के ग्रेवली प्वाइंट पार्क में विकसित भारत एकता दौड़ का आयोजन किया। इसमें भारतीय मूल के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान योग और ध्यान का आयोजन भी किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी सैकड़ों इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैकड़ों की याद में आयोजित की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्याम जी कृष्ण वर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय जनमानस में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भावना को जगाने और पोषित करने में श्री कृष्ण वर्मा के अथक प्रयास देश की स्वाधीनता संग्राम का अभिन्न हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने अपना पूरा जीवन भारत की स्वतंत्रता को समर्पित कर दिया। 20वें एशियाई खेल आज सम्पन्न हो रहे हैं। समापन समारोह जापान के नागोया शहर में भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक जीतकर तालिका में चौथे स्थान पर रहा। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted several parliamentary committees related to different ministries. BJP MP Bharthru Hari Mehtab has been appointed as the chairperson of the Committee on Finance, comprising 21 members from the Lok Sabha and 10 from the Rajya Sabha. Mr. Birla has appointed Congress MP Shashi Tharoor as chairperson of the Committee on External Affairs. It includes 21 members from the lower house and 10 from the upper house. While the Committee on Railways will be headed by BJP MP Sudhir Gupta, Mr. Birla has appointed Lok Sabha MP Dr. Kakoli Ghosh Dastidar as chairperson of the Committee on Chemicals and Fertilizers. The Ministry of Education has approved 5 centers of excellence for studies in classical languages. Department of Higher Education has approved the establishment of 5 centers of excellence for studies in classical Assamese, classical Bengali, classical Marathi,

दे पान। और श्रोता, इसी के साथ आज का सबरस कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और श्रोताओं, लीजिए अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं तन्वी भट्टाचार्य का गायन राग है शुद्ध सारंग।

0: वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं

0: के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये केंद्र असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत भाषा के विशेष अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे।
1: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता दान करेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा

0: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। भारत ने पाकिस्तान से जारी घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब की फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियाद बताया। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 घुसपैठिए पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। कई बार वापस लौटने की चेतावनी देने के बाद सीमा सुरक्षा बल को कार्रवाई करनी पड़ी। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भी तलब किया है। यूक्रेन के रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत का प्रस्ताव सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिब्याह ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान के एक दिन बाद आया है। श्री पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष समाप्त करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। अमरीका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने भारतीय पायलट स्मित मच्छर के अदम्य साहस की सराहना की है। श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने एक भयावह घटना होने से बचा ली। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने वर्जीनिया के ग्रेवली पॉइंट पार्क में विकसित भारत एकता दौड़ का आयोजन किया। इसमें भारतीय मूल के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान योग और ध्यान का भी आयोजन किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी सेंखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की याद में आयोजित की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाया और आजादी की भावना जगाई। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने ओजस्वी भाषणों और प्रेरणादायी लेखन से लोगों को विदेशी शासन के खिलाफ एकजुट किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है। जापान में 20वें एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। 2 सप्ताह से अधिक के इन खेलों में कई रोमांचक मुकाबले हुए। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted several parliamentary committees related to different ministries. BJP MP Bhartruhari Mehtab has been appointed as the chairperson of the Committee on Finance, comprising 21 members from Lok Sabha and 10 members of Rajya Sabha. Mr. Birla has appointed Congress MP Shashi Tharoor as chairperson of the Committee on External Affairs. It includes 21 members from Lower House and 10 from Upper House, while the Committee on Railways will be headed by BJP MP Sudhir Gupta. Mr. Birla has appointed Lok Sabha MP Dr. Kakoli Ghosh Dastidar as the chairperson of Committee on Chemicals and Fertilizers. The Ministry of Education has approved 5 Centres of Excellence for Studies in Classical Languages. Department of Higher Education has approved the establishment of the 5 Centres of Excellence for Studies in Classical Assamese, Classical Bengali, Classical Marathi, Classical Pali and Classical Prakrit. Today is the last day of campaigning for the Nandigram and Rajinagar Assembly by-elections. The voting will take place on Tuesday, the 6th of October. Central forces have already started arriving in both the constituencies. Police and central force personnel have begun route marches across villages to ensure security ahead of polling. Ministry of External Affairs has summoned the Charge d'Affaires of Pakistan High Commission to lodge India's strong protest over the continued facilitation of illegal cross-border infiltration from Pakistan. India also categorically rejected the baseless and motivated allegations

0: गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी प्यारी प्यारी खूबसूरत सी और बहुत प्यारी सी बहनों को राम राम।
1: खूबसूरत कहना भूलती नहीं है मनीषा, खास करके क्योंकि इससे थोड़ा सा ना एनर्जी आ जाती है,
0: बिल्कुल खुद को भी कॉन्फिडेंस आता है और हमारी बहनें भी बहुत खुश हो जाती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: यमुना पिता शब्द है जीवन दर्शन, माँ जीवन का सार, पिता शांत है सागर सा और माँ गंगा की धार।

0: छोटा अंधेरू में दीपक सा, माँ फटकों को राह, माँ पिता इन दो शब्दों में मिल जाता संसार। आज हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष की। जब हम पितृपक्ष की बात करते हैं तो इस समय पितृपक्ष का दिन चल रहा है, और खास करके देखा जाए तो पितृपक्ष हिंदू धर्म में अपने दिवंगत पूर्वजों को याद करने, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने और उनके निमित्त जो भी श्राद्ध तर्पण जो भी होता करने का विशेष समय है।
1: जी हाँ, इस प्रकार पितृपक्ष लगभग 15 दिनों का यमुना वह समय है जिसमें लोग अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करते हैं।
0: बिल्कुल, और इस प्रकार देखा जाए तो तर्पण की हम बात करते हैं, जल और काले तिल अर्पित करके पूर्वजों का स्मरण किया जाता है, और इतना नहीं है श्राद्ध और पिंडदान भी किया जाता है।
1: जी हाँ, और साथ ही साथ हम दान पुण्य भी करते हैं और सेवा भी देते हैं। इसमें अन्नदान, वस्त्रदान, पशु पक्षियों को भोजन कराना, जरूरतमंदों को भोजन कराना, ये परिवारों की परंपरा का हिस्सा रही है हमारे सनातन
0: धर्म में।
1: जी,
0: तो अगर देखा जाए तो ये 26 सितंबर से शुरू होकर के 10 अक्टूबर तक चलेगा, और इसमें श्रद्धा भाव प्रकट करने का सबसे शुभ अवसर है। और ऐसे में सच कहें तो अगर अपने ही नहीं, अपने पूर्वजों ही नहीं, अगर कोई राह चलता मिलता है तो उनको भी उतनी श्रद्धा भाव से, उतनी स्नेह से उनको आदर सम्मान दें, उनकी जरूरत को पूरा करें।
1: जी,

0: हर दिन कुछ खास होता है मनीषा, और खास करके अगर हम बात करें तो हमारे साथ जीव जंतु पशु पक्षी भी जुड़े होते हैं, हमारी दिनचर्या में जुड़े होते हैं, हमारी प्रकृति से जुड़े होते हैं, और हमें बहुत कुछ देते हैं जाने अनजाने में। हम उन्हें थोड़ा सा अगर प्यार देते हैं तो उसका 100 गुना देते हैं। इस बात को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और इसी सोचने समझने की बात को लेकर के विश्व पशु दिवस हम लोग मना रहे हैं आज के दिन।
1: हाँ यमुना, और हमारे जो सनातन धर्म है उसमें ये बात भी है कि पशु पक्षियों की सेवा, पेड़ पौधों की सेवा कितनी अनन्य है, है ना। हम जैसे पितृपक्ष चल रहा है उसमें हम कौवे ढूंढते हैं
0: कि हाँ,
1: गाय ढूंढते हैं,
0: हाँ, गाय ढूंढते हैं।
1: तो खाना खिलाने के लिए, हम जिमाने के लिए ढूंढते हैं अक्सर पशुओं को, लेकिन कई दफा ऐसा भी होता है कि उन्हीं पशुओं को हम दुत्कारते भी हैं कभी कभी। तो ऐसा ना करें कि जब जरूरत हुई तो हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, हाँ। और जब उन्हें हमारी जरूरत है तो हम उन्हें दुत्कार रहे हैं।
0: बिल्कुल, मेरे मन में एक बात आ रही है, दुत्कारने की जो बात आ रही है, हम कभी कभी जैसे हमारी फीलिंग्स होती है, हमारी भावना होती है, ऐसे उनकी भी भावना होती है। वो भी समझते हैं कि कौन हमें प्यार कर रहा, कौन नहीं कर रहा, कौन हमें दुत्कार रहा है, तो उनके मन में भी क्रोध आता है। जैसे आप किसी को प्यार करोगे तो वो आपकी तरफ खींचता चलाएगा, लेकिन आप जब नफरत करोगे तो वो भी पहले से ही भौंकना शुरू कर देगा, या पहले से ही अपनी एक्टिविटी दिखाना शुरू कर देगा। तो ये चीज होता है, जब आप थोड़ा प्यार किसी को देंगे, पशु स्वरूप में ही क्यों ना हो, तो आप ये समझ के चलोगे आपको भी पूरा प्यार मिलेगा।
1: बिल्कुल,
0: खास करके जी जो आज का दिन चल रहा है, जैसे आज हम विश्व पशु दिवस मना रहे थे, सिर्फ एक दिन की ये बात नहीं है, ये अपनी दिनचर्या में, अपने व्यवहार में लाना होगा कि हर पशुओं का हम कद्र करें, उनकी देख रेख, उनको एक सम्मान दे जैसा उनको देना चाहिए।
1: बिल्कुल, पशु पक्षी हमारे बेजुबान हैं, वो बोल नहीं सकते, लेकिन हमारी भावनाओं को समझ सकते हैं। यदि कोई घायल पक्षी पड़ा होता है ना यमुना, और उसकी हम मरहम पट्टी करते हैं, तो वो भी समझता है कि इस इंसान ने मेरे लिए मरहम पट्टी किया है, मुझे सम्मान दिया है, मेरी केयर की है, तो वो भी समझता है। और ऐसे में पशुओं के प्रति इंसानी क्रूरता को रोकना, सम्मान, उनका हक दिलाना, और साथ ही साथ जहां पर वो रहते हैं यानी जंगलों का संरक्षण करना भी विश्व पशु दिवस के अंतर्गत आता है।
0: बिल्कुल, और हर साल जैसे 4 अक्टूबर को ये मनाया जा रहा है विश्व पशु दिवस, तो बता दें कि जो पहली बार विश्व पशु दिवस मनाया गया 1925 को बर्लिन माने जर्मनी में मनाया गया, और ये दिन जानवरों के संरक्षण और देखा जाए तो उनके प्रति एक प्यार लगाव रखने का सबसे बड़ा दिन है ये।
1: जी हाँ, तो शुरुआत हमेशा अपने घर से होती है, तो घर के आसपास के पशुओं को पानी दें, खाना खिलाएं, भोजन दें, और उसी से उनकी सहानुभूति प्रकट करें।
0: और एक बात और है, जब पिक्चरों को हम देखते हैं तो फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि पहले चिट्ठी पत्री जो पाती भेजी जाती थी, पता है कैसे भेजी जाती थी,
1: कबूतर ले जाते थे,
0: डाकिया भी फिल्म
1: जी हाँ, हाथी घोड़े हमारे बहुत काम आते थे, और साथ ही साथ कबूतर तो बहुत ही बढ़िया काम करते थे भाई, चिट्ठियां ले जाकर के साजन को देते थे,
0: तो मतलब कुल मिला के एक डाकिया का भी काम वो करते थे। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे लिए कितने काम के हैं ये, तो इनको बचाए रखना है। पशु संरक्षण दिवस पे हम यही कहना चाहेंगे
1: जी।

0: ध्यान रखना होगा।
1: देखिए, एक तो स्वयं की स्वच्छता
0: जी,
1: फिर अपने परिवार की स्वच्छता
0: जी,
1: और उसके बाद अपने आसपास की, घर के अंदर स्वच्छता, घर के बाहर स्वच्छता, क्योंकि हम अपने घर परिवार परिवेश से दूर रह करके काम नहीं कर सकते
0: जी।
1: कोई भी बीमारी अगर हमें है या हमारे पार्टनर को है तो उसका जल्दी से जल्दी अस्पताल में आकर निदान करा लेना, इससे पहले कि वो दूसरे वाले व्यक्ति को चली जाए, वो बहुत आवश्यक है
0: जी।
1: तो हेजिटेट ना करें, जैसे ही आपको लगता है कि कोई डाउट है आपको आके हमसे मिल लेना चाहिए
0: जी। तो महामारी एक ऐसा समय होता है कि हमारी बहनें हैं या जो हमारी बेटियां हैं, जो बच्चियां हैं जिनका अभी अभी मासिक धर्म आरंभ हुआ है, तो उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस रखने चाहिए। तो इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी?
1: देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो पहले टाइम था कपड़ा इस्तेमाल करने का
0: जी,
1: आज भी है बहुत घरों में
0: जी,
1: उससे बहुत समस्या है, क्योंकि आप उस कपड़े को साफ बार बार नहीं कर सकते
0: जी।
1: उसमें कुछ भी छूटेगा तो उसके जो नतीजे हैं वो इतने भयंकर हो सकते हैं कि मैं यहाँ बताना भी नहीं चाहूंगी, लोग डर जाएंगे, लेकिन वो जानलेवा बीमारियों की हद तक जा सकती है चीज
0: जी।
1: तो सबसे पहला नियम ये है कि आप कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल करें जो कि दोबारा नहीं इस्तेमाल करनी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सैनिटरी टैम्पन्स आजकल बहुत जगहों पे वेंडिंग मशीन्स भी लगा रखी है सरकार ने, जहां से फ्री ऑफ चार्ज भी निकल के आते हैं या बहुत नॉमिनल चार्ज पे भी निकल के आते हैं। फिर दूसरी बात आती है कितनी बार चेंज करें। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं किसी भी कारण से, चाहे आप खेतों में जाके काम कर रहे हैं, चाहे आप अपने किसी भी कार्यस्थल पे जा रहे हैं, तो आपको अपने लिए अमूमन एक या दो एक्स्ट्रा पैड्स या कोई इस तरह की जो भी आप चीज इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पर्स में रखना आवश्यक है। दूसरा, उसके साथ उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे, जब वो इस्तेमाल हो जाएगा उसको फेंकेंगे कैसे, उसके लिए ब्राउन पेपर या जो भी तरह का पेपर बैग आप अपने पास रखना चाहते हैं वो भी रखना उतना ही आवश्यक है जितना उसको रखना आवश्यक है। इसके अलावा हमें ये चाहिए कि जहां भी आप जा रहे हैं वहां पर सुविधा हो शौचालयों की। अगर विमेन के लिए वहां पर फैसिलिटी ही नहीं होगी तो डिस्पोज ऑफ करना, चेंज करना थोड़ा समस्याजनक बन सकता है
0: जी।
1: तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने समाज को, अपने परिवेश को इस तरीके का बनाएं कि वो स्त्री के लिए भी उतना ही मित्रवत हो जितना वो पुरुषों के लिए है।
0: बिल्कुल,
1: ये एक समानता से आगे की बात है, ये मानवीयता की बात हो रही है
0: जी।
1: कि जब हम स्त्री से काम करा सकते हैं तो उसी स्त्री के लिए ये जो आवश्यक सुविधाएं हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आगे चल के कार्य क्षेत्र में, जहां पर भी इनका होना आवश्यक है, जहां पर आपने शौचालय बना दिया वहां पानी आना आवश्यक है, वहां पर डस्टबिन रखना आवश्यक है, तभी जाकर के ये परिवेश स्वच्छ हो पाएगा और जैसा हम बनाना चाहते हैं अपने समाज को वो वैसा नजर आएगा।
0: जो अपने आसपास का जो वातावरण है उसको हम साफ रखने के लिए क्या करें?
1: देखिए, आजकल के परिवेश में सबसे ज्यादा बीमारी जो चल रही है डेंगू, क्या हो रहा है, दिन में काट रहा है मच्छर
0: जी।
1: मच्छर कहाँ आएगा, जहाँ गंदगी होगी
0: जी,
1: पानी होगा ठहरा हुआ वहीं आएगा
0: जी।
1: तो अगर हमारे पास जीवन ही नहीं बचेगा तो फिर हमारी नियमित सफाई, हमारे मासिक से रिलेटेड सफाई, पहले जीवित रहना तो आवश्यक है
0: जी।
1: तो हमारा जो घर है उससे बाहर निकल के हम कहाँ जा रहे हैं, इमीडिएटली बाहर,
0: बिल्कुल
1: जब आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं,
0: वहीं से
1: आ रहे हैं
0: जी।
1: वही बीमारी हमारे ही चप्पलों में, जूतों में चल के वापस हमारे ही घर में आ रही है
0: जी।
1: ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, किसी भी इंसान को समझ में आ सकती
0: बिल्कुल
1: है। तो आजकल हमारे पास घरों के बाहर तक आती हैं गाड़ियां जो लेके जाती हैं हमसे कूड़ा। फिर हमारे जो राष्ट्र में आजकल पॉलिसी है सूखे और गीले कूड़े को अलग अलग सेग्रीगेट करने की, उसके लिए भी हमें फैसिलिटी दी जा रही है कि अलग अलग कलर्स की पॉलिथिन्स हैं, सब कुछ है। तो अगर हम थोड़ा सा पढ़े लिखे लोगों की तरह, पढ़े लिखे से भी ज्यादा समझदार, अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने परिवेश के लिए जागरूक व्यक्ति बने, ये एक अवचेतन में घुस जाने वाली चीज है कि जो सामान चाहिए नहीं वो मेरे आसपास भी नहीं होना चाहिए और मेरे सामने वाले व्यक्ति मेरे पड़ोसी के आसपास भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका पड़ोसी बीमार है तो आप बहुत ज्यादा समय के लिए सुरक्षित नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: आपका पार्टनर बीमार है तो आप बहुत ज्यादा समय के लिए सुरक्षित है नहीं, क्योंकि आप भी उसी परिवेश में हैं, यकीनन आज नहीं तो कल आप भी उस बीमारी की चपेट में आएंगे। आप ऐसा मान लीजिए कि गंदगी एक आग है
0: जी,
1: अगर पास वाले घर में लगी है तो आपको नहीं समझना चाहिए कि आपका घर बहुत सेफ है
0: जी।
1: तो और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो मासिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, गंदे कपड़े या जो भी हम इस्तेमाल करना चाहें, मतलब मैं डराना नहीं चाहूंगी, लेकिन कितनी बार औरतें हमारे पास बाद में आती हैं कि हमें बच्चे नहीं हो रहे, इनफर्टिलिटी हो गई है, और जब हम अंदर जांचें करते हैं तो देखते हैं कि नले जो हैं वो बंद हो गए हैं इन्फेक्शन से। वो इन्फेक्शन कहाँ से आया, नीचे से ऊपर चल के गया है, वो पहले वो आपकी योनि से गया ऊपर बच्चेदानी तक और उससे आगे गया ट्यूब्स तक, ट्यूब्स हो गई बंद। अब आपको IVF जैसे महंगे खर्चे और बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर लगाना, बार बार सुइयां लगाना, और उसके बाद भी वो बच्चे ना हो पाना, करवाना। आपके घर में जो छोटी छोटी बच्चियां हैं अगर वो इस समय अपनी स्वच्छता का ख्याल नहीं रखेंगी तो आगे चल के उनके जीवन में जो समस्याएं आएंगी मैं उन पर जा रही हूँ। अगर पीआईडी बहुत

0: ज्यादा फैल जाए तो क्या होगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जैसी चीजों तक आप जा सकते हैं जो आपको आईसीयू तक पहुंचा सकती हैं। अगर आप किस्मत वाले हैं तो आप आईसीयू से वापस आगे आ सकते हैं, लेकिन अगर हम नहीं ध्यान रखें तो उसके आगे भी वो चीज जा सकती है। अपनी जान की कीमत देकर के अदा करने से तो ज्यादा अच्छा है कि हम एक साफ सैनिटरी कैंपेन पे थोड़े से पैसे खर्च करें।
1: जी, आजकल हमारी बहनें आत्मनिर्भर हो रही हैं और नौकरी के लिए अपने गांव से निकलकर शहर की तरफ भी जाती हैं, और जो हमारी शहर की बहनें हैं वो तो यहाँ पर कार्यस्थल पर काम करती हैं। तो जब कार्यस्थल की बात आती है तो हर कोई जो है खुश दिखता है, लेकिन जब हाइजीन की बात आती है या स्वच्छता की बात आती है उस पर हमारी बहनों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये तो हम बात कर चुके हैं कि मासिक से संबंधित जो भी उनको चीजें चाहिए वो उनके पर्स में रहें, हमेशा एक्स्ट्रा भी रहें तो अच्छा रहेगा।
1: जी,
0: एक छोटी चीज आजकल देखती हूँ कि बहुत लड़कियां, पढ़ी लिखी लड़कियां मेरे पास आती हैं यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन की समस्याओं, संक्रमण के साथ में।
1: जी,
0: कारण क्या होता है, पानी लेके नहीं चलते साथ में।
1: जी,
0: और पानी कई बार कार्यस्थल पर नहीं मिलता। तो अगर वो लोग भी मुझे सुन रहे हैं जो कार्यस्थल डिजाइन करते हैं, जो अथॉरिटी बन गए हैं, ऑफिसर हैं, तो मैं चाहूंगी कि बाकी चीजों को सुसज्जित करने के साथ, फर्नीचर रखने के साथ, वहां एक स्वच्छ पानी का सोर्स भी रखें कि आप लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके, यूटीआई ना हो। नहीं हो रहा है तो आप पानी साथ लेके चलिए
1: जी,
0: उसको नियमित रूप से पीते रहिए ताकि आपको बाहर का पानी, अस्वच्छ पानी ना पीना पड़े, उससे बीमारियां ना हो। खाने के लिए घर से लेके जाइए, पैक लेकर जाइए, जो भी चीज लें वो पैक दो
1: जी।
0: खुली चीजों का सेवन ना करें ताकि आप उस चीज से बच सकें। जो आप वॉशरूम जाते हैं, पब्लिक वॉशरूम्स यूज करने पड़ते हैं, तो आजकल स्प्रेज आते हैं टॉयलेट सीट को स्प्रे करने के लिए ताकि वो साफ हो जाए, क्योंकि पिछला वाला व्यक्ति क्या संक्रमण लेकर के उसको यूज करके गया हमें नहीं पता।
1: डॉक्टर साहब, मान लीजिए हम स्प्रे नहीं लेकर गए और वहीं पर अगर हमें पानी मिलता है, अगर उसको पहले पानी से वॉश कर लें,
0: टिश्यूज उसको क्लीन कर लें, वहां पे पेपर अगर आपको मिल रहा है, टॉयलेट पेपर है, उससे क्लीन कर लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी उपलब्ध है, जागरूकता लाकर उसका इस्तेमाल करें
1: जी,
0: और बीमारियों से बचें
1: जी। कुछ हमारी बहनें इतनी डरती हैं कि जब वो सफर पर जाती हैं तो पानी कम से कम पीती हैं, अगर हम बाहर के टॉयलेट यूज करेंगे तो हो सकता है हमें कोई ना कोई बीमारी लग जाए, तो क्या ये करना उनके लिए ठीक है?
0: बिल्कुल उचित नहीं है
1: जी।
0: पानी आपके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। पानी के बिना शरीर में पेशाब जो है वो इकट्ठा हो रहा है ब्लैडर के अंदर, आप कई कई घंटे जा नहीं रहे, इससे आपको सोचने से भी दूर की बीमारियां संभव है होना। अगर वो यूटीआई जो है आपका ब्लैडर से ऊपर चढ़ जाए और आपकी किडनीज तक पहुंच जाए, गुर्दे खराब आपके कर देगा, पाइलोनेफ्राइटिस जैसी गंभीर बीमारियां आपको हो जाएंगी जिनका फीवर नहीं उतरेगा, आपको इतने दर्दनाक इंजेक्शन लेने पड़ेंगे उससे बाहर आने के लिए, आपको फिर अस्पताल के ही नहीं आगे आईसीयू तक के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे, संभव है कि आप डायलिसिस तक पहुंच जाएं, तो मैं समझती हूँ एक बोतल पानी पी लेना इस सबसे तो बहुत आसान नुस्खा है इससे बचने के लिए।
1: डॉक्टर साहब, आपने अभी एक बहुत ही अच्छी बात की कि आप हमें डॉक्टर से पहले मित्र समझें, तो मित्र जो होता है वो हमेशा अच्छी ही सलाह देता है और वो यही चाहता है दूसरा मित्र है वो हमेशा अच्छा ही रहे। एक मित्र के नाते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: सिर्फ एक बात
1: जी,
0: अपनी सेहत को अपने हाथ में रखिए
1: जी,
0: उसकी जिम्मेदारी लीजिए, और जब माँ अपनी जिम्मेदारी खुद ले रही होगी, अपनी स्वच्छता पे ध्यान रख रही होगी, तो बेटी को सिखाने के लिए कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा,
1: वो देखकर सीख
0: जाएगी, बड़ी बहन को देख के सीख जाएगी
1: जी।
0: जो हमारे स्कूल कॉलेजेस में बच्चे पढ़ने आते हैं उनके जूनियर्स, उनके क्लासमेट्स उनको देख के सीख जाएंगे कि ऐसे करना होता है
1: जी।
0: और उस तरीके से एक कड़ी से कड़ी जुड़कर एक पूरा समाज, एक पूरा राष्ट्र और वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी दुनिया
1: जी
0: साफ हो सकती है। बस ये मान लीजिए कि सिर्फ मुझे ही नहीं साफ होना, मेरे परिवार को, मेरे समाज को, मेरे राष्ट्र को साफ करना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। गाड़ी में से पर्चा वो बाहर फेंकते वक्त का रैपर ये मत सोचिए कि सड़क तो मेरी नहीं है
1: जी,
0: वो भी आपकी ही है।
1: बिल्कुल,
0: बस उतना किसी को समझ में आ जाए तो मैं समझती हूँ कि हमारी जरूरत कम हो जाए
1: जी। यानी वो छोटे छोटे चीजें जो हम आज नजरअंदाज कर देते हैं, अगर उन पर हम धीरे धीरे ध्यान लगाएंगे और उन पर काम करना आरंभ करेंगे, हमें सड़क पर या कहीं पर भी कोई भी कागज बिखरा हुआ नहीं मिलेगा, के ढेर नहीं दिखेंगे, तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारा पूरा गांव स्वस्थ रहे, समाज स्वस्थ रहे और हमारा राष्ट्र स्वस्थ रहे। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर आई और हमारी बहनों को इतनी उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: स्वच्छता द्वारा महिला स्वास्थ्य सुरक्षा, मतलब महिलाएं अपनी स्वच्छता को बनाए रखने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा वो कैसे करें, इस विषय पर अभी जानकारी दे रही थी जया चावला जी, डॉक्टर जया चावला जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली में, और इनसे बातचीत कर रही थी हमारी सखी कमलेश मुदगल। और एक बात और कहेंगे मनीषा की, जब हम स्वस्थ होते हैं तो जाहिर सी बात है चमक होती है।

0: यमुना, हम जब बात करते हैं छोटे छोटे बच्चों की, तो बच्चे जो है ना वो हमारे देश का एक सुनहरा भविष्य है, और उनके भविष्य को निर्मित करने की जिम्मेदारी होती है हम सबकी। और उनका भविष्य जो निर्मित होता है, एक सुनहरा भविष्य, वो होता है अच्छी आदतों से, खान पान के बेहतर ढंग से। और आजकल के जो माहौल में सबसे ज्यादा समस्या बनी हुई है, ज्यादातर बच्चों का मोबाइल यूज करना, लैपटॉप चलाना और टीवी के आगे घंटों बैठे रहना, यानी कि स्क्रीन टाइम जो है बच्चों का वो बहुत बढ़ गया है।
1: टीवी की तो हम बात ही न करें, टीवी तो पीछे रह गए इस समय। अगर देखा तो स्क्रीन जो टाइम है ना, मोस्टली जो है मोबाइल पे ही डिपेंड हो गया है। लेकिन दो इसके पहलू है अगर देखा जाए तो। पहली बात, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जो भी ये थोड़ा बहुत कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी बच्चे करते हैं, तो जो बच्चे

0: कर रहे हैं उनके लिए तो भाई वो जरूरी है मोबाइल के सामने रहना, लेकिन जो बच्चे ऐसे क्लासेस नहीं कर रहे हैं, छोटे बच्चे, मैंने आते जाते भी रास्ते में भी देखा कई जगह, अगर बच्चा रोता है तो उसे मोबाइल दे देते हैं, मोबाइल देखता है वो, उसमें कुछ गेम वेम देखा बस खुश हो गया और माँ को लगा कि भाई ठीक है अब तो खुश है, अब रो नहीं रहा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन आप ये सोचो कि जो बचपन में मतलब 3 साल 4 साल के बच्चे के हाथ में अगर आपने मोबाइल शुरू कर दिया, दिखाना शुरू कर दिया, तो उसकी आदत कितनी खराब हो जाएगी कि वो फिर हैबिट वही है उसकी पड़ जाएगी कि भाई मुझे मोबाइल चाहिए तो हम खाना खाएंगे, मोबाइल चाहिए तो हम हंसेंगे, नहीं तो हम रोएंगे, जिद करेंगे। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान देने वाली ही बात है कि स्क्रीन टाइम जो है किस तरीके का वो बिता रहा है।
1: जी हाँ बिल्कुल, और इसको कम करने के लिए हम छोटी छोटी जो आदतें हैं वो डेली रूटीन में हम शामिल कर सकते हैं। जैसे कि हम ही अगर ज्यादा फोन इस्तेमाल करेंगे, हम ही स्क्रीन पर बैठे रहेंगे तो बच्चा तो देखेगा और फिर वो वही करेगा।
0: बिल्कुल,
1: तो कोशिश ये करें कि कम से कम मोबाइल के साथ समय बिताएं, ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो अपने बच्चों के साथ बिताएं। और साथ ही साथ एक घर में एक छोटा कोना ऐसा जरूर बनाएं, जैसे खाने की टेबल हो गई या फिर सोने का बिस्तर हो गया, वहां पर हमारा स्क्रीन यानी नो स्क्रीन जोन बनाएं उसे, वहां पर हम मोबाइल और लैपटॉप बिल्कुल भी यूज ना करें।
0: बिल्कुल कह रही हो, सही है ये बात। और देखो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम ही नहीं सुधरेंगे, हम ही अपनी आदतों में सुधार नहीं करेंगे तो हम दूसरे को कैसे मना कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और एक बात और है, खान पान की जब बात आती है ना, तो उनके स्वास्थ्य को देखते हुए खाने में कुछ ऐसी चीजें शामिल होनी चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, पौष्टिक भोजन हो गया, तो बाहर की जो चीजें हैं डिब्बा बंद चीजें उसको बिल्कुल मत खिलाएं, और घर में अगर आटा यूज करती है तो मिलेट्स का यूज करें, श्री अन्न का यूज करें, तो उससे क्या होगा उनको पौष्टिकता मिलेगी और स्वास्थ्य उनका बहुत ही अच्छा रहेगा। और लेकिन मान लीजिए कोई बच्चा नहीं खाते, भाई मेरा बच्चा तो ऐसे नहीं खाता, तो आप दूसरे तरीके से उसे मॉडिफाई करके दूसरा तरीका अपना के कुछ और ऐसा बना करके आप खिला सकते हैं। जैसे बच्चे हमारे तुरई नहीं खाते हैं, थोड़ी देर के लिए एक एग्जाम्पल है, तो हम दाल में सब्जियां डाल देते हैं, वो दाल में दाल बना देते हैं, घुल जाता है, उनको पता नहीं चलता कि इसमें क्या पड़ा है, तुरई पड़ेगी, लौकी पड़ी है, क्या पड़ा है, सब खा जाते हैं। तो बहुत से कोफ्ते भी बनते हैं, आप लौकी नहीं खाते बच्चे, लौकी को कोफ्ता बनाइए, वो प्यार से खाएंगे बच्चे।
1: हाँ, लौकी की तो आजकल लौज भी बनती है, बर्फी बनती है, हलवा बनता है, वो प्यार से खाते हैं बच्चे। यानी कि स्वरूप बदल दीजिए,
0: स्वरूप बदल,
1: जरूरी नहीं है कि आप लौकी की सब्जी ही बनाएंगे, लौकी को अलग अलग फॉर्म में बना सकते हैं, चीला बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं, तो बच्चे बड़े प्यार से और आनंद लेकर खाएंगे। साथ ही हम बच्चों को जंक फूड की आदत ना डालें। जंक फूड की आदत हम अक्सर ऐसे डाल देते हैं कि भाई बच्चों का डिब्बा पैक करना है सुबह, मम्मी के पास टाइम नहीं है, मम्मी ने फटाफट से ब्रेड जैम लगाया और ले लिया, ले जा भाई।
0: हाँ,
1: तो ये तो हो गई हमारी कि हमने अपनी जो है राड़ काट दी। तो ऐसा ना करें भाई, बच्चों का स्वास्थ्य हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है।
0: एक बात और है ना, जैसे आपने कहा कि राड़ काट दी ले गए जाए, लेकिन आप ये सोचो जो बच्चा दिन भर स्कूल में रह रहा है
1: जी,
0: सुबह के नाश्ते में बहुत कुछ खास नहीं लिया है और लेकर के टिफिन के जा रहा है, दो रोटी भी उसके पेट में नहीं जा रहा है
1: जी,
0: तो आप सोचिए उसके स्वास्थ्य में गिरावट आना स्वाभाविक
1: सी बात है। ये बड़ा ही सोचने का एक विषय है, हम सभी को सोचना चाहिए कि हम बच्चों के लिए ही कमा रहे हैं, बच्चों के लिए ही हम सारी सुविधाएं
0: वही बीमार बता
1: रहे हैं और उन्हीं को हम कुछ चीजें ऐसी हम तैयार नहीं कर पा रहे हैं, हम बच्चों को भोजन नहीं दे पा रहे हैं सही समय पर, उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर ये सारी चीजें व्यर्थ हैं, बेकार हैं।
0: और जो फास्ट फूड है उसके बारे में बच्चों को जागरूक करिए, बताइए कि ये चीज आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, कैसे नहीं है उसका रीजन बाकायदा दे करके बताइए, वीडियो दिखा के बताइए कैसे हानिकारक है ये। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है।
1: जी हाँ, अच्छी आदतें डालेंगे तभी बच्चों का भविष्य जो है वो संरक्षित और संरक्षित होगा।
0: और
1: लेकिन फिर कभी कभी यमुना ऐसा भी होता है ना, बच्चे माँ बाप को दुश्मन भी समझ लेते हैं।
0: दुश्मन नहीं समझते कि बहुत ज्यादा इन्होंने हमारे ऊपर पाबंदी लगा दी, या कोई अगर मान लीजिए गेम में जाना चाह रहा बच्चा, उसे सुबह 4 बजे पापा उठा दी, भाई चलो तुम दौड़ लगाओ, अब उसे लगता है भाई नींद से बढ़ के क्या है दुनिया में, सो थोड़ा सा, नहीं नहीं थोड़ा सा, बस 4 बजे उठा दी, समझ लो तुझे गुस्सा लगेगा ही लगेगा।
1: लेकिन यमुना एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि हम सख्ती करें पर उसको समझाएं कि हम ऐसा कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है,
0: क्या है,
1: हम आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, हम चाहते हैं कि आपके भविष्य के
0: प्रति अच्छी हो, बिल्कुल बिल्कुल
1: हम जागरूक हैं, तो इसीलिए हम ये चीजें आपके साथ कर रहे हैं, ये थोड़ी सी सख्ती कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्यार भी दर्शाएं।
0: बिल्कुल, एक बात और है, बच्चे क्या कहते हैं ना कि आप जब बड़े हो जाते हैं कुछ नहीं बन पाएंगे, तो जानते क्या, आपने मुझे समय से जगाया नहीं, पढ़ाया नहीं, हमें काबिल बनाया नहीं, तो वो मौका मत दीजिए, कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा बोलेंगे, और कैसे बोलेंगे इस गीत के जरिए सुनिए बच्चे क्या कहते हैं।

0: बातें जब होती है जानकारी की तो हम बहुत सी ऐसी जानकारी लेकर के आते हैं कार्यक्रम के जरिए, और खास करके जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और आज हम बात करेंगे आयल सीड्स किसान मित्र की। तिलहन किसानों के लिए आईएसआर द्वारा शुरू की गई भारत की पहली राष्ट्रव्यापी व्हाट्सएप आधारित मतलब एआई परामर्श सेवा केंद्र है। तो इस तरीके से देखा जाए जो इसके
1: जी हाँ, ऑयल सीड्स किसान मित्र एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभर रही है, जो तिलहन की खेती के बारे में विश्वसनीय शोध आधारित ज्ञान को सीधा किसानों के मोबाइल फोन पर और कभी भी उनकी अपनी भाषा में पहुंचा रही है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये।
0: बिल्कुल। और एक बात और, ये निःशुल्क है, सुविधा किसानों के लिए पूरी तरीके से निःशुल्क है, वो भी 24 घंटे के लिए है।
1: जी हाँ
0: हाँ। और ऐसी एक और जानकारी है, सेवा संकल्प की बात हम जो कर रहे हैं, और जब सेवा संकल्प की बात होती है तो ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 वर्षों के सार्वजनिक सेवा काल और विकसित भारत

0: 2047 के विजन को समर्पित एक महीने का राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया है। यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। और अधिक जानकारी के लिए युवा संकल्प अभियान की हम जब बात करेंगे तो और जानकारी भी आपको हम देते रहेंगे।
1: जी हाँ, और हम आगे बढ़ाते हैं अपने कार्यक्रम को और वीरांगना क्रम में आज बात करते हैं मातंगिनी हाजरा की। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1870 में हुआ था और ये एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी रही। प्यार से इन्हें बूढ़ी गांधी कहा जाता था। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के हुगला गांव में गरीब किसान परिवार में ये जन्मी। कम उम्र में इनका विवाह हो गया और ये फिर विधवा भी हो गईं। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लिया और कई बार गिरफ्तार भी हुई।
0: और जो बात है भारत छोड़ो आंदोलन की, इस दौरान तिरंगा फहराने के लिए लगभग 6000 कार्यकर्ताओं का इन्होंने नेतृत्व भी किया और ब्रिटिश पुलिस ने इन्हें रोकने की बहुत प्रयास किया, कोशिश की, लेकिन ये पीछे नहीं हटी और गोलियों का शिकार हो गई। जमीन पर गिरने के बावजूद तिरंगा नहीं गिरने दिया, वंदे मातरम का जयगान भी करती रही। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारी वीर वीरांगना मातंगिनी हाजरा की, हम हाजरा की बात हम कर रहे हैं, तो बहुत ही समर्पण का भाव था उनके अंदर और हम भी चाहते हैं ऐसे ही समर्पण का भाव हमारे बच्चे आने वाले अपने युग में, अपने समय में बहादुरी के साथ आगे बढ़े। और खास करके हम बात और करना चाहेंगे, एक और है हमारे स्वतंत्रता सेनानी की, हम बात करना चाहेंगे श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में, जो कि इनका जन्म 1897 में आज ही वर्तमान गुजरात के तटीय शहर मांडवी में हुआ था। उन्होंने लंदन को भारत की आजादी की क्रांति का केंद्र बनाया और 1905 में उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस द इंडियन सोसाइटी पत्र की शुरुआत की थी। तो इन्होंने भी स्वतंत्रता की अलग जगाई। तो इस तरीके से हम नमन करते हैं और यही चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो हमेशा जीवन में।

0: और अब 2026 का चल रहा जो एशियन गेम्स उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं मनीषा।
1: जी हाँ, भारतीय महिला एथलीटों ने एशियन गेम्स में अद्भुत प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के दम पर अपने देश का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है।
0: और एशियन गेम्स 2026 की हम बात कर रहे हैं तो इसकी स्वर्णिम सफलताओं की हम बात कर ले। महिला हॉकी टीम का ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ है, खास करके हॉकी टीम ने टूर्नामेंट की मौजूदा चीन को 1-0 से हराकर 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है।
1: जी हाँ, और तीरंदाजी में महिला रिकर्व ने तीरंदाजी में अंकिता भक्कल

0: कीर्ति कुमकुम मोहोद ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरियाई टीम को हराकर पहली बार ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीता।
1: और गोल्फ में नया इतिहास रचा गया है। गोल्फर प्रणवी उर्स ने इतिहास रचा और खास करके पहली भारतीय महिला गोल्फर बनने का गौरव हासिल किया।
0: जी हाँ, और निशानेबाजी में नीरू ढांडा ने ट्रैम शूटिंग के व्यक्तिगत फाइनल में 30 में से 28 सटीक निशाने लगाकर नया एशियन गेम्स रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल जीता।
1: ये महिला खिलाड़ियों की हम बात कर रहे हैं। एथलीट्स की अगर हम बात करें तो किरण पहल, एम आर पोम्मा, प्राची चौधरी और विद्या रामराज की महिला चौकड़ी ने शानदार दौड़ लगाते हुए 400 मीटर रिले रेस में भारत में एकमात्र ट्रैक में अगर देखा जाए तो 44 साल पुराने रिले दबदबे को भी कायम रखा।
0: जी हाँ, और क्रिकेट और कबड्डी में भी महिलाओं ने गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाला।
1: और मुक्केबाजी में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने भी महिला 75 किलोग्राम भार में जो है उन्होंने अपना स्वर्ण पदक जीता। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारी बहनें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। और इस समय हम बात करना चाहेंगे कैप्टन स्मिथ पच्छर के बारे में, जो कि माक्षर एक भारतीय कमर्शियल पायलट हैं। और खास करके आपने सुना होगा कि 30 सितम्बर 2026 को दुबई से तेल अभी इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में आपात स्थिति में उन्होंने कैसे सहारा बना और कैसे 174 लोगों की जान बचाई।
0: जी हाँ, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बड़ा ही होशियारी और उसके साथ हिम्मत के साथ उन्होंने मुकाबला किया और लाखों लोगों की जान बचाई।
1: बिल्कुल, तो सलाम है ऐसे लोगों को, नमन है ऐसे लोगों को जो इतनी तेजी से कार्य करते हैं और हमें एक मुकाम देते हैं कि कैसे आप भी आगे बढ़ सकते हैं, बहादुरी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो कार्यक्रम का समय समाप्त है, लेकिन चलते चलते अपने बहनों को पता बताना बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ, पता है हमारा कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नया प्रसारण भवन, नई दिल्ली 110001।
1: फीडबैक हम बता दें, हमारा ईमेल का जो एड्रेस है feedback@gmail.com। और जो कार्यक्रम के प्रस्तुत है करता है वो तुषार पारासर और संयोजक है शिवनंदन लाल। तो इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है, लेकिन चलते चलते एक चीज और हम बता दें कि हमारा जो अगला कार्यक्रम होगा शाम का वो 5:10 से लेकर 5:30 होगा लोक रंजनी और कृषि जगत ग्राम संसार आप सुन सकेंगे 6:30 से लेकर के 7:35 तक। तो लगातार ये कार्यक्रम शाम को भी आप सुन सकते हैं। तो चलते चलते कहना चाहेंगे बहनों को
0: राम राम, राम।

0: अभी हमारी बहनें सुन रही थी उनका प्रिय कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन कर नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हो गया।
2: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 20 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत भाषा के विशेष अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे।
3: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज

0: पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमरीका के हिंद प्रशांत कमांड के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमरीका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियाद बताया। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 घुसपैठिए पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। कई बार वापस लौटने की चेतावनी देने के बाद सीमा सुरक्षा बल को कार्रवाई करनी पड़ी। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भी तलब किया है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव प्रचार आज का अंतिम दिन है। मतदान

0: दिल्ली पुलिस ने तीन महिला पत्रकारों के पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। ये घटनाएं कल नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान हुई। ये पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात थे। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत का प्रस्ताव सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान के एक दिन बाद आया है। श्री पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष समाप्त करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय जनमानस में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने में श्री कृष्ण वर्मा के अथक प्रयास देश की स्वाधीनता संग्राम का अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपना पूरा जीवन भारत की स्वतंत्रता को समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाकर आजादी की भावना जगाई। जापान में 20वें एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य के साथ कुल 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 2:30 बजे से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. Vice President C.P. Radhakrishnan has said that the journey of Viksit Bharat will be built on the strength of India's institutes, MSMEs and startups. Addressing the 58th Foundation Day of Institute of Company Secretaries of India, that is ICSI, in New Delhi today, Mr. Radhakrishnan emphasized that the nation cannot progress without gaining the trust and confidence of the investors. The Vice President noted that India is one of the fastest growing economies in the world, while simultaneously entering into an era of rapid technological advancements. Talking about ICSI, Mr. Radhakrishnan lauded the institute for contributing in the promotion of good corporate governance in the country and described it as the global benchmark for sustainable development. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today met United States Indo-Pacific Command Commander Admiral Samuel Paparo. In a social media post, Dr. Jayashankar said they discussed ways to further strengthen the security partnership and maritime cooperation between India and the United States in the Indo-Pacific region. Delhi police has transferred complaints of alleged sexual harassment made by three female journalists against police personnel to the crime branch for a fair and impartial inquiry. The alleged incidents took place yesterday during a protest in the New Delhi area where police personnel were deployed to maintain law and order. According to Delhi police, the New Delhi district received the complaints and handed them over to the crime branch for further investigation. Today is the last day of campaigning for the Nandigram and Rajinagar assembly by-elections. The voting will take place on Tuesday, the 6th of October. Central forces have already started arriving in both the constituencies. Police and central force personnel have begun route marches across villages to ensure security ahead of polling. Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through upgraded ITIs PM Setu has completed 1 year today. The PM Setu scheme of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship was launched on 4th of October last year. The initiative seeks to strengthen industry-led governance, upgrade training infrastructure and promote demand-driven courses in line with evolving workforce requirements. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has invited Indian pilot Captain Smit Machar and Prime Minister Narendra Modi to light the ceremonial flame at Israel's upcoming Independence Day celebrations.

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल का सबसे लोकप्रिय और मनपसंद कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपकी दोस्त तृप्ति जौहरी, आज आपके साथ। आज हम बात करेंगे एक ही फिल्म से में ऐसी फिल्म की जिसमें रिश्ते हैं, उम्मीदें हैं, टूटन है, लेकिन सबसे बढ़कर है अपने अस्तित्व को पहचानने की तलाश। जी हाँ, आज की हमारी फिल्म है अर्थ। सन 1982 में आई महेश भट्ट की ये फिल्म सिर्फ एक प्रेम कहानी या वैवाहिक रिश्ते की कहानी नहीं है, ये उस सवाल की कहानी है जब जीवन में हमारे सबसे करीबी रिश्ते ही हमारा सहारा ना रहे, तब हम अपने जीवन का अर्थ कहाँ तलाशें। तो आइए आज लगभग 4 दशक पीछे चलते हैं और बात करते हैं उस फिल्म की जिसमें रिश्तों को देखने का एक अलग नजरिया दिया, अर्थ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फिल्म अर्थ की। फिल्म अर्थ का निर्देशन महेश भट्ट ने किया था और फिल्म की कहानी तथा पटकथा में महेश भट्ट के साथ सुजीत सेन का योगदान था। फिल्म का निर्माण कुलजीत पाल ने किया। फिल्म की केंद्रीय कहानी है पूजा की, जिसका किरदार निभाया है शबाना आजमी ने। पूजा अपने पति इंदर के साथ एक सामान्य सी ग्रस्त जिंदगी जी रही है। इंदर की भूमिका में है कुलभूषण खरबंदा, लेकिन धीरे धीरे इस रिश्ते में एक तीसरा व्यक्ति प्रवेश करता है। वो तीसरा व्यक्ति है अभिनेत्री कविता, जिसका किरदार निभाया है स्मिता पाटिल ने। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी भावनात्मक यात्रा जिसमें सवाल सिर्फ ये नहीं है कि रिश्ता टूटेगा या बचेगा, सवाल ये है कि टूटे हुए रिश्ते के बाद इंसान खुद को कैसे संभालता है। अर्थ की

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिल्म अपनी कहानी को केवल पति पत्नी के रिश्ते तक सीमित नहीं रखती। ये फिल्म आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और अपनी पहचान की बात करती है। पूजा के सामने एक कठिन परिस्थिति आती है। जिस घर को उसने अपना संसार समझा था, वही संसार अचानक उसके पैरों के नीचे से खिसकने लगता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यही से शुरू होती है पूजा की असली कहानी, और यही शायद इस फिल्म के शीर्षक अर्थ को इतना महत्वपूर्ण बनाता है। अर्थ यानी मतलब, अर्थ यानी मूल्य, अर्थ यानी जीवन का उद्देश्य। फिल्म पूछती है, क्या किसी रिश्ते के खत्म हो जाने से हमारे जीवन का अर्थ भी खत्म हो जाता है?

मैं वक्त के साथ साथ चल रहा हूं, जैसे जैसे काम मिलता गया और गजलें मकबूल होती गई वैसे वैसे आपको सुना रहा हूं।

साथियों, जगजीत सिंह की आवाज और कैफी आजमी के शब्दों ने इस गीत को ऐसी भावनात्मक गहराई दी कि ये फिल्म से बाहर निकलकर स्वतंत्र रूप से भी लोगों के दिलों में बस गया। तो आइए आनंद लेते हैं इस गीत का।

तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। जी हाँ, हमें पता है आप सभी आज ये कार्यक्रम सुनकर जो मुस्कुरा रहे हैं, जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आई है, खिलखिला रही है, वो हम जानते हैं, क्योंकि कार्यक्रम का नाम है एक ही फिल्म से और आज की फिल्म है अर्थ। अर्थ की एक बड़ी विशेषता इसका संगीत भी है। फिल्म के संगीत से जुड़ा नाम है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह। फिल्म में उनकी गजल नुमा शैली ने कहानी के भावनात्मक संसार को और गहरा किया है, जैसे कि झुकी झुकी सी नजर, कोई ये कैसे बताए। अभी आपने जो गीत सुना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो और तू नहीं तो जिंदगी में, जैसे गीत आज भी इस फिल्म की पहचान माने जाते हैं। खास बात यह है कि इन गीतों में केवल प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं है, इनमें अकेलापन है, सवाल है, अधूरेपन की कसक है और मन के भीतर चल रही बातचीत है। यही वजह है कि अर्थ का संगीत कहानी से अलग होकर भी कहानी का हिस्सा महसूस होता है।

0: विनोद से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो ये फटा है, सुन कटे फटे या पुराने नोट को
2: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ नया नोट मिलेगा?
3: हाँ,
1: जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
2: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: साथियों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल और इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है एक ही फिल्म से, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं फिल्म अर्थ की, जो रिलीज हुई थी 1982 में और आज है आपकी दोस्त तृप्ति चौरी आपके साथ। तो बात कर रहे थे हम फिल्म की कहानी के बारे में, फिल्म के किरदारों के बारे में। तो आइए अब बात करते हैं फिल्म के तीन केंद्रीय किरदारों की। पूजा जिसका किरदार निभाया शमाना आजमी ने, इंदर की भूमिका में थे कुलभूषण खरबंदा और कविता की

भूमिका निभाई स्मिता पाटिल ने। तीनों पात्रों की अपनी अपनी कमजोरियां हैं, अपनी अपनी इच्छाएं हैं और अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। फिल्म इन पात्रों को केवल सही और गलत के खांचे में नहीं रखती, यही इसकी कहानी को अधिक मानवीय और बनाता है। शबाना आजमी के लिए अर्थ उनके करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक बनी। फिल्म में पूजा के भावनात्मक सफर को उन्होंने बहुत संयम के साथ निभाया। उनके अभिनय की खासियत है कि कई बार बिना बोले भी वो बहुत कुछ कह दिया जाता है। एक नजर, एक ठहराव, एक चुप्पी और दर्शक समझ जाता है कि किरदार के भीतर क्या चल रहा है। अर्थ के लिए शबाना आजमी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान मिला। आधिकारिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रिकॉर्ड में अर्थ के लिए उनकी जीत दर्ज है। और दिलचस्प बात यह है कि यह उनके लगातार तीन राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रृंखला का पहला पड़ाव था। इसके बाद खंडर और पार के लिए भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान मिला। दूसरी ओर स्मिता पाटिल का किरदार कविता का था। कविता एक अभिनेत्री है, लेकिन उसके चमकदार पेशेवर जीवन के पीछे उसका अपना अकेलापन और असुरक्षा है। यही इस फिल्म की खूबसूरती है। फिल्म हमें ये समझने का अवसर देती है कि सामने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी मजबूत दिखाई दे, उसके भीतर भी अपनी लड़ाइयां हो सकती है। स्मिता पाटिल ने कविता के भीतर की बेचैनी और असुरक्षा को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। और फिर आते हैं राज, जिसने निभाया राज किरण ने। राज किरण का किरदार कहानी में एक अलग भाव लाता है। वो पूजा के जीवन में उस समय दिखाई देता है जब उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसे केवल सहारा ही ना दे, बल्कि उसे ये याद भी दिलाए कि तुम अपनी जिंदगी खुद भी बना सकती हो। लेकिन अर्थ का सबसे महत्वपूर्ण फैसला यही है कि पूजा को अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुनना है। एक तरफ प्रेम, दूसरी तरफ विवाह, एक तरफ अकेलापन, दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता, और इनके बीच खड़ी एक स्त्री जो आखिरकार खुद से पूछती है, मेरी जिंदगी का अर्थ क्या है।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले?
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
1: एक और?
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

साथियों, इतने मधुर से गीत और संगीत दिए हैं हमारे आज की फिल्म अर्थ ने कि एक भी गीत छोड़ने का मन नहीं कर रहा और एक भी गीत आप सुने तो उसमें डूबे बिना आप रह नहीं सकते। और अर्थ फिल्म ही ऐसी है। अर्थ का मतलब है जीवन का मतलब, अपने होने की वजह, अपनी पसंद, अपना आत्मसम्मान और शायद सबसे महत्वपूर्ण है अपने फैसले खुद लेने की क्षमता। और देखिए ना, हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर भी आपने अपने संदेशों के साथ कुछ ऐसे ही संदेश भेजे हैं और हम जल्दी से नाम पढ़ देते हैं। राजकुमार डूडी, हीरामणि वर्मा, हरजिंदर शिंदा, कमलकांत गुप्ता, पूनम गंगलीजा, सुधाकर जाधव, डोमेंद्र नेताम और सुदर्शन शाह, इसी के साथ हमारे पास आए हैं जुमेल, इशाक मोहम्मद, सदानंद मांडूरकर, स्वर्ण सिंह, पीएस नावकर, संजय ढींगिया, सुदर्शन मुखी, राधे श्याम देवांगन और धर्मेंद्र छिपा, दिग्दर्शन गौड़, भूषण खेरा। कुछ श्रोताओं ने हमारे दोबारा मैसेज भेजे हैं जिसके कारण हम अन्य साथियों के संदेश नहीं ले पा रहे हैं। कमलकांत गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरजिंदर छिंदा, तो ये सभी साथी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। आइए चलते चलते सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

0: और लास्ट टाइम मेरा सिल्वर था तो मेरा माइंड में पूरा था कि मुझे इस बार कलर चेंज करना था, तो इस वजह से भी ये बहुत ज्यादा स्पेशल था।
1: भारतीय फिजाइया ने आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दूसरी सेखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन का एहतमाम किया। इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, ग्वालियर, बेंगलुरु, गुवाहाटी और जोधपुर शामिल हैं। भारतीय फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय फिजाइया की जुनूबी फिजाई कमान की जानिब से आज तिरुवनंतपुरम में वाके लुलू मॉल में सेखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन SIM 2026 का एहतमाम किया गया। ये तंदुरुस्ती और लोगों से राबते के सिलसिले में भारतीय फिजाइया की एक अहम पहल है। ये प्रोग्राम भारतीय फिजाइया के वाहिद परमवीर चक्र याफ्ता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की अजीम कुर्बानी और बहादुरी को याद करने और हुब्बुल वतनी, नज्म व ज़ब्त, जिस्मानी तंदुरुस्ती, सेहतमंद तर्ज जिंदगी और मुल्क के तई खिदमत के जज्बे को फरोग देने के लिए मुनक़िद किया गया। खास खबरें एक बार फिर। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि मुल्क के इदारों, एमएसएमईज और स्टार्टअप्स की कुव्वत पर विकसित भारत का सफर आगे बढ़ेगा। मगरबी बंगाल में नंदीग्राम और रेजी नगर असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव की इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। सनती तरबियती इदारों की कायापलट के लिए शुरू की गई पीएम सेतु स्कीम को एक साल मुकम्मल हो गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं तेज बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई की है। यमन के हुकाम ने सना और सादा में हौसियों के कब्जे वाले इलाकों पर हमलों की तस्दीक की है और 2026 के एशियाई खेल आज जापान के नागोया में इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। भारत सोने के 21 तमगों समेत मजमूई तौर पर 85 तमगे जीतकर चौथे मुकाम पर रहा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the Midday News. The headlines. Journey of Viksit Bharat will be built on strength of India's institutes, MSMEs and startups, says Vice President C.P. Radhakrishnan. In West Bengal, campaigning ends today for Nandigram Reji Nagar Assembly by-elections. PM Setu scheme aiming to transform industrial training institutes completes 1 year. IMD forecasts heavy rainfall at isolated places over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. Yemen confirms strikes against Houthi-controlled areas in Sana'a and Sada'a. Houthi claims missile and drone attack targeting Aramco facilities in Riyadh. And Asian Games 2026 to conclude today at Nagoya in Japan. India secures fourth place in overall medal standings with a tally of 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. And now the news in detail. Vice President C.P. Radhakrishnan today said that the journey of Viksit Bharat will be built on the strength of India's institutes, MSMEs and startups. Addressing the 58th Foundation Day of Institute of Company Secretaries of India, ICSI, in New Delhi, Mr. Radhakrishnan emphasized that the nation cannot progress without gaining the trust and confidence of the investors. The Vice President noted that India is one of the fastest growing economies in the world, while simultaneously entering into an era of rapid technological advancements.
3: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy, and I'm sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
2: Talking about ICSI, Mr. Radhakrishnan lauded the institute for contributing in the promotion of good corporate governance in the country and described it as the global benchmark for sustainable development. Today is the last day of campaigning for the Nandigram and Rejinagar Assembly by-elections. The voting will take place on Tuesday, the 6th of October. Central forces have already started arriving in both the constituencies. Police and central force personnel have begun

0: unwavering dedication of India's scientists, researchers, and ground staff. He added the release marks an important transition in India's Great Indian Bustards Conservation Program. Mr. Yadav also thanked Prime Minister Narendra Modi for his support in enabling the scientific community to work towards the conservation. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Journey of Viksit Bharat will be built on strength of India's institutes, MSMEs and startups, says Vice President C.P. Radhakrishnan. In West Bengal, campaigning ends today for Nandigram Rajinagar Assembly by-elections. PM Setu scheme aiming to transform industrial training institutes completes 1 year. IMD forecasts heavy rainfall at isolated places over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. Yemen confirms strikes against Houthi-controlled areas in Sana'a and Sada. Houthi claims missile and drone attack targeting Aramco facilities in Riyadh. And Asian Games 2026 to conclude today at Nagoya in Japan. India secures fourth place in overall medal standing with a tally of 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा भारत अपने संस्थानों सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए प्रचार आज समाप्त हो जाएगा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के संस्थानों सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम तथा नवाचार की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 58वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों के दौर में भी प्रवेश कर रहा है
2: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy and I'm sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
1: श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कंपनी सुशासन को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए गए हैं उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा पीएम सेतु योजना का आज एक वर्ष पूरा हो गया है इस योजना के अंतर्गत उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना मजबूत हुई है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की यह योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी इसका उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी मजबूत करना प्रशिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को बढ़ाना है ब्यौरा हमारे संवाददाता से
3: इस योजना का उद्देश्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई को आधुनिक और उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है योजना के तहत आईटीआई में प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल देने पर जोर दिया जा रहा है पीएम सेतु योजना के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है इसमें केंद्र सरकार 30,000 करोड़ राज्य सरकार 20,000 करोड़ और उद्योग जगत 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा देश में सरकारी और निजी आईटीआई की संख्या 2014 में 9,000 से अधिक थी जो 2026 में बढ़कर 13,000 से ज्यादा हो गई है पीएम सेतु योजना के तहत

0: अब तक 850 ITI को चुना गया है। इनमें 172 हब ITI और 678 स्पोक ITI शामिल हैं। योजना के तहत 200 ITI क्लस्टर में इसे देश भर में लागू करने की मंजूरी दी गई है। 14 ITI क्लस्टर के लिए 3,446 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश योजना को मंजूरी मिल चुकी है। आनंद और ऋषु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज की विशेष श्रृंखला में असम में गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण की जानकारी दी जा रही है। इस हवाई अड्डे के कारण अब पूर्वोत्तर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार बन गया है।
2: असम का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक क्षेत्रीय ट्रांजिट केंद्र से विकसित होकर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित हो गया है, जो पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को नई गति दे रहा है। प्रकृति से प्रेरित नए एकीकृत टर्मिनल 2 पर केंद्रित इस विशाल विस्तार परियोजना को केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को इस अत्याधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया था और 22 फरवरी 2026 को इसका वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ। नई सुविधा के साथ हवाई अड्डे की वार्षिक यात्री क्षमता बढ़कर 1,30,00,000 से अधिक हो गई है। टर्मिनल के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस प्रकार का बुनियादी ढांचा और अन्य विकास परियोजनाएं युवाओं के लिए एक नए अवसर सृजित करती है।
3: इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का बहुत बड़ा संदेश भारत की विकास यात्रा की पहचान बढ़ रहा है। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलता, निवेशकों को कनेक्टिविटी का भरोसा मिलता, लोकल प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने का रास्ता खुलता और सबसे बड़ा भरोसा उस युवा को मिलता है जिसके लिए नए अवसर पैदा होते हैं। और इसलिए आज हम असम को असीम संभावनाओं की इस उड़ान पर आगे बढ़ते देख रहे हैं।
2: दक्षिण पूर्व एशिया के रणनीतिक संपर्क बिंदु पर स्थित यह उन्नत हवाई अड्डा बैंकॉक, पैरो और सिंगापुर जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सुगम हवाई संपर्क प्रदान कर रहा है, जिससे असम भारत के पूर्वी प्रवेश द्वार के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त बना रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भेजी जा रही हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमरीका के हिंद प्रशांत कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमरीका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क में 2 नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों को छोड़ा। श्री यादव ने कहा कि ये उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों की एक दशक की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पक्षियों को जंगल में छोड़ने से इनके संरक्षण में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए IIT के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन IIT आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन IIT वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और IIT के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कल से गुजरात में 2 दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इसमें देश में राजमार्ग के विकास और परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी तथा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी पर चुप्पी साधने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में कहा

0: कि पूरा राष्ट्र कैप्टन स्मिथ के असाधारण साहस से गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि जहां कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की भारत और विश्व में प्रशंसा हो रही है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व इस उपलब्धि पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपना वोट बैंक खोने के डर से मौन है। दिल्ली पुलिस ने 3 महिला पत्रकारों के पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। ये घटनाएं कल नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान हुई। ये पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। यमन की सेना ने देश के कुछ प्रमुख मोर्चों पर हूती लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस बीच सऊदी अरब ने हूतियों के रियाद में मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा खारिज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की है।
2: हूती विद्रोहियों के दियात पर हमले के दावे को सऊदी अरब ने खारिज कर दिया है। सऊदी पक्ष ने कहा है कि यमन में मिली हार के चलते हूती एक इल्यूजरी विक्ट्री का दावा कर रहे हैं। इससे पहले हूतियों ने दावा किया था कि उन्होंने रियाद के पास अरामको की एक फैसिलिटी को निशाना बनाया और उनके मिसाइल और ड्रोन हमले टारगेट पर भी लगे। वहीं यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ने कहा है कि उसकी आर्म फोर्सेस ने तैज और तूर अलबहा में हूती ठिकानों के खिलाफ 97 ऑपरेशन किए। इन ऑपरेशन में 260 हूती लड़ाकों को न्यूट्रलाइज करने और 44 मिलिट्री व्हीकल्स और सप्लाई एसेट्स को नष्ट करने का दावा किया गया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता ने कहा कि ताइज में हुए नुकसान के बीच हूती समूह अपनी जीत दिखाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह हूतियों की अपने नुकसान से ध्यान भटकाने की कोशिश है। अमरीकी तटरक्षक बल ने पुष्टि की है कि बरमूडा से बोस्टन जा रहे लापता चिकित्सा विमान का मलबा नेटकट तट के पास मिल गया है। इस विमान में कनाडा के 4 और बरमूडा के 2 नागरिक सवार थे, जिनकी तलाश की जा रही थी। कनाडा के परिवहन मंत्री स्टीवन मैकिनॉन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। जापान के नागोया में एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। समापन समारोह कुछ ही देर में 2:30 बजे शुरू होगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि महिला निशानेबाज नीरू ढांडा भारत की ध्वजवाहक होंगी।
3: एशियाई खेलों में भारत शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी में भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई भी कर लिया है। कुश्ती में अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत की मुक्केबाजी टीम ने 3 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। गोल्फ में प्रणवी उर्स एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर बनी। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत पदक हासिल किया। तीरंदाजी में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। जबकि कुमकुम मोहत व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बनी। तीरंदाजी में भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक जीते। समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमणी शिवा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमणी शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाकर आजादी की भावना जगाई। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ क्षेत्रों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। वायुसेना ने आज कई शहरों में सैकड़ों भारतीय वायुसेना मैराथन आयोजित की। इनमें दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, ग्वालियर, बेंगलुरु, गुवाहाटी और जोधपुर शामिल हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नई दिल्ली में दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर वाइस मार्शल

शेखर यादव ने संवाददाताओं से कहा कि मैराथन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की स्मृति में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण साहस का प्रदर्शन किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अंत जी एक मोमेंट टीचर जी अंत बीमार हूँ तो असोली एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट हो तरफ होगा जे एनी असो जे ऑफिस में था हमारे एक ऑफिसर एक बंदा के नो से सर्वे तू जल्दी का तो से खबर सुनाओ जी भाई कि भाई मैं अश अनु जानवर से यानी अशुभ से या फिर अश अनि आई से या अश अनि गाँव से
1: गांव से
0: मोरे अनि अजीब मोमेंट एक थे नहीं जू अजीब आ दे वो खा गु जू रे खा गु जू
1: या
0: थे
1: बाय
0: थी
1: खाई
0: बाई खाई जू रे थी निश्चित तो कि नाला मानू रो इंसान नाला इन्वॉल्व था चुन तो सिर्फ पता भी नहीं कि भाई हर एक चीज बारे पता भी नहीं कि भाई आशा नहीं गाँव अनाई बोही आशा नहीं बोही वो तो सिर्फ जल्दी की खबर सुनो जी आज नजदीकी आतनो एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर कह रहे या फिर आतनो एक नुमाइंदा एनो गामा या सिर्फ खबर सुनो जी भाई अने अने अने जानवरों आशन से अने तुम आशन से अने तुम सुनते तो थोड़ा ये टकूं कि भाई हाँ भाई जो प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम नहीं से रेनो जल्दी पता बोन है कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है तेरे तो
1: Bilkul jų, to asne ek chakyu hariya sto to ane ek kawal shabu ko mojo gazi ga jų ki asne bal muleli phashte janwaro ga sonje ek zimidari bil the. To ne ai phashte re jų asonje janwaro sana sluk beso dil hi mubi chone au jin jų.
0: बिल्कुल
1: Oin ai phashte re ni zimidari ga bili jino re be dish ga sonje जनोरे मतलब हिफाजती यानी शुंग ने ओनी या जनोरे ट्रेन ने बोनी आई फर्स्ट है जनी हर चीज असो के ख्याल छो जनी लाई जरूरी बिल जू तो खास कर तो से असनो शिनलो गाला का थले तो या असनो अला का थलो तो जू असने जानवरों मतलब तू तु थन तू से मतलब थने अच्छे गी थे थलो तो या थनो गा मजा जोक पशो जो कि बेस जानवरों सन असनी मोहब्बत खाई धनुषिया जानवरों सन असनो रिश्ता छोरो नस धनुषिया जानवरों सन बेसु जानवरों हिफाजत कनाई तो थोनस ससो बारे मतलब थनी एच जा थोई कनाओ मतलब रसो सोचित था जो
0: से तो हर दिशु या कौन को मोथनिया बेसु अपनी एक चीज देखिए प्रायोरिटी बस बेसही है
1: बिल्कुल
0: जैसे अगर मोरे अनु चीज अनु जानवर मोरे जरूरी हूं जैसे अनि गाव हुई अनु अशुभ हूं अशुभ से मोरे बार हरू आज आजा ब्रक है बार हरू तो से बिल्कुल जबरदस्त ख्याल छोड़ लू कि मैं अंत मोर बार हरू अंत मोर कमाई देते हूँ से वजह से प्रायोरिटी थोश है जो
1: बिल्कुल ना
0: बजाय की एक आए के या एक कुको के सिर्फ
1: कोको
0: अच्छा खास ख्याल से नोटी तो नोटी खे तो खे शुमाई खे तो खे जो बिल तो बजाय फर्क बोन
1: बिल्कुल
0: लेकिन आज पे अगर जे खालका दा काल तो लोट के सीधा फिर मेरा डॉक्टर राजू ने हां जो हम दी चोट का जो कनी तुम थे खेत
1: बिल्कुल
0: से आसो जे मां हर एक चीज आसो जे प्रायोरिटी बेस चले अच्छा जैसे अगर इंसान के बोथनिया बे आपस में अगर एक खास एक दूसरे बेसुक्रो में आना तो बेसो से प्रायोरिटी हो चाहिए जो
1: दोनों दोनों बिल्कुल
0: बाकी प्राव से अगर क्रम में ना जैसे तेरे प्रायोरिटी बेस कम आ जाना था आई था पे बेस जानवरों में होना चाहिए प्रायोरिटी बेस है सुना बेस कि भाई अनुगाव बिल अंत असो दूध देनी अंत असो जे या लोट जे बड़ी प्रमा काल खुद से बेस मरो ना
1: मारो
0: से या अंत थोशे ख्याल छोड़ा आई बथन लट बथन अश बथन इस बजाय कि एक कोको कोको मुंह तो जे बिल तो जे अच्छा खास फर्क भी नहीं लट
1: बिल्कुल
0: वट के टेक में के जे फर्क बिल तो हल्का सा जे बिल तो का लाई फर्क भी नहीं से आई आज भी तो प्रायोरिटी बेस है छोड़ेगी हाँ चमा
1: बिल्कुल जो तो असोच जानवरों मतलब दूध रे जो को थो शावर रजेगा कि गावो जो असो दूध ला जो नास मोस ला जो नास आई फर्स्ट जो ने गोया रखा जा आई फर्स्ट हर चीज हो तो जानवरों जो फायदा असोच कचाक लजी जो
0: जानवरों फायदा तो हर एक लाई चीज है जो जानवर था आसमोच आसमो इको सिस्टम एक आसमो डिपेंड हूँ पूरा
1: बिल्कुल
0: जैसे एक आसमोच जैसे एक प्लांट्स जितना जरूरी है अचार आसमोच इतना जानवर का लाई जरूरी है कि एक बैलेंस बराबर सचो से है एक दूसरा फायदा है कि भाई आसोचे जो भी आसोच जैसे विंटर विंटर आसोचे आज खास कर भाई दूर दराज इलाका विंटर है आसोचे शाप सब्जी वब्जी मौत वोतने फालो कुनी बेसु अकेले जानवर हाँ आज आसोचे अल अकेले लट रही अकेले गाँव है नहीं रे नहीं से बेसु आज विंटर है आसोचे लाई फायदेमंद बनी
1: बिल्कुल
0: मौत से तो गोयार गोयार योन का इस्तेमाल थोड़ी बेसु वालो का इस्तेमाल थोड़ा गाँव तो वालो का इस्तेमाल थोड़ा
1: बिल्कुल
0: बेन से या से का लाई फायदा ही दूतो लाई इस्तेमाल थोड़ा बेसु या तो मैं तुझे
1: जूली
0: बेचू यू ली हूँ अच्छा दही है
1: दही बिल्कुल
0: बहुत सारी चीजें तो इस्तेमाल होना या तो मैं बारे के तो बेचू खाली गाय से फाना लाइन मैं जानवर ही
1: बिल्कुल जानवर
0: खाली गाय से फाना लें या तो मैं बान गाय नो छूना लें
1: बिल्कुल
0: मैं हर एक चीज असम बुरा जानवर ही
1: डिपेंडेंस
0: डिपेंडेंस रहे इस मतलब बेचू असम रिलेशन हो या टेनो हाला कि भाई
1: जी
0: जब थो हाँ तो बेगाना छे
1: बेगस
0: या तो थो हाँ तो यानी प्लांट था तो एनिमल था एनिमल था तो बेगा हाशा से एक पूरा एक सिस्टम के हिसाब से बेबुड़ नाला कनेक्ट था एक दूसरे के साथ
1: बिल्कुल जो तो को तसों के सिस्टम है खतरे जो कि बे असने गाम फाते बे दरो थरे खातेस बोन तो से वो बे सु जानवर छोड़ो नहीं असों के वार ने भी लोग क्या तो बे सु करगिल कमरा के एक दूध दोनस या लाऊं तक दिल तो एक दूध दोनस गाव छोड़ो नहीं लाटक छोड़ो नहीं असों के वार एक बीनुश ने बोन तो कि

रत पहचान दी थी और मैं शायर तो नहीं, उसे एक पीढ़ी की आवाज बनाकर छोड़ गया, लेकिन हमने तुमको देखा ने उसे पहचान को और मजबूत बनाया। गायक शैलेंद्र सिंह की आवाज की सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी कि उसमें कोई बनावट नहीं है। मोहब्बत को बहुत ऊंची आवाज में कहने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी धीमी से कहा हुआ एक गीत भी बरसों तक सुनाई देता है। और हमारे आज के कलाकार भी, शैलेंद्र सिंह भी कुछ इसी तरह के कलाकार हैं।

दोस्तों आज हमने बात की शायर हमारे, जी हाँ मैं शायर तो नहीं गीत के, खूबसूरत नायक जिस बहुत सी फिल्मों में उन्होंने नायक का भी काम किया और खूब सारे और गायकी उनकी

इतनी जबरदस्त रही कि हमारे आज के जो बर्थडे बॉय हैं शैलेंद्र सिंह, आज हमने उनकी बहुत सी फिल्मों के कुछ कुछ गाने ही सुने। बहुत सारे गाने हैं, कभी और मौका लगा तो जरूर आपको सुनाएंगे, लेकिन अब घड़ी हमें इशारा नहीं देती कि और इजाजत भी नहीं देती कि हम इसको और आगे बढ़ाएं। तो आज के इस कार्यक्रम से मुझे यानी आपके रेडियो हम सफर सोनाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रही हैं। मेरी व्यू 366.3 मीटर। श्रोताओं, दोपहर के 3 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: नृत्य गोपाल जी
1: जी चंपा जी,
0: देखो ब्रज वसुंधरा राय ना अपने आंचल में इतनी कलान को समेटे भाई है ना कि जितनी भी बात करो ना उतनी ही कम है।
1: देखो चंपा जी, जब आप उत्सवन की बात कर रहे हो तो या समय तो ब्रज में अच्छो सो जो उत्सव चल रहे हो है, जा में चारों ओर धूम मची रही है, वह है सांझी को उत्सव। और क्वार के महीना में ये जो पितृपक्ष है या में रंग सांझी और ये जो चित्र बनाए के जल में सांझी बनाई जाए, फूलन की सांझी है, गोबर की सांझी है।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, आप देखो ना सांचो जाते की ब्रज में खाका के में बे खाका बनाए के ना उनमें चौकटा, बेल, कंगूरा, महल, बाग, उपवन, तड़ाग, इनको

मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

3:30 पर आप सुनेंगे ड्रामा आगा हशर काश्मीरी का लिखा यहूदी की लड़की। चार बजे प्रोग्राम होगा फिल्मी मौसीकी का, जिसमें आप फिल्मी नगमों का लुत्फ ले सकते हैं।

सकेंगे। ये प्रोग्राम 4:50 तक जारी रहेगा और 4:50 पर आप खबरें समाप्त करेंगे। 5 बजे हमारी तीसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम को पहुंचेंगी।

मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।

ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद कोनेन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि मुल्क के इदारों, एमएसएमई और स्टार्टअप्स की कुव्वत पर विकसित भारत का सफर आगे बढ़ेगा। इसराइल के वजीर आजम बेनियामिन नितिनयाहू ने भारतीय पायलट स्मिथ मछार को इसराइल, भारत और पूरी दुनिया का हीरो करार दिया है। उन्होंने कैप्टन स्मिथ मछार और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इसराइल के यौम आजादी की तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया। यमन के हुक्काम ने सना और सादा में होसियों के कब्जे वाले इलाकों पर हमलों की तस्दीक की है। होसियों ने रियाज में आराम को मरकज को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमला करने का दावा किया है। यूक्रेन के वजीर खारजा एंड्रिल सेबिहा ने कहा है कि यूक्रेन जंग बंदी के लिए भारत की तजवीज पर गौर करने को तैयार है। और 2026 के एशियाई खेल आज जापान के नागोया में इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। भारत सोने के 21 तमगों समेत मजमू तौर पर 85 तमगे जीतकर चौथे मकाम पर रहा। अब खबरें तफसील से। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि विकसित भारत का सफर मुल्क के इदारों, छोटे, बहुत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों, नीज स्टार्टअप इदारों की कुव्वत पर आगे बढ़ेगा। वो आज नई दिल्ली में भारत के कंपनी सेक्रेटरियों के इंस्टीट्यूट ICSI के 58वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब कर रहे थे। जनाब राधाकृष्णन ने जोर देकर कहा कि मुल्क सरमायाकारों का भरोसा और एतमाद हासिल किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेज रफ्तार तरक्की करने वाली मईशतों में से एक है। साथ ही वो तेज रफ्तार तकनीकी पेशरफ्त और तरक्की के दौर में भी दाखिल हो रहा है। भारत के कंपनी सेक्रेटरियों के इंस्टीट्यूट ICSI का तذکرہ करते हुए जनाब राधा कृष्णन ने मुल्क में अच्छे कॉरपोरेट इंतजामिया के फरोग में इंस्टीट्यूट के अहम रोल की सताइश की और इसे पायदार तरक्की के लिए आलमी पैमाना करार दिया। उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की कि मजबूत आत्मनिर्भर भारत की तामीर में ICSI की इज्तिमाई कोशिशों की बदौलत मुल्क एक दिन की वाहिद सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। अपग्रेड किए गए ITIs के जरिए प्रधानमंत्री हुनरमंदी और रोजगार के मौके फराहम करने वाली स्कीम पीएम सेतु का आज एक साल मुकम्मल हो गया। हुनरमंदी की तरक्की और सनअतकारी की वजारत की स्कीम पीएम सेतु का आगाज पिछले बरस 4 अक्टूबर को किया गया था। इस स्कीम का मकसद सनअत पर मबनी हुक्मरानी को मजबूत करना, तरबियत से मुतालिक बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना और उभरती हुई अफरादी कुव्वत की मांग के मुताबिक कोर्सेज को फरोग देना शामिल है। इसराइल के वजीर आजम बेनियामिन नितिनयाहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मछार और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इसराइल के आइंदा यौम आजादी की तकरीबात में तकरीबाती शमा रोशन करने के लिए मदऊ किया है। कैप्टन मछार से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान जनाब नितिनयाहू ने फजाई हमले को नाकाम बनाने में उनकी बहादुरी को सराहते हुए उन्हें भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का हीरो करार दिया। उन्होंने कैप्टन मछार की जल्द और मुकम्मल सेहत याबी के लिए नेक तमन्नाएं की और उनके अहले खाना के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जनाब नितिनयाहू ने कहा कि तकरीबाती शमा रोशन करने का एजाज रिवायती तौर पर इसराइली शहरियों के लिए मखसूस होता है, इसलिए कैप्टन मछार को यह दावतनामा उनकी बहादुरी और खिदमात का एक गैर मामूली और अहम एतराफ है। कैप्टन मछार इस वक्त अबूजबी में जेर इलाज हैं और सेहत याबी के मरहले से गुजर रहे हैं। उन्होंने कॉकपिट में होने वाले हमले के दौरान गैर मामूली दलेरी और हाजिर दिमागी का मुजाहिरा करते हुए 174 मुसाफिरों की जानें बचाईं।

यमन की फोर्सेस ने दावा किया है कि यमन में अहम महाजों पर हौसी लड़ाकों को काफी नुकसान पहुंचा है। उधर सऊदी अरब ने हौसियों के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि सऊदी शहर रियाज को मिसाइल और ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। मीडिया इत्तलात के मुताबिक यमन की बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा सरकार की मुसल्ला अफवाज ने दो महाजों पर हौसी कुमक के खिलाफ 97 कार्रवाइयां अंजाम दी हैं। इत्तलात में कहा गया है कि इस कार्रवाई में 260 हौसी लड़ाकों को हलाक किया गया है और 44 फौजी मोटर गाड़ियां और ट्रांसपोर्ट नीज सप्लाई साजो सामान तहस नहस हो गया। मालूम हुआ है कि फोर्सेज ने सना और सादा में हौसी ठिकानों को निशाना बनाया। टकराव वाले अहम महाजों पर लड़ाई में तेजी आ रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। यूक्रेन ने रूस के साथ मुमकिना जंगबंदी के लिए भारत की तजवीज को कीव को मौसूल होने वाली 4 तजावीज में सबसे अहम करार दिया है। यूक्रेन के वजीर खारजा एंड्रिल सेबिहा ने कहा है कि यूक्रेन तवानाई के बुनियादी ढांचे और बहरे अस्वद में जंगबंदी पर गौर करने के लिए तैयार है। उनका ये बयान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के एक दिन बाद सामने आया जिसमें उन्होंने कहा था कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तनाजे के बाहमी तौर पर काबिल कबूल हल तक पहुंचने के लिए तामीरी नजरियात पेश किए हैं। वजीर खारजा सेविहा ने कहा कि यूक्रेन को भारत, तुर्किया, मिस्र और अमरीका की जानिब से जंगबंदी की तजावीज मौसूल हुई हैं। उन्होंने कहा कि कीव जंगबंदी के मुख्तलिफ तरीकों पर गौर करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी मायदे का दायरा सिर्फ मैदान जंग की कार्रवाई तक महदूद नहीं होना चाहिए बल्कि तवानाई और बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे पर हमले और बहरे अस्वद में जारी सरगर्मियों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। जापान में जारी एशियाई खेल आज इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। इस तरह 2 हफ्ते से ज्यादा अरसे से जारी खेल मुकाबलों का सिलसिला खत्म हो जाएगा। भारत ने 20वें एशियाई खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। भारत मजमू तौर पर 85 तमगे जीतकर चौथे मकाम पर रहा। इनमें सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगे शामिल हैं। इन खेलों की इख्तितामी तकरीब जापान के नागोया शहर में पालोमा मिजुहो स्टेडियम में जारी है। भारत की सरकर्दा निशानेबाज नीरू डांडा इख्तितामी तकरीब में भारतीय दस्ते की परचम बरदार हैं। भारतीय मुक्केबाजों का दस्ता एशियाई खेलों में अपनी शानदार मुहिम के बाद नई दिल्ली वापस आ गया है। अपनी आमद के बाद नामा निगारों से बात करते हुए मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने, जिन्होंने अपनी सालगिरह के दिन खवातीन के 75 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता था, इस बात को उजागर किया कि उनकी इस जीत ने इस संग मील को और भी खास बना दिया। उन्होंने कहा कि एशियाई खेलों में दूसरी बार मुकाबला करने से उन्हें अपने खेल को बेहतर बनाते हुए सोने का तमगा जीतने का मौका मिला जबकि साबिका खेलों में उन्होंने चांदी का तमगा हासिल किया था। इधर मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने भी सोने का तमगा जीतने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने मर्दों के 80 किलोग्राम के जुमरे में सोने का तमगा हासिल किया था। अंकुश पंघाल ने कहा कि वो अब ओलंपिक खेलों पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में खवातीन के 53 किलोग्राम के फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने पर अंतिम पंघाल को मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी ने चांदी का तमगा हासिल करने पर भारतीय खवातीन की गोल्फ टीम को भी मुबारकबाद पेश की है जो आदिति, अशोक, प्रणवी, शरत उर्स और दीक्षागर पर मुश्तमिल है। वजीर खारजा डॉ एस जय शंकर ने आज भारत बहरुल काहिल कमान से मुतालिक अमेरिका के कमांडर एडमिरल सैमुअल जे पापारो से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने भारत बहरुल काहिल खित्ते में भारत और अमेरिका के दरमियान सिक्योरिटी साझेदारी और बहरी इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि मुल्क के इदारों, एमएसएमईज और स्टार्टअप्स की कुव्वत पर विकसित भारत का सफर आगे बढ़ेगा। इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ मछार को इसराइल, भारत और पूरी दुनिया का हीरो करार दिया। उन्होंने कैप्टन स्मिथ मछार और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इसराइल के

पूर्णिमा फिल्म में आपने मुकेश और लता मंगेशकर को सुना? आप सुनिए, फिल्म सावन की घटा का ये नगमा, आवाज है आशा भूस

आप समाप्त कीजिए शगुन फिल्म का ये नगमा। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की। नगमा निगार हैं साहिल लुधियानवी और मौसीकार खैयाम।

0: इस नगमे के साथ ही मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। यहूदी की लड़की, लीजिए समय ये ड्रामा सुनिए, आगा हशर काश्मीरी का लिखा।
1: लचक है शाखों में, जुम्बिश हवास फूलों में, बहार झूल रही है खुशी के झूलों में।
2: हवाए ऐश ने फैला दी निकटे शादी, उड़ा है मुझके खुतन खाक के बबूलों में।
3: शहजादी साहेबा, अजरा यहूदी दरे दौलत पर आया है और वो बेश कीमत हार जिसकी तैयारी का हुजूर आलिया ने हुक्म दिया था साथ लाया है।
4: हाजिर करो।
5: देवता खैर करे, ये नहुसत की निशानी, मुसीबत का पेश खेमा, इस हंसी खुशी के जलसे में कहां से नाजिल हुआ।
6: बुजुर्ग बाप, आपने नफरत का इजहार क्यों किया? क्या वो कोई चोर या खूनी है?
5: इस शादी के जलसे में एक यहूदी का हाल लाना, ये सख्त बदशगुनी है।
6: मगर उसके यहां आने से हमारा क्या नुकसान हो सकता है?
5: रातों को एक कोने में बैठकर रोने वाले कुत्ते क्या नुकसान पहुंचाते हैं, जो मोहल्ले से मारकर फौरन ही भगा दिए जाते हैं। इसी तरह ये मलाऊन यहूदी भी जहां जाते हैं कोई ना कोई मुसीबत जरूर साथ ले जाते हैं।
4: अजरा, खुश आमदेद। गालिबन तुम हार मेरी मर्जी के मुआफिक ही तैयार करके लाए होगे।
6: खादिम ने कोशिश तो इसी बात की है।
4: बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। ये दिलकश हार जब मेरे ईसा नफस मार्कस की सुराहीदार गर्दन का हार होगा तो बड़ा पुरबहार होगा।
5: अजीज शहजादी, चूंकि ये हार एक यहूदी के हाथ का बनाया हुआ है, इसलिए इसे पहले गिरजे में भेजकर दुआओं से दम करा के पाक बनाया जाए, उसके बाद शहजादे मार्कस के गले में पहनाया जाए।
6: आली मर्तबत दीनी सरदार, जिस तरह रोमन कौम बादशाह की फरमा बरदार है, उसी तरह यहूदी कौम भी उसकी दुआ गुजार है। महज तअस्सुब की बिना पर उसकी एक शरीफ रियाया को सरे दरबार जलील करना कितने शर्म की बात है।
5: जलील को जलील कहना मेरी नजर में कोई बुराई नहीं।
6: अगर वाकई हम ऐसे ही हैं तो हमें ऐसा बेरहम बनाने वाले भी तुम और तुम्हारी कौम है।
5: झूठे, अगर हम वाकई ऐसे ही होते तो तुम लोग हमारी सल्तनत में रहने भी ना पाते।
6: क्यों नहीं? क्यों नहीं? ये आफताब जो हमें रोशनी पहुंचाता है।

0: आसमां के फरिश्तों, मुझे तौफीक दो कि मैं बावफा मार्कस की जान बचाऊं और शकस्ता दिन यहां से उठ ना जाऊं। हुजूर, आप इस जंजली की दबी आग को भड़काने आई हैं? क्या इस बुझते चराग को और जलाने आई हैं? ऐ हूर शिमाइल राही, कौन है हूरो परी? शमसो कमर आपकी हम, कौन है यार की मंजूर नजर आपकी हम? वक्त लाया है मुझे तेरी रसाई करने, मैं तेरे कदमों में आई हूँ गदाई करने। जो मेरा माल था सो तुमने छुपा रखा है, अब यहाँ क्या है, मेरे हाथ में क्या रखा है? तुम्हारे हाथ में उस नादान मार्कस की जान है। बुरे का हाल दुनिया में बुराई हो तो अच्छा हो, मुझे रुस्वा किया जिसने इलाही वो भी रुस्वा हो। राहिल, यहाँ की अदालत जाबिर है, शहजादी की जान नाहक जाएगी। आईन अदालत यहाँ का साफ नहीं है, आईना है उसमें मगर इंसाफ नहीं है।
1: यही आईना इंसाफ होगा, इसी से मेरा आईना दिल साफ होगा।
0: नहीं, क्यों ना कहो, को उसने तुम्हें ठगा है, मगर उस दगाबाज को खुदा पर छोड़ देना अच्छा है। आप मर जाए बशत पर गैर की जान बख्श दे, और अगर बख्शिश की रखता हो तो इंसान बख्श दे।
1: छोड़ दो उसको कि तुम चैन करो उसके साथ, छोड़ दो उसको कि तुम बोलो हंसो उसके साथ।
0: मैं कभी दिन न अहले दगा को दूंगी, दिल अगर दूंगी तो अपने खुदा को दूंगी।
1: उसको मैं आपकी खातिर कभी न छोड़ूंगी, अपना दम तोड़ूंगी और उसका भी दम तोड़ूंगी।
0: नहीं अजीज राहिल, नहीं, नेकी का नतीजा बेकार नहीं। चलो आओ, अदालत में कह दो कि शहजादे का कसूर नहीं।
1: कसूर नहीं, जिसने मुझको गौर किनारे

0: मैं ना गवारा उसकी जुदाई जीते जी मंजूर करूंगी, साथ जीऊंगी साथ मरूंगी, प्यार किया है प्यार करूंगी।
1: बेखबर प्यार का जीना तुझे मालूम नहीं, सच्चे आशिक का करीना तुझे मालूम नहीं। प्यार में यार की राहत में तवक्कुफ न करे, सर भी कट जाए रहे यार में तो उफ न करे।
0: नहीं ये टूटा हुआ दिल और भी चूर चूर करूंगी, मगर तुम्हारा सुखन कभी ना मंजूर करूंगी।
1: मैं मंजूर कराऊंगी, तुम्हें पांव पड़कर मनाऊंगी। अगर सच्ची अशराफ औरत हो तो मर्दनी दिखाओ, जहन्नुमी देवता बनकर नेक औरत का नाम ना हंसा।
0: नहीं नहीं औरतों का नाम ना हंसाऊंगी, मर्दों को ये कहने का मौका नहीं दूंगी कि एक रोमन शहजादी ने सिर झुकाया और एक मगरूर यहूदी ने रहम ना खाया। सरकार जाओ खौफ ना खाओ,
1: जब मेरा जिस्म पाक खाक में मिल जाए और बेवफा दुनिया हमारी कौम को खुद गर्ज बताए, उस वक्त तुम पुकार कर कह देना कि शिकस्ता दिल राहीन अगरचे यहूदी थी मगर सच्ची वफादार और प्यार का सदा बहार गुलशन थी।
0: आफरीन ओ सच्चे प्यार की पुतली आफरीन,
1: मैं चलूंगी और उस बेवफा का आखिरी दीदार देखकर मरूंगी। राहील मर जाएगी मगर जो कहा है उसे कर दिखाएगी, बचाएगी और उसे जरूर बचाएगी।

0: राहिल, तू होश में है?
1: हाँ।
0: तुझ पर कोई दबाव तो नहीं डाला गया?
1: नहीं।
0: तो तू अपना पहला बयान वापस लेती है?
1: हाँ।
2: राहिल राहिल, क्यों मोहब्बत में अंधी हो गई है?
1: इसलिए कि अब और कुछ नजर नहीं आता।
2: क्यों अपने हाथों से अपनी कब्र खोद रही है?
1: इसलिए कि कब्र में जाऊंगी तो बेवफाओं के जुल्म से निजात पाऊंगी।
2: अदालत अदालत इसकी बातों का यकीन न करे, इस पर जरूर किसी ने जादू कर दिया है।
0: राहिल, मैं रोम के कानून के मुताबिक तुझसे तीसरी बार और पूछता हूँ कि तू शहजादा मार्कस पर लगाए हुए तमाम इल्जाम वापस लेती है?
1: हाँ, लफ्ज पा लफ्ज।
3: ये क्या मानी? जबां बदले, सखुन बदले, अदा बदले, ये क्यों कर इस जफा दीदा ने फिर तर्ज वफा बदली? छुपा दी है खटापन कर ये मेरे जुर्म इसिया को, इलाही आज इस कुरसार की कैसी हवा बदले?
0: अजरा, चूंकि तुम भी इस दावे की ताईद करने वाले थे, इसलिए अब तुम क्या कहते हो?
2: जिस कदर अफ्रीका के बेआबान में रेत के जर्रे हैं, उनसे भी ज्यादा मेरे पास अल्फाज थे, मगर इस नासिबत अंदेश की वजह से अब कुछ नहीं कहना चाहता और अदालत के फैसले के सामने अपना सर झुकाता हूं।
0: तब मेरा सिर्फ इतना फर्ज रह गया है कि मैं अपना आखिरी हुक्म सुना दूं। शहजादा मार्कस, इज्जत और आबरू के साथ आपकी रिहाई की जाती है। राहील और अजरा, तुम्हें एक रोमन शहजादे पर बिला सबूत झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में जिंदा आग में जलाने की सजा दी जाती है।
1: मेरे बाप को सजा? मेरे बाप को मेरे जुर्म से क्या सरोकार?
0: इसलिए कि ये तुम्हारा हिमायती और मददगार है।
1: नहीं नहीं, ये नाइंसाफी है, जुल्म है, मुझे मार दो, बर्बाद कर दो, मगर मेरे बूढ़े बाप को आजाद कर दो।
0: कुछ नहीं हो सकता, इजलास बर्खास्त।
3: बुजुर्ग बाप, इस वफादार लड़की ने चूंकि मेरे साथ निहायत शरीफाना सलूक किया है, इसलिए अगर आप अपने वलीहत और होने वाले शहरयार को हमेशा के लिए हल्का बखोश बनाना चाहते हैं तो इसकी रिहाई की तदबीर फरमाइए।
0: अच्छा, आप जाइए, मुझसे जो मुमकिन होगा मैं वो करूंगा। राहिल, अगर तुम्हारा बाप तुम्हें बचाने के लिए तुमसे कोई दरख्वास्त करे तो क्या तुम मंजूर करोगी?
1: दिलो जान से।
0: अजरा, तुम अपनी लड़की को मौत के पंजे से बचाना चाहते हो?
2: जी, दिल और ईमान से।
0: तो इसे इजाजत दो कि ये अपना मजहब छोड़कर हमारे मजहब में शामिल हो और इसके साथ तुम भी हमारे दीन में दाखिल हो।
2: हरगिज नहीं, अपनी बच्ची के बचाने को और सब कुछ करने को तैयार हूँ, मगर अपना प्यारा मजहब छोड़ने से लाचार।
0: कम समझ, अपनी घर जान है तो सब कुछ है,
2: अपना ईमान है तो सब कुछ है,
0: अपना इम्कान है तो सब कुछ है,
2: अपना यजदान है तो सब कुछ।
0: अजरा अजरा, ये मेरी मेहरबानी है कि मैं इस वक्त तेरी जान बचाने को तैयार हूं, वरना तू जानता है कि मैं यहूदियों की सूरत तक से बेजार हूं।
2: और ये उसी बेजारी और नफरत का नतीजा है कि कुदरत ने तुम्हारा गुरूर तोड़ दिया है, तुम्हारा घर बार बीवी बच्चे सब कुछ तुमसे छीन कर तुम्हें इस दुनिया में तन्हा जलने और कुड़ने के लिए छोड़ दिया है।
0: मेरी पिछली जिंदगी के वाकयात तू कैसे जानता है?
2: बेदर्द रोमन,

यहूदी की लड़की। अभी आपने ये ड्रामा सुना, आगा हशर काश्मीरी का लिखा। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। फिल्मी मौसीकी लीजिए सामीन, इस प्रोग्राम में समाप्त कीजिए कुछ फिल्मी नगमे।

किशोर कुमार और मन्ना डे को आपने सुना फिल्म शोले में। और लीजिए आप सुनिए मौसम फिल्म का ये नगमा, आवाजें हैं लता मंगेशकर और भूपेंद्र की।

और प्रोग्राम की अगली पेशकश है फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस से, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

0: क्या चुप रहूं
1: ना,
0: दिल में मेरे आज क्या है,
1: क्या है,

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में आपने फिल्म दीवार का ये नगमा सुना। और लीजिए अब सुनिए परवीन सुल्ताना और मीनू पुरुषोत्तम और साथियों की आवाज़ों में ये नगमा। फिल्म है दो बूंद पानी।

Bubun Fanny, film saya enak, maaf ya Suna. और अब लीजिए सुनिए फिल्म कुर्बानी का नगमा। आवाज़ें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की, नगमा निगार हैं इंदीवर, मौसिकार कल्याण जी आनंद जी।

अभी तक आप हमारी नशरियात आकाशवाणी के उर्दू सर्विस से समाप्त कर रहे थे। मीडियम वेव 684 किलो हर्ट्ज के अलावा मीडियम वेव 1584 किलो हर्ट्ज और FM चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामिन हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। मीडियम वेव 93.9 किलो हर्ट्ज, मीडियम वेव 94.9 किलो हर्ट्ज और FM चैनल 1.6 मेगाहर्ट्ज का जो आकाशवाणी करगिल प्रोग्राम प्रोग्राम चिक सेवा संकल्प अभियान स्कूल ला।

0: तो हम अगर करेंगे, हमारे करगिल में 125 विलेज है, जो पूरी डिस्ट्रिक्ट में 125 विलेज है 98 पंचायत से, तो इनका पूरा हमने एक बेसलाइन डाटा हमने पहले कलेक्ट किया। उस हिसाब से गांव से जितने भी हमारी लिस्ट आई, उस लिस्ट के हिसाब से हमने हर एक हाउस होल्ड को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर हमने जो हमारा लद्दाखी टॉयलेट होता है, जो लोकल ड्राई टॉयलेट, वो हमने बनवाया। अब उसके लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक सेंसिटिव रखा हुआ था, जो कि 12,000 रुपये। तो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि 12,000 से तो हमारा जो लद्दाखी टॉयलेट है वो नहीं बनेगा, या दूसरा जो हमारा फ्लश टाइप लेटरिन है वो भी नहीं बनेगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना ये था कि भाई थोड़ा हम देते हैं आपको 12,000, आप अपना रुपये 20-30,000 अपना डाल के आप अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि एक घर होता है उसके अंदर फैमिलीज होते हैं, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, जवान होते हैं, उनके लिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो 12,000 इंसेंटिव है आप ये भी ले लो, प्लस आप अपनी फैमिली के लिए एक ड्राई टॉयलेट या एक फ्लश टॉयलेट। जहां से हमने इसका शुरुआत किया था 2014 के बाद, तो पहले पहले हमने फ्लश टाइप लेटरिन हमने बनवाए स्कीम के तहत, जिसमें हमने 4x4 का एक पिट रखा था, जो जिसमें कमोड और पाइप डाल के वो हमने हर हाउस होल्ड को, जो हमारे पास बेसलाइन सर्वे के मुताबिक जो हाउस होल्ड का हमारे पास जो लिस्ट आया था, उस हिसाब से हमने पूरे जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल के अंदर जितने भी हमारे बेसलाइन सर्वे के अंदर आए थे, उन सारों को हमने हर घर को जो है हमने SBM यानी स्वच्छ भारत मिशन का ये जो बेनिफिट है, ये हमने हर घर को हमने पहुंचाया, और हर घर को हमने जो हमारा लेटरिन है जिसको हम टॉयलेट बोलते हैं, वो हमने इस SBM स्कीम के अंदर बनाया। तो इसका बनाने का मकसद यही रहा, जो क्योंकि हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा एक वसी मुल्क है, बहुत बड़ा देश है, जिसमें हजारों लाखों में लोग बसते हैं, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान का एक खूबसूरती एक ये भी है जो कि हमारे देश के अंदर है, उसमें से 80% लोग गांव में बसते हैं, लेकिन हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी उन्हीं के लिए, जो रूरल में बसते हैं, रूरल में रहते हैं, रूरल में अपनी जिंदगी बसर करते हैं, उनके लिए जो है वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट काम करता है। तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने हर एक हाउस होल्ड को, जैसे हमारा बेसलाइन सर्वे उस टाइम किया गया था, उसी बेसलाइन में अगर एक गांव में 100 हाउस होल्ड है, तो 100 लोगों के हमने इस SBM यानी स्वच्छ भारत मिशन का बेनिफिट है गवर्नमेंट की तरफ से, जो 12,000 का एक इंसेंटिव रखा हुआ था, वो हमने लोगों के अकाउंट तक पहुंचाया। तो ये बनवाने का, ये सब करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मकसद यही रहा, जो भी हमारे बच्चे हैं या हमारे मेल हैं, फीमेल हैं या हमारे बुजुर्ग हैं, कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो ये चीजें यहां बहुत ही कम देखने को आपको मिलेगी, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर इलाकों में पाखाना जो है बाहर खेतों में या दूसरे नालों में, बाहर ही लोग ज्यादा उसका पाखाना खुले में करते थे, खुले में शौच, तभी ये स्कीम हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, ताकि लोग बाहर पाखाना ना करें, बल्कि अपने घर में आप टॉयलेट बनाया है, लेटरिन बनाया है, उसका इस्तेमाल करें, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, मर्द हो, मेल हो, फीमेल हो। तो इसलिए इस स्कीम को लॉन्च किया जो। अब इसमें एक चीज रहता है, जो उसके बाद हमने हर, जैसे मैंने पहले एक एग्जाम्पल में आपको कहा कि अगर एक गांव में 100 हाउस होल्ड है, तो उस 100 के लिए हमने 100 लोगों को अपना टॉयलेट बनाने के लिए उसका हमने SBM के अंदर बेनिफिट पहुंचाया, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो बाहर से टूरिज्म आता है, या हमारे दूसरे गांव से, तीसरे गांव से, चौथे गांव से लोग आपके अगर जिस गांव में आ जाते हैं, क्योंकि वो बाहर के लोग होते हैं, तो उसके लिए हमने CSC बनाए, जो हर गांव में CSC का मतलब है जो कम्युनिटी सेंट्री कम्प्लेक्स, यानी उसमें हमने एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए 2 टॉयलेट बनाए, वो भी उस जगह पे जहां पे लोगों का रश रहता है, जैसे आना रहता हो या रश रहता हो, जैसे हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम चांगरा, जहां पे अक्सर लोग वहां दिन भर बैठते हैं या आते जाते रहते हैं, या हमारा बस स्टैंड जैसे, तो इन चीजों में हम लोगों ने CSCs बनाए, ताकि हमारे जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए फैसिलिटीज रहे, कि वो किसी के घर को न ढूंढे या कहीं बाहर पाखाना न करे। इसलिए CSC बनाने का हदफ यही है जो। एक दूसरा ये रहा जो कि जो लोग अपने घर में हैं, वो तो अपने घर का टॉयलेट इस्तेमाल करेंगे, गांव वाले ही अगर बाहर जब रहते हैं, पेशाब करने का मन करे या पाखाना करने का मन करे, तो वो क्या करते हैं, कहीं खेत में घुसते हैं या किसी नाली में घुसते हैं या इधर उधर जाके गंदा करते हैं। तो उसके लिए रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने हर गांव में कम्युनिटी सेंट्री कम्प्लेक्स है उसका नाम, तो वो बनाया, ताकि एक तो बाहर से आने वालों के लिए फैसिलिटीज रहे, अगर आपके गांव में टूरिस्ट आते हैं तो उनके लिए भी फैसिलिटीज रहे, प्लस जो आपके गांव के लोग जो अक्सर या मर्द हो या मेल हो, फीमेल हो, अगर बाहर कहीं रहे तो उस CSC का वो इस्तेमाल कर सके, ताकि आपका गांव का जो एरिया है वो गंदा न हो।
1: तो हाँ साहब, जो अभी स्वच्छ भारत मिशन है, एक मिशन मोड पे अभी चल रहा है, मतलब आपने

0: कि टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करते हैं, कम्युनिटी बेस पे भी करते हैं, जिसका मेन एम्फेसिस है कि ओपन डिफेकेशन कम हो। इस चीज को इंश्योर करने के लिए डिपार्टमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं?
1: जो जो इसमें मैं एक चीज और इंश्योर करना चाहूंगा कि 2014 से हमने इस स्कीम का आगाज किया, उसके बाद हमने बेसलाइन सर्वे बनाया, फिर हर हाउस होल्ड को हमने इस 12,000 का जो इंसेंटिव हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो हमने हर हाउस होल्ड को पूछाया। उसके बाद हमने दूसरा काम किया कि सीएससीज बनवाए ताकि बाहर वाले अंदर वाले बाहर इधर उधर गांव के एरिए में गंदा ना करे, उसका इस्तेमाल करें। तो तीसरी चीज हमने यहां पे करगिल खासकर हमारा लद्दाख एरिया को जो उस टाइम हम जम्मू कश्मीर के साथ थे, तो हमारी जम्मू कश्मीर हुकूमत में 2016-17 में हमारे लद्दाख को जिसमें से हमारा कारगिल और हमारा लेह को डिक्लेयर किया ओपन डिफिकेशन यानी फ्री हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने हर हाउस होल्ड किसका बेनिफिट पहुंचाया है, तो हमारे जब जम्मू कश्मीर हुकूमत थी उन्होंने 2016-17 में इसको जो है खासकर हमारे लद्दाख को लेह और कारगिल को, जिसमें से कारगिल की अगर मैं बात करूं हमारा टीएचजी ब्लॉक और द्रास ब्लॉक आए थे फर्स्ट उस पर ओपन डिफिकेशन फ्री पे ओडीएफ पे, तो इस तरह हमारे जम्मू कश्मीर हमें ऐलान किया। उसके बाद ये सिलसिला अभी तक नहीं रुका है, तय दो बार ये जब अलग हो जाते हैं उनके लिए भी हम इंश्योर करते हैं कि उसको भी इस मिशन का जो है जो इंसेंटिव है जो 12,000 रुपया वो उस तक भी पहुंचे, ताकि वो भी अपने घर में अपना टॉयलेट हो या अपना अच्छे से करके उसका बिल्कुल अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल हो, ताकि हमारा जो बाहर के एरिया है वो ज्यादा गंदा ना हो। जो तो उसको जब हमारा ओडीएफ हुआ इसमें हमारा जो लद्दाख या कारगिल या लेह डिस्ट्रिक्ट, तो जब हम ओडीएफ हो गए उसके बाद इसका थोड़ा सा नाम चेंज हुआ है सर, उसको बोलते हैं हम आईटीसीएल इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन, क्योंकि आप यहां 2016-17 के जब आप ओडीएफ हुए हैं और उससे पहले जो आपके जितने हाउस होल्ड आप सालों को आपको इसका बेनिफिट मिला है, तो उसके बाद जो आज तक जो आज हम 2026 में हैं, आज भी जब भी वहां किसी गांव के अंदर किसी पंचायत के अंदर दो भाई या तीन भाई जब अलग हो जाते हैं उनके लिए भी हम अपना रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कोशिश करता है कि उनको भी टॉयलेट बना के देता है। तो ये स्कीम चलता रहा जो, तो अभी उस ये इसका आईटीसीएल के बेनिफिट लोगों को अभी भी हम दे रहे हैं, लेकिन 2020 में SBM फेज सेकेंड आया जो, उसके बाद SBM फेज सेकेंड आया, तो SBM फेज सेकेंड नाम यही रहा जो SBM यानी स्वच्छ भारत मिशन फेज सेकेंड। तो फेज सेकेंड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमें डायरेक्शंस मिला कि चलो भाई आप लोगों ने लोगों को पखाने के लिए आपने अपना टॉयलेट बना सहूलियत दे दिया, बाहर के टूरिज्म या जो बाहर रहते हैं उनके लिए आपने कम्युनिटी सेंट्रिक कॉम्प्लेक्स बनाए। तो अब उसके बाद 2020 में जो है इसका फेज सेकेंड शुरू हुआ, तो फेज सेकेंड में हमने एक कोशिश की, जैसे हमने हर हाउस होल्ड को स्वच्छ भारत मिशन के अंदर अपने घर टॉयलेट बनाने के लिए हमने उनको इंसेंटिव दे दिया, वैसे ही हमने फेज सेकेंड के अंदर हमने कोशिश की हर घर को हमने सौर पिट बनवाई। हमने कन्वर्जन रखा एमजी नरेगा के साथ, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक जो स्कीम है जो पिछले 20 साल से चल रहा था, अब जो हाँ वीबीजी रामजी जो अप हुआ है, तो उसके साथ कन्वर्जेंस करके हमने हर हाउस होल्ड को सेमली हर हाउस होल्ड को हमने एक सौर पिट बनाया, जिससे हमारे घरों के अंदर जो आपका वॉशिंग मशीन का पानी है, आपके कपड़े धोने का पानी है, आपके बर्तन धोने का पानी है, जहां से आपका ब्लैक वाटर पैदा होता है, तो उस ब्लैक वाटर को उससे पहले क्या होता था कि कहीं नाली होती थी, नाली से गुजरकर वो आगे पीछे निकल जाता था, लेकिन जब से हमने सॉप पिट बनवाए तब से आपका ब्लैक वाटर जो है ये वॉशिंग मशीन का हो, आपका बर्तन धोने का हो, कपड़े धोने का हो, तो वो सारा पानी के लिए हमने सॉप पिट बनवाए, ताकि हर हाउस होल्ड का जो ब्लैक वाटर निकलता है जिससे वहां पे आपके मच्छर जमा हो जाते हैं, जिससे आपके बच्चों के लिए डायरिया का खतरा रह जाता है या हाइजीन का खतरा रहता है, तो उसके लिए रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने क्या किया कि हर हाउस होल्ड को SBM फेज सेकंड के अंदर जो है हमने सॉक पिट बनाए, ताकि जो ब्लैक वाटर है जो गंदा पानी है वो बाहर आंगन में या रोड में या किसी ग्राउंड में न फेंके लोग, बल्कि वो सीधा उस सॉक पिट में चले जाए, जिससे उस घर का आंगन साफ रहेगा, फिर दूसरे घर का दूसरा आंगन साफ रहेगा, तो उस तरह से पूरा गांव का जो माहौल है वो साफ रहे।
0: तो हर साहब इसमें एक चीज अभी वेस्ट मैनेजमेंट का भी आता है, जो जितना हम वेस्ट घर से निकलते हैं उसको भी मैनेज प्रॉपरली स्वच्छ भारत अभियान में एक इनिशिएटिव है कि उस वेस्ट को मैनेज करें, और खासकर पर्टिकुलरली लद्दाख जैसे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सेंसिटिव और टूरिस्ट डेस्टिनेशन में क्या लगता है जो कारगिल रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन और उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या वेस्ट सेग्रीगेशन क्लीनलीनेस और साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ वेस्ट उसके लिए क्या इनिशिएटिव
1: रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक हदफ रहा है, जो कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी स्कीम्स है हमारी कोशिश रहती कि हर फर्द के लिए वो स्कीम पहुंचे, हर घर के लिए पहुंचे, ये नहीं कि दो चार

0: रिश्तेदार या दोस्त या दोस्त यार को ही नहीं, हर फर्द को, हर फर्द जो हमारा इंडिविजुअल स्कीम होता है हम इंडिविजुअल हर फर्द तक पहुंचाते हैं। हाउस होल्ड में जो कोई स्कीम होती है तो वह हम हाउस होल्ड तक पहुंचाए। तो हमेशा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जितना हो सके डिपार्टमेंट के जो नेशनल स्कीम्स हैं उनको लोगों तक पहुंचाया है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि हमने स्वाग पिट बनवाए 2021 में, स्टार्ट हमने वहां से किया है 2021 में। यहां पे आप तिछिमिक से थोड़ा आगे जाएंगे, रिंगमोस्पांग कहा जाता है उस लोकेशन को, वहां पे हमने 40x30 का एक बड़ा हमने एक हॉल या जिसको हम सिग्रीगेशन शेड कहते हैं, उस शेड को हमने वहां पे 2021 में कंस्ट्रक्शन किया। और 2022 में हमने हमारा जो अभी आप कह रहे थे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आप लोगों के पास क्या प्रोसीजर है, कैसे उसको मैनेज करना है, तो वो शुरुआत हमने 1 जून 2022 को ये जो वेस्ट प्रोसेस है हमने यहां हमारे मुस्मान से हमने शुरू किया। तो पहले जब हमने स्टार्ट किया उसके लिए हमने हमारे मिंजी और शिलिक्से को हमने प्रेफर किया क्योंकि ये थोड़ा नजदीक थे। तब तक हमें भी समझ नहीं थी कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है, इसमें करना क्या है, तो सारा वेस्ट जमा करके उसका क्या करना है, क्या जलाना है, फेंकना है वगैरह। तो उसके बाद जब हमने ये काम 2022 में हमने जब स्टार्ट किया तो पहले हमें बहुत सारे चैलेंज हमें ज्यादा फेस करना पड़ा क्योंकि हमारे पास गाड़ी ही नहीं थी। हमने हमारे एमसी डिपार्टमेंट से हमने एक टिपर जो है वो हायर किया था, तो वो टिपर हमारा वीकली कभी शिल्क से जाता था कभी मिंजी जाता था। उसके बाद जो हम जैसे मैंने आपको कहा सेग्रीगेशन एक प्लांट है, तो वहां पे हमारे उसी टाइम जब हमने शुरुआत की उस वक्त हमारे पास वहां पे बेलिंग मशीन, शेडिंग मशीन या इंसिनेटर्स जैसी मशीनें हमारे पास वहां उस टाइम अवेलेबल नहीं थी। तो एक दो महीने के बाद चलाने के बाद हमारे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने वहां पे बेलिंग मशीन जो है वो इंस्टॉल किया, दूसरा हमारा इंसिनेटर एक मशीन होती वो वहां पे इंस्टॉल करके वहां पे काम शुरू किया। तो उसी तरह स्क्रैप के लिए जो छोटे छोटे कचरा जो उसको उस मशीन में जब डालते हैं उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं, तो वो मशीन उसको हमने शेडिंग मशीन बोलते हैं उसको, तो वो हमने वहां पे इंस्टॉल किया। फिर हमें लगा कि अब हमारे जो सेग्रीगेशन प्लांट है कि एक प्लांट जैसा लग रहा है, तो वहां से हमने शुरुआत की जो 2022 में, और आज हम आपके साथ बात कर रहे हैं 2026 में। तो आज हमारे पूरे 15 ब्लॉक्स यानी 98 पंचायत और 125 विलेज पूरे हाउस होल्ड को हमने कवर किया है। वीकली हर गांव में हमारी गाड़ी जाती है। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास आज की डेट में 33 व्हीकल्स हैं, गार्बेज व्हीकल्स है, और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के आज की डेट में 16 जो है हमारे पास सेग्रीगेशन प्लांट है। तो हर प्लांट में हमने बेलिंग मशीन, शेडिंग मशीन, इंसिनेटर वगैरह कुछ जगहों में है, कुछ जगहों में कुछ मशीन एक दो अवेलेबल नहीं है। कुल मिला के जो हमारे 15 ब्लॉक है, तो हमने 15 ब्लॉक में हर एक ब्लॉक में हमने सेग्रीगेशन प्लांट खोले हैं। वहां पे हमारे सेग्रीगेशन प्लांट में 8 से 10 या 11 लेबर्स वहां हमारे इंगेज हुए हैं, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है। तकरीबन मैं आपको इस प्रोग्राम की वसादत में ये भी बताता चलूं कि जितने हमारे 15 ब्लॉक से उसके अंदर तकरीबन 92 शायद या एक दो कम तो 92 लेबर्स आज हमारे रूरल डेवलपमेंट इसी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में इंगेज है। तो 92 को उनको अपना
1: तो इससे रेवेन्यू भी आता है, जो
0: इससे रेवेन्यू भी आता है सर, क्योंकि जितने हमने हाउस होल्ड कवर किए हैं उन हाउस होल्ड से हमने 50 रुपीज जो हमने इनके लिए यूजर फी रखा है जिस मंथली जिस हाउस जैसे मैंने आपको कहा वीकली हमारी गाड़ी जाती है, जिस गांव में हमारी गाड़ी जाती है उनसे हम 50 रुपीज जो है वो यूजर फी लेते हैं मंथली, और प्लस जितने हाउस होल्ड हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल के अंदर हैं उन सबको हमने फ्री आपका डस्टबिन दिया हुआ है जो 40 लीटर 50 लीटर के तकरीबन। तो सारे हाउस होल्ड को हम कवर कर चुके हैं डिस्ट्रिक्ट कारगिल के अंदर, और सारे हाउस होल्ड को हमने फ्री आपका डस्टबिन दे चुके हैं। और जितने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से हो सके जो 2018 से 2023 तक जिस उस टाइम हमारे पास PRI थे, हमारे सरपंच पंच थे जो अभी खत्म हो चुके हैं उनका 5 साल का ट्यूनर, तो उस टाइम पे हमने हर विलेज में पंचायत लेवल हो, स्कूल लेवल हो या अदर हमारे जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनको लेके हमने हर घर को अवेयरनेस हमने दिया है। और साल में एक दो बार हाल ही में आपने देखा होगा कि 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा नाम का एक कैंपेन हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें डायरेक्शन मिला था रूरल डेवलपमेंट को, बराबर जो हम स्कूली बच्चों को लेके या वहां के लाइन डिपार्टमेंट्स को लेके या हम खुद डिपार्टमेंट जाके वहां पे ग्राम सभा बुलाता है, वहां पे लोगों को बराबर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट انوائرمنٹ کے بارے میں برابر اویئرنیس دیتا ہے کہ آپ جب بھی اپنا ڈسٹبین جو ہم نے ان کو فری آپ کا آج دیا ہے اس میں آپ کا جو سالڈ ویسٹ ہے اس کو کیسے وہاں پہ رکھنا ہے اور لکوڈ ویسٹ کو آپ کو کیا کرنا ہے تو

0: लिक्विड वेस्ट के बारे में भी, क्योंकि ये फेस सेकेंड के अंदर ये भी आ जाते हैं, मैं थोड़ा बीच में भूल गया। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमने जब अपने हाउस होल्ड्स के अंदर जब हमने सर्वे किया कि हमारे गांव में ड्राई वेस्ट ही आता है या लिक्विड भी आ जाता है, तो जब हमारा सर्वे हुआ, जब हमारा गार्बेज व्हीकल गांव के लिए निकला, तो हमारे वहां से लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट बिल्कुल निकलता नहीं, क्योंकि हम रूरल्स के लोग हैं। हमारे गांव के घर के अंदर गाय होती है, बकरी होते हैं, घोड़े होते हैं, गधे, तो वो सारा जो आपका किचन रिफ्यूज जो भी निकलता है, जिसमें आपका चावल हो, सब्जी हो, जितना इस्तेमाल, तो वो सारा हमारा जो लोकल खुचू है उसकी सूरत में वो जो है सारा जानवरों को जाता है। तो हमें यहाँ पे एक चीज है कि हमें लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ हमें छेड़ना नहीं होता है, हमें सिर्फ जो है यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, जितना भी लोगों के घर में जनरेट होता है, तो उस वेस्ट को हमारा गाड़ी लेके हमारा सेग्रीगेशन प्लांट में लेके आता है, वहां पे हमारे ऑलरेडी लेबर इंगेज है, वो उसको बराबर साइंटिफिकली उसको सेग्रीगेट किया जाता है। उसके बाद जो मैंने पहले कहा आप जैसे आपको कि बेलिंग मशीन वहां पे लगे हैं, तो वो उस बेलिंग मशीन में डालकर उसको बराबर पैकिंग किया जाता है। पैकिंग करने के बाद हमारा एक वेंडर है, तो हम उस वेंडर तक वो जितना भी वहां पे ये सेग्रीगेट करके या बेलिंग करके तैयार माल है, तो उसको हम टनों के हिसाब से हम उनको अपने वेंडर्स के लिए भेज देते हैं।
1: तो साहब, स्वच्छ भारत अभियान का मेन मोटिव है
0: बिहेवियर चेंज। बिल्कुल,
1: आपने कहा कि हमने मतलब डस्टबिन भी घर घर में दिया है, टॉयलेट भी आपने बनाया है, आप अवेयरनेस भी करते हो, क्या चेंजेस नजर आता है आजकल? आज 2014 से आज 2026 तक
0: जी,
1: क्या चेंजेस आपको लगता है?
0: 2022 के बाद, क्योंकि हमने जो सॉलिड वेस्ट है उसको हमने 2022 के बाद स्टार्टअप किया है, 2022 से अब 2000 जो हम 26 में जा रहे हैं, तो इसमें तब और आज की डेट में बहुत सारा अंतर, जो क्योंकि हमने पहले ही फील्ड में हम काम कर चुके हैं, उस वक्त लोग बिल्कुल महसूस ही नहीं करती है कि वहां पर अगर कोई बिस्किट खाए या ठंडा पानी पिए या प्लेन वाटर पिए, तो हमारे बच्चों में हो या बड़े लोगों में, बच्चों की बात ही नहीं, बड़े लोगों में बिहेवियर इतना था कि जहां है वहीं फेंको, उनको बिल्कुल दिमाग में या सेंस ये नहीं था यार इस वजह से हमारा जो एटमोसफेयर है यहाँ या हमारा इन्वायरमेंट है या हमारी गली ही ले, चलो आप इन्वायरमेंट के लिए ना सोचे, आप अपने भी है इसके लिए ना सोचे, गांव के लिए ना सोचे, कम से कम आपका जो जहां आप बैठा हुआ है वहीं उसी एरिया को तो कम से कम आप ख्याल में रखें कि ये गंदा हो जाएगा। तो तब से 22 से अभी तक लोगों का बहुत बिहेवियर चेंज हुआ है। इसी फर्स्ट वीक में आपने देखा होगा स्वच्छता ही सेवा में हमने एक प्रोग्राम चलाया, तो इधर उधर जो थोड़ा बहुत कचरा था उसको हम कहेंगे थोड़ा बहुत जो बच्चों ने फेंका होगा या हवा ने इधर उधर किया होगा, लेकिन लोगों का बिहेवियर बहुत चेंज है, क्योंकि वीकली जो मैंने आपको कहा कि हमारा गार्बेज का लोगों को डोर टू डोर कलेक्शन के लिए जाती है, तो बाय गलती से हमारा ड्राइवर बीमार या कभी गाड़ी खराब होती है, लोग फेंकते नहीं, तो ये इससे साफ पता चलता है कि लोगों का बिहेवियर कितना चेंज हुआ। फेंकते एक तो लोगों में फेंकते नहीं है कि गाड़ी नहीं है, नहीं भाई आप गाड़ी तो आई नहीं, आई इसको जलाओ या इसको फेंको, ये चीज लोगों में बहुत चेंजिंग हुई है। और दूसरा चीज, अगर आपका एक डस्टबिन भर जाता है, जो आपके पास 30-40-50 लीटर के जो डस्टबिन है, अगर वो भर जाता है फिर भी लोग नहीं फेंकते, वो अपने घर में एक बोरी इस्तेमाल करते हैं, अगर वहां से भर गए तो उस जो बाकी का जो रहा कचरा है एक एक्स्ट्रा, वो अपने बोरी में डालकर रखते हैं, और वीकली जो उसके डोर में जब हमारी गार्बेज व्हीकल वहां पहुंचती है, तो उसमें डाल के हमारा सेग्रीगेशन सेंटर लाया जाता है।
1: तो साहब, इसमें एक चीज है कि हम आपको बताए कारगिल एक ज्योग्राफिकल और क्लाइमेटिक चेंज चैलेंज कितना है कारगिल, तो एक हाई एल्टीट्यूड टेरेन है, अगर हम हैबिटेट देखें तो बिल्कुल स्कैटर्ड है, एक दूसरे से 30-35 किलोमीटर की दूरी पे है जो भी हमारे विलेजेस है, सर्दी हमारा बहुत टफ है जो बिल्कुल, हाँ, और ट्रांसपोर्टेशन का भी आपको पता है क्या हालात है हमारे यहाँ पे, बड़ी मुश्किल से हमें दूर दराज होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रॉब्लम हमेशा रहता है जो, क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है इस चीज को कामयाब करने के लिए, खासकर सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए?
0: जी जी जी एनआईएस साहब, इसमें जैसे आपने विंटर हर्ष की बात की, तो विंटर के लिए हमारे पास जब ज्यादा बर्फबारी होती है तो हमारा गाड़ी जा नहीं सकता है, अगर हल्की बर्फबारी है, हल्का बर्फ है, रोड क्लियर है, तब जाके हमारा गार्बेज जो है वहां डोर टू डोर कलेक्शन होके आ जाता है। लेकिन मैंने पहले बताया, यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि लोगों को इतना अवेयर और इतना अवेयरनेस और इतने अच्छे लोगों की हालत बदल चुकी है कि 2020 टू अब के, कि लोग अगर सर्दियों में, खासकर मैं बात करूंगा सर्दियों में, अगर गाड़ी अगर एक महीने के लिए भी नहीं आती है तब भी लोग उसको जमा करके रखता है, और सर्दियों में एक बेनिफिट लोगों के लिए रहता है कि अगर आप कोई गार्बेज को किसी बोरी में या डस्टबिन में ही रखेंगे, उसका जो बदबूदार जो होता है जो

0: हमारे समर में होता है, वो चीज विंटर में नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग उसको बाहर लाके या किसी ग्राउंड में या रोड में या किसी गली में नहीं फेंकते हैं, बराबर उसको किसी जगह में उसको ये रखते हैं। जिस दिन रोड साफ हो गई या वहां से कल आना शुरू हो गया, अपनी गाड़ी तक लाके उसको गाड़ी में डाल देते हैं।
1: इसका मतलब जो एक मिशन था, जो एक जन आंदोलन हम जो कहें, जो हमारा मिशन था, प्राइम मिनिस्टर का जो मिशन था स्वच्छ भारत अभियान करके, वो कामयाब हुआ है।
0: अगर मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% हमने अचीवमेंट लिया है या 100% हमका रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कामयाब हुआ है, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। सिर्फ मैं आपको इतना कह सकता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास 15 सेग्रीगेशन शहर से, जैसे मैंने आपको बताया, वहां से हम 10 से 12 टन टोटल, मैं वही कह रहा हूं कि ये जो कारगिल ब्लॉक का जो सेग्रीगेशन शर्ट है जिसमें 12 पंचायत है,
1: 10 से 12 टन
0: सीजनल में हम इसको वहां पे लाके उसको प्रॉपरली सेग्रीगेट करके, उसको प्रॉपरली बेलिंग उसको पैकिंग करके, हम पूरे सीजन में जो है एक साल की अगर मैं बात करूंगा, 10 से 12 टन जो है वो हम अपने वेंडर को देते हैं।
1: वेस्ट
0: जितना भी हम जो घरों लोग जो वेस्ट जनरेट होता है घरों में, उस वेस्ट को ला के यहाँ सेग्रीगेशन प्लांट में ला के उसको हम प्रॉपरली उसको सेग्रीगेट करके बेलिंग करके उसको हम अपने वेंडर को देते हैं। तो इससे आप बखूबी आप इससे पता लगा सकते हैं कि अगर लोग फेंकते इधर उधर गाड़ी में नहीं डालते तो इतना वेस्ट जनरेट आपको नहीं होता। और साल में हर सेग्रीगेशन की बात अगर हम 10 से 12 टन रखेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि लोग कितने अवेयर है और हमारा जो गार्बेज व्हीकल है उसका प्रॉपर उस लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
1: तो साहब बहुत अच्छी बातें आपने कही कि जो स्वच्छ भारत मिशन है वो कितना कामयाब हुआ है कारगिल में खासकर। उम्मीद करते हैं कि लोगों ने आपकी इन बातों को सुन के फर्दर सफाई एक कम्युनिटी या एक एडमिनिस्ट्रेशन का या डिपार्टमेंट का सोल रिस्पांसिबिलिटी नहीं है,
0: नहीं,
1: हम सब का इक्वल रिस्पांसिबिलिटी है, हम सब बराबर के शरीक हैं साफ सुथरा माहौल रखने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि पब्लिक आगे आके फर्दर और अच्छा इस चीज को कामयाब करे, इस मिशन को कामयाब करे और अपने रोजमर्रा की जिंदगी में सफाई और साफ सुथरा एक माहौल रखने का जो अज़्म है वो अपने जिंदगी में इम्बाइब करे, कामयाब करे अपने आप को इस चीज को इम्प्लीमेंट करने में, हाँ, माहौल में इस्तेमाल करने में, या खुद भी साफ सफाई को अच्छे से प्रैक्टिकली इसको अमल में लाएं और दूसरों को भी इसके लिए मोटिवेट करें। तो हाँ साहब, आपने बहुत अच्छी तरह से स्वच्छ भारत मिशन जो कारगिल में आज तक काम हुआ है उसके बारे में हमारे लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाया, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह कल हम और एक स्कीम के बारे में और एक ऑफिसर से आप लोगों तक गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुंचाएंगे। तब तक हमें इजाजत दें, खुदा हाफिज़।

خجالا التجا ان رہے

रुकसन चिक यो त इन्जर हे सर सत भारतीय कंपनी ने सेक्रेटरी ने इंस्टीट्यूट आईसीएसआई को इसको लजर नायब सदर जमहूरियस गस्ती त्यानुर गला कॉर्पोरेट इंतजामी इसके त्यानु इंस्टीट्यूट की खासन गुंबा निस्तो द्रंग बस हफ्ता चिक मलिंग खोन ची उत्खन वाइल्ड लाइफ हफ्ता नजम से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन महकमा करगिर सगई प्रोग्राम ची गवर्नमेंट हाई स्कूल चौकी अल्द्रास लग रल सिरबस दिवस ला महकमा वाइल्ड लाइफ ना जंगलाते खसपा ने स्कूल इफ्रून एक्सपोजर टूर के खेरे फ्रून ला नमजना बिल सों सुनी खागस को लजर इन दियुन लस्ट्रोन लुक्स नाचस पुचाम सिक्सा सा देश को लह गोंतास देवर फ्रून टूर वसला फील्ड ऑब्जर्वेशन पेकर मलिंग खोसन क्विज कंपटीशन बना यंबो प्रोग्राम पु थमाथुन या महकमा नमज स्ट्रोनुक सिमीन फेसे सासम सानी मलसाउन यानु शर्बना चो उनस्ट्रा से दिजाती प्रोग्राम मलिंग खो में इर्तिया हमा बसेन चीफ सेक्रेटरी यूनियन टेरिटरी लद्दाख आशीष कुंद्रास पदों में टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर ला जिले ऑफिसर उन्हें ग्रफ्सिंग मलिंख्यों से यरिया सिला सुना संस्कार लोसोसमा अनिल तालुक्स बस दिवस का ग्रफ्स में डिप्टी कमिश्नर संस्कार ओमकार राजेंद्र एसपी संस्कार रिगजिन संडूब एसडीएम जासिफ अमीन दोनों लोसो महकमा ने सीनियर ऑफिसर उन्हें जुक से उत्पिन देवर चीफ सेक्रेटरी ग्रफ्स दिवस का लोसोसमा अनिल तालुक्स बस गवे अन्नाथोर लेन रेगुलराइजेशन सकोली गुर्जे नोटिफिकेशन पश्मीना प्रोडक्शन पर इसके बागबानी नरियाला स्तंथोक हिम सरोवर श्री यूरबान दोनों कोऑपरेटिव में फ्यूसपुर लक्ष्य फिर उसको चांसोस माउंट जैसे ही उत्पन्न कौन सा मालदुक से मिमास उन लक्ष्य वक्त से तो बरगो सुगजरें चैंपियंस ऑफ चेंज इनिशिएटिव नाजों से गमयुल रेरे ने रेरे ने खुद नशे जो खन शर बना चुने हुकूमत इसी की मुनिस्कोल लहा गुंतां से दियो निकना फन के लेन मिमिना शांस्कूल बजरे जर बसों खुरीजिक्स फॉर वासला आशीष कुंद्रास आईसीडीएस जेजेएम पीडब्ल्यूडी लस मदलुक्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो करेरे नालजोंस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ना पीडीडी नालजोंस ग्रिटी थुल्लुक्स इला सुन सगयां तालुक्स बस निर्गम ने टीआरसी पदम लोकल इदारा ना मीमा सुन नुमाइंदा सग ने बोग्राफ छि गामा लेंखों से लोसोस मान सग स्कोर ला मीमा सुन कनयन मसों गामे एरिया सिला सुन निमी ना पेने हिम सरोवर पे नालजोंस शूज किल बिस्टोलन समा माली यूलन सोचान लमी थुल्लुक्स सुन लोना के मीना लोसो काउंसलर इमल से सिक्किम्स न लद्दाख सी लस्खा पॉन्सपो से खेचान एआरटीओ ऑफिस जिक्सोचान दोनों सिरियास न टैक्सी ऑपरेटर रंश मानसा से युद्ध में गवे के चीफ सेक्रेटरी सोपाला दिशमान सा सिर सिर का फलते बेमीना गोंबान ले नजर रहती है मबस खोजान संस्कार है एरिया से लसुन जवाब से नालतों घर के बसे थमाथन चुपी मीना छोसी लखथु ते खक पे गंग अंगत्ता सिन यूटी लद्दाख से शीफ हस्बेंड्री डायरेक्टर डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन इस दिन बारू अद्रास ने करगिल शीफ हस्बेंड्री महकमे तल्लुक सिग्राफ सिग मलिंग खोस दिवस ला डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स एसडीपी दोने महकमे प्रोग्राम ने स्कोर लस पेरा अंतांस गवायनो महकमे खकुर ने डायरेक्टर ला महकमे शोसना लेंस खान लोसो एरिया से लस स्कोर लस बसों दिवस ला डायरेक्टर इस मुतालिक खकुर ला इजिन थपखान डीपीआर से हिसाब के एरिया से डुलिन चीगो खान लस ने खास को ने नालजोंस वक्त सिनाजों गार्ग बसे थमाथन चुक जरे खास गुन तासिन ध्यान चोसला करगिल नदरा से महकमा ने फारावन फील्ड एस्टेब्लिशमेंट उन दोनों लाइफ स्टॉक ने थुते खन लजुन इसको ला हगुन लेनचिक ऑफिसर ने सेटअप उन लखथुत बस लज बुजरे जर बसों गाउस बसे सखियत गित खन ला नोर बसे फन खन सख लेप चुक पा निहन चशो लद्दाख से स्वच्छ भारत मिशन पर थनपो जक्सर स्थानक लुंग पेंग नुक लेगी ना जिंगजा ने बोल लसुन बेंची की होते आर एन यू आकाशवाणी करगिल इग्रल सिरे कमल एंखन जन सेवा से देश सेवे नाजो फेसपा पॉडकास्ट श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर एसबीएम रूरल मोहम्मद तोहज करगिल सनालोस तुंगिस ना चुपगत अनुक ओडीएफ यानी फिस्ताज गुआ छचस पे कना गार के वासे शख्स ती छोड़ तांस में जरें जिला गांव पुदरा इन नसान सांदा पुस्तन पर जख मीने फ्रलु सुन डुलें जी घ्यू तें जरे अजर बसन खोजा स्वच्छ भारत मिशन इंग्लिश रसे सिरपुर जिले नु मल एंखन से जिले बुलाक चोगा नु शख्स को नुजदुम मलसा नोस्टो से मलसा रेरे न रेरे का रेरे मीनर गया दिकना स्टू सुपाल अस्खान थप से होते इंजर है जरीन ज्ञान चौसल मीमासुनर सांदा के लक्ष्य फन गिरजान मीमासुनर थोचा बसे यों से इंजरेन अर्गुनर यलम पुने ए लम उन सक गाड़ियों ने छायों को फिलस गास दुशाज बसेर सरसो उन दुम मीमीना गाड़ियों सक सरसो के मलसे के मिलहिप चाज बसेर कबलस भर दुन थों मजरे सर बसों खोजियां सोसो बिंखन नापाउन लंग एसबीएम पे नालजों शख्सा नर्सिक पिमीना फ्रालुक सुन सगाम बेंच यो तेंजरेन जिर कबलास भरदो च नमजे नालजों से लगा पुल शगमा जक पिमीना महका मेस्तान दुक्स फ्रालुक सुन बेंच यो तेंजरे असर बसों वैलिडिट्री कम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चिक नानी सी बेशी ट्रेनिंग लेनखन मिंगा ईश्वर सख्सो में ट्रेनिंग पु गारिया छचा नजम से स्टॉक असिस्टेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट केम कुर्बथन करगी लम लेंखोस निवासादी प्रोग्राम में फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री महकमे डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल यूटी लद्दाख से चीफ हस्बेंड्री महकमे डायरेक्टर डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन इस खालन से बारे तकरीब नगरान चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर करगिल डॉक्टर वाला मोहम्मद इस ट्रेनिंग पियान लिन खान उल्ला लक्सेप्शन ट्रेनिंग पुताम मीना साथी इकेम करगिल लिखा उन इसको लजर बसों खोजान इंस्टीट्यूट पर सनालो सुनीज ने चुरगुला मनाई उस मंजर मिंगर गया नतुर्गत अक्सन सुपर ट्रेनिंग तांस इंजरे अजर से दिन में दर सकते पूरी खबर नाइजिन शहजबूस यजू खुदा नरसा मनी फ़रीम।

0: Burgen khabarin lengen chet pin. Medium waves na FM channel ni kadiu akashwani kargilin. Kasta program ni mazat deluxe hago.
1: Pasan ni disabilities bana mazur. Mazur angatis ngatis ka tan dachin de mazur. Gafru mazur nambos ke tan ha. Uden ruk chan chachin ki hoy physical, mental, intellectual, developmental, sensory impairment hachin matlab. Hoyenu kami gon chin din sa anuk. Jese ngatis physical iltana, mental iltana ha. Dun gamas khue matlab gafru yin nagato khue daily activities hain jese khue ga chuk la shiba nagato den effect hachin chuk khue silcha sanuk effect hachin chuk khue ga society la shanu in nagato khue effect hachin chuk ap ngatas mazur de ha mazur yana nga ske sana sa yon chen chuk ske sana sa chen chuk effect hachin chuk ya der gap na ske sir gap na ya effect on chen chuk khod kholda ner gap na khue effect pon chen chuk agar ngates disability ngates agar type khashi ki zarna ka to sabse pehla physical disability hon chin chok physical disability se bana ngate jese ko movement pe khoe harkat an thon chin chok khoe mazur pu khoe harkat pe thon chin chok khoe physical las was khaje ko las bana ka to udhi chi se na thon chin chok ya ngates agar ngates science time ngates zarna ka to ki the example khachi chin chu zarna ka to jese cerebral palsy zarchin den khoe disability thon chin muscular dystrophy zare limb differences zare जैसे क्रोनिक हेल्थ कंडीशन जैसे खच गई हो ना एपिलेप्सी एंड उदयन डुल बांगे चमेन हरकत मूवमेंट एंड खुए थोंचिन दी डिसेबिलिटी है चिन जो दूसरा अगर नाते सेंसरीज है चिन हाँ सेंसरी है चीज है बना खच का छोटा इफेक्ट पुखे छोटचास प्यांग थोंचास प्यांग या खुए सेंसरी प्रोग्रेस खुए दुन सानुंगे एंड चमेन सो से मां खुए इफेक्ट है चिन सो जैसे खास न्यान मां छोर बयानो ngate example ta na ka to ha kho chor cha me jo khachi fru khachi ko mat de chor me chor bat you want disability chik chin khachi ko chin blindness ma thon cha men ha khachi ko chin sensory disorder khachi ma cha chis po bang en cha men cha chin dun pata ha cha men cha na ka to deun nga ma chin jo sensory disability sa agar ngate third po third point chin intellectual disability anu then ya khachi ga yon chin de problem solve bang en cha men ma jese calculation ba un cha men jese khoi मतलब मेन पुखो कन्फ्यूजन एलुशन में हरकत बाई एंचे में जिस तरह एग्जाम्पल बताना का तो डॉन सिंड्रोम फ्रेजल एक्स सिंड्रोम दिन गामा दी एग्जाम्पल है उनचिन जो चौथा उनचिन डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज रिन डेवलपमेंटल उ अरंग आती इफेक्ट ग्रोथ ना डेवलपमेंट ना इफेक्ट है चिन जो फ्रून जैसे खाची सुनते होंगे छो होंगे खाची की मतलब शॉर्ट होते मतलब हाइट है छाचीन जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स आनो या गाव सोशल लाशी नका तो खा पाए चे मैं सोक दून अनु इफेक्ट हो चिन सोक जैसे आते यदि एग्जाम्पल ताना का तो ऑटिज्म जर ऑटिज्म है उचिन दिन आता है हुई तो चीन लर्निंग डिसेबिलिटीज जैसे खुद डिस कैलकुलेशन दे जैसे कैलकुलेशन बामा बिल्कुल होने चाहिए मैथ समझा शी कमजोर हो मतों सोचें जैसे कोई स्पीच स्पेरान तो खाची हो में ना कंट्रीज इन स्पेरान में दे ओ जैसे लैंग्वेज खाची के मस स्पेरा खोरा होने चाहिए मतलब हर इशारे का स्पेरा तान चीन दी डिसऑर्डर नो चीन सो को अगर डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी अंक तो छाना अगर आते हैं पंचवास जन का तो साइकोलॉजिकल आउं चिन साइकोलॉजिकल या आते हैं इमोशनल डिसेबिलिटीज रहते हैं दिमागी तोरी जैसे दिमागी तोरी हम ज्यादा इफेक्ट पहुंचे तो कोई बिहेवियर का खर्ची को उनका चुप चाहते ना दुख था
2: सुनम्बोस पर
1: आता हूँ दून एबिलिटी आउं चिन मैं कि खोज खुई दिमाग है ना खुई देना इफेक्ट चियोत पना खुआ स्पेरा ताऊ मामी इनमें खुई बिहेवियर है ना जैसे आते समय दे दिप्रो मन अजीब चीज़ों को यूज़ मास स्पेरा ताऊ मामी नोक जरूरत है उतन खुई खुई वजह का चाह हूँ जमें खुई दिमाग है दिमाग पु कमजोर होत पना दिमाग पे नोक खुई एबिलिटी होत पना एबनॉर्मेलिटी शियोत पना दी इफेक्ट पसंद सिंह जैसे बिहेवियर जर इमोशनल खचिक मना मन एकदम इमोशनल हो चीन हाँ खचिक मेंटल हेल्थ का हो चीन हरकत तुम बचिन देखो अलग अलग हरकत बचिन छा तुम मतलब कोई दिमाग की कमजोरी की वजह का खोलदान जना कोई कमजोरी की वजह का भी सुन सिन हाँ जैसे खाची हो मदे जो एंजाइटी एंजाइटी डिसऑर्डर को एग्जांपल इन जैसे खाची एकदम एंजाइटी छे दो आज से कोई दिमाग का इफेक्ट होत पना सोसिन जैसे खाची डिप्रेशन ज्यादा लुसे मतलब नाते छोड़ो दरे से दुनिया नु होत जैसे साख कंपटीशन होत दे नयो हर चीज होत डिप्रेशन होत पर जो है अगर साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी आ दाना खाची की अलग हो चिन में डिप्रेशन आना ऑलरेडी हो चिन खुद अच्छा मेद ना का तो खुद दिमाग दन सना से खुद इफेक्ट पे वजह का डिप्रेशन आ चिन दुना खुए बिहेवियरल डिसऑर्डर आउचिन हा जैसे मल्टीपल डिसेबिलिटी आउचिन लास्ट पे कहा जन्ना देख दे आउचिन जैसे एक एबिलिटी हो ऑलरेडी डिसेबिलिटी हो दूसरा या एक आउचिन मतलब एक एक से ज्यादा मोर देन वन आउचिन में डिसेबिलिटी अगर नतेस दी का सुन जाने का तो नतेस जस्ट कहीं नतेस

0: हैं, वाटर बॉटल्स, शॉपिंग बैग्स, फूड पैकेजिंग, डिस्पोजेबल कप्स, स्ट्रॉस, कंटेनर्स और बहुत सारे चीज़ें प्लास्टिक की होती है। प्लास्टिक ने हमारी लाइफ को कन्वीनियंट ज़रूर बनाया है, लेकिन इसका एक्सेसिव यूज़ हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी है। प्लास्टिक पोल्यूशन क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन क्या होता है। जब प्लास्टिक वेस्ट हमारे इन्वायरमेंट में प्रॉपरली डिस्पोज या रिसाइकल नहीं होता और लैंड, रिवर्स, ओशंस और सराउंडिंग में एक्यूमुलेट होने लगते हैं, तो इसे प्लास्टिक पोल्यूशन कहते हैं। प्लास्टिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसका लार्ज अमाउंट इजीली डिकम्पोज नहीं होता, इसलिए जो प्लास्टिक हम आज थ्रो करते हैं वो एनवायरमेंट में बहुत लॉन्ग टर्म तक रह सकती है। प्लास्टिक इतना पॉपुलर क्यों है? प्लास्टिक लाइट वेट है, चीप है, स्ट्रॉन्ग है और वाटरप्रूफ भी होता है। इसी वजह से इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर्स दोनों इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हम सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज करके इमीडिएटली थ्रो कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक प्लास्टिक बॉटल या प्लास्टिक बैग्स कुछ मिनट के लिए यूज करते हैं, लेकिन उसका वेस्ट एनवायरमेंट में बहुत लॉन्ग टर्म तक रह सकती है। यानी यूज हम शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, लेकिन इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म होता है। प्लास्टिक पोल्यूशन का मेजर कॉजेस, प्लास्टिक पोल्यूशन की कई कॉजेस है। फर्स्ट, सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक बैग्स, कप्स, स्ट्रॉस, वेपर्स और डिस्पोजेबल आइटम्स को एक बार यूज करके थ्रू कर दिया जाता है। सेकंड, इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, अगर गार्बेज को प्रॉपरली कलेक्ट, सेपरेट और रिसाइकल नहीं किया जाए तो प्लास्टिक रोड्स, ड्रेन्स, रिवर्स और ओपन एरियाज में पहुंच जाता है। थर्ड, लैक ऑफ अवेयरनेस, कई लोग प्लास्टिक को कैजुअली रोड पर या पब्लिक प्लेस में थ्रो कर देता है। समझना होगा कि डस्टबिन में वेस्ट डालना एक स्मॉल एक्शन है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लास्टिक पोल्यूशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पर होता है। प्लास्टिक रिवर्स और ओशन में पहुंच सकते हैं, मेरीन एनिमल्स इसे फूड समझकर कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे उनकी हेल्थ और सर्वाइवल इफेक्ट हो सकता है। प्लास्टिक वेस्ट लैंड पर भी एक्यूमुलेट होता है और सॉइल क्वालिटी को इफेक्ट कर सकता है। प्लास्टिक से ब्लॉकेड ड्रेन भी एक मेजर प्रॉब्लम है। जब प्लास्टिक ड्रेन में कलेक्ट होता है तो वाटर फ्लो ब्लॉक हो सकता है और हैवी रेनफॉल के टाइम वाटर लॉगिंग का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए प्लास्टिक पोल्यूशन सिर्फ क्लीननेस का इश्यू नहीं है, ये इन्वायरमेंट, एनिमल्स और ह्यूमन सोसाइटी से कनेक्टेड इशू है। ह्यूमन हेल्थ पर इम्पैक्ट, प्लास्टिक पोल्यूशन इनडायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ को भी इफेक्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक वेस्ट के ब्रेकडाउन से माइक्रो प्लास्टिक यानी बहुत छोटे प्लास्टिक पार्टिकल्स इन्वायरमेंट में सेपरेट हो सकते हैं। ये वाटर, सॉइल और फूड चेन्स में इंटर कर सकते हैं। इसलिए प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करना सिर्फ नेचर को क्लीन रखने के लिए नहीं, बल्कि एक हेल्दियर इन्वायरमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। प्लास्टिक पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस करें? अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम प्लास्टिक पोल्यूशन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला स्टेप है रिड्यूस। जो प्लास्टिक प्रोड्यूस प्रोडक्ट जरूरी नहीं है उनका यूज कम करें। सेकंड, रीयूज, एक बार यूज करके थ्रू करने की बजाय रीयूजेबल बॉटल्स, बैग्स और कंटेनर्स का यूज करें। थर्ड, रिसाइकल, प्लास्टिक वेस्ट को प्रॉपरली सेग्रीगेट करें और रिसाइकलेबल प्लास्टिक को रिसाइकलिंग सिस्टम तक पहुंचाइए। फोर्थ, से नो टू अननेसेसरी सिंगल यूज प्लास्टिक, फॉर एग्जांपल शॉपिंग के लिए रीयूजेबल क्लॉथ बैग कैरी करना एक सिंपल हैबिट है। फाइनली मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लास्टिक खुद हर सिचुएशन में एनिमी नहीं है, प्रॉब्लम इसका एक्सेसिव और केयरलेस यूज है। हमें प्लास्टिक को कम्प्लीटली इग्नोर करने की बजाय रिस्पॉन्सिबल वे में यूज करना सीखना होगा। इन्वायरमेंट सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इट इज़ आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज हम जो हैबिट चूज करेंगे उनका इम्पैक्ट फ्यूचर जनरेशन पर पड़ेगा। सो लेट्स मेक ए सिंपल प्रॉमिस, प्लास्टिक को अननेसेसरी यूज नहीं करेंगे, वेस्ट को रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज करेंगे और अपनी इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में अपनी कंट्रीब्यूशन देंगे। बिकॉज स्मॉल चेंज इन आवर डेली हैबिट्स कैन क्रिएट ए बिग चेंज ऑफ फॉर आवर प्लेनेट। थैंक यू एवरीवन।
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिहाना है और मैं 36 कोर्स से हूँ। तो आज मैं एक سوشل میڈیا پہ ایک ان لیس دین 3 ڈیکیڈ سوشل میڈیا ہیز ٹرانسفارمڈ فرام ا نوول ڈیجیٹل ایکسپیریمنٹ ان ٹو دا سینٹرل انفراسٹرکچر آف ماڈرن ہیومن کمیونیکیشن ود اور 5 بلین پیپل ایکٹیولی یوزنگ پلیٹفارمس لائک میٹا یوٹیوب ٹک ٹاک اینڈ ایکس سوشل میڈیا از نو لانگر

0: سر پینے منگو سو سے پھیکو چچاؤ چا رزق منت بلکی ریالا اولاد ریالا اخلاق دون ریالا گکھن یو چونگ رزق سچائی امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام.
1: میڈیم ویس نے ایف ایم چینل کا دیا آکاشوانی کر کے نوسو خبر سوسو کستا آکاشوانی دلی گنا ہندی نہ انگریزی خبر لگے مزار.
2: نمسکار, آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں جیا بھارتی. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है. नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है.
3: There are countries who are emerging.
4: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं. भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है. वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं. इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ. दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की

0: एक समान इच्छा है दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है। नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि यह क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने में सहयोग देगी। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर आज गुंटूर जिले में एक परियोजना का शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 3 लाख मकान स्वीकृत किए हैं और चल रहे निर्माण कार्य के पूरा होने से पहले 3 लाख और मकान स्वीकृत करेगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार आगे के आवंटन पर विचार किया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि अब तक आयोजित पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतों में से 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। समाधान की सफलता दर 71.79% है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टनचावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से निर्देश दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आइची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों की मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4th स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: दी देखो
1: सालगिरह मुबारक।
0: देखे वाओ मेरा पसंदीदा कलर।
2: हमेशा शॉपिंग।
0: जानता हूँ माँ, पर खर्च करने की यही उम्र है राइट?
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
4: जानता हूँ पा, सेव करो, सही जगह इन्वेस्ट करो। रकम पर सूद मिलेगा, जिसे फिर से इन्वेस्ट करने पर सूद मिलता रहेगा।
0: मुझे मालूम है।
4: RBI कहता है
5: करो नई शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
7: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
6: बिना नंबर जांचे।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: Befilla, Quinangosla, she sold Nagatokos Kuri, this society, put a change was a Tangmanian chinpaya.
1: Donangatis focus Matlab Dubargushinki, pre her she sika. All round development is just seen Udikangatis in the Nabarushin. All round development is a banajising at physically, cognitive, ya language, emotional, social development, ya spiritual development, jessiking at the Jazbati, Samaji, Rohani, Dun Sakmatis, Priang at a young Margushasin show or you. ता फ्रुनिया यों मरकुशासिन मदे कना अगर मेत ना गतिस पेला खों ऑब्जर्व बचा खों ताचा दे कना गतिस खों रोक्स बचा दे कना मना दिन दा मेत ना मछा ना कतो गतिस खोई पेरेंट्स नंबो या गतिस खों पेरेंट्स नंबो गतिस स्पेरा तामी कोशिश बचा जुदियां फ्रुनिया दुन गांगमा यों मरकुशासिन जैसे गति दरे जीरो कना 6 इयर्स तक पे फ्रुनी एब्जॉर्बेंट माइंड जिन जो की सीखने वाला जहन जज्बखनी और जैसे गति स्पंज शो मदे द तो खोनी चंगाती स्पंजेस थेन मध्ये छू थेन मध्ये द चुक्सला खोई माइंड पो ओ तो चुक्सों चिन चु जुलारे ओ या डी एच पी खोई माइंड पो तो चुक्सों चिन चु जुया
2: गतां जेर दे जो की प्रू चुंते चना प्रू ला चीज कतों आता जेर ना कतो खे दिमाग का रुदे कस बिया चुक्स चिन दे
1: हाजो
2: एकदम पिक अप बात सुपाया चुंते चना खे दिमाग पो माना एकदम लेन चिन चु
1: जिसे दिया लैंग्वेज डेवलपमेंट जब ना कतो गती खे जेस्चस पो या खे न्यांचस पो जेर ना कतो दो ना खे सिलचस पो या दूस यंग चिन बो स्पेरा तंगल जोक्स पो गता ओ दो जेस्चिन लैंग्वेज मंग गता ओ दो यंग चिन जो ओ दो गता खो यो ओ दो मिन दो ओ दो गते सचास ना ला दे गना ये मना दे ना मछा ना कतो गते खो पेरेंट्स ना बो गता रा पिता बार गोशिन जो देना चोक्स लांग अजस चोक स्कूल का क्यों सुना खोन लगपांग मतलब लगपांग अजस पेंसिल निकल बच्चू जस बना अजस खोआ जो कोई फाइन मोटर स्किल
3: एक्टिविटीज
1: ज्यादा बच्चे जो जो जैसे कि सेंट रेसिंग और चीज जो मचा या डॉट नंबर को शुक दान चीज जो दो चत पता चीज ताकि कोई मोटर स्किल सा डेवलप छ जो
3: और मसल सा डेवलप छ तो जैसे कि गतंग थों मचे था ब्रीड ना या थ्रेड ता चाहते खवा थ्रेडिंग चीता सना और कदी थ्रेड पे कदी बीड उन दिका यूज
2: देना
3: हली रिकता से देखा ना खवा उदयंग नो खोई दिमाग पोदी कलो देखिंग मस दूध चिपसे जुचेन सुजरे और देखा खोए माइंड पुलुस पना खा दून पता चेर खोए फाइन मोटर स्किल पो डेवलप छे फिलंग आते दिस आर एक्टिविटीज ज्यादा बाजुक चा फोकस पहले कंगाते शोकबुना दे नमकल बा पहले कंगाते खा दिस आर एक्टिविटी भी बाजुक पना खोए फाइन मोटर स्किल पो
1: सब चा और दोना खोए गति लकपानी एक्सरसाइज बाजु चाहे जैसे दोन बाना जैसे गति गुंचे बटन योचिन या शू लेस योचिन और दोन खोआ जुबस दे चू चुपाना या खुनते बटन पोंगाते तंग चुचा फे चुचा ताकि खोए लकपे एक्सरसाइज हो गया फाइन मोटर स्किल्स आ खोई और देमो सोंसे या पुना खोई हैंडराइटिंग और देमो छोप जुदे
2: दे फिर यंते सुनते से ना खो असना और पेंसिल मार्कल बाद तो गलत सब चुप बच रहे हैं
1: डुअर
2: कले चा चुक चा या हली चुक चा तो सुस लगा
1: ओ या ना गजस दाल वाल यां जैसे दाल जैसे गति मूंग दाल यां राजमा दाल तां से उदू ना खोआ जुगा फिंग चुपा जु तू चुचा ताकि खोई लग पानी और खोई लग पानी
3: बख्शीज
2: नमूमा नर्दमो मस्छना दे सुसंगता पुशुन लहजु क्वालिटी एजुकेशन

0: कमिश्नर जंस्कार ओमकार राजेंद्रा, एसपी जंस्कार रिगजिन संडुप, एसडीएम जासिफ अमीन दुना लोकसो महकमाओनी सीनियर ऑफिसर उनसक अजुक सहयोग पेन द्यावरें चीफ सेक्रेटरी ग्रब सिवासला लोकसो माओनी तालुक्स बस गव्यान नौतोर लैंड रेगुलराइजेशन सकोली गुर्जे नोटिफिकेशन पश्मीना प्रोडक्शन पोस्केत बागबानी ने रियल अस्तोन थोक हिम सरोवर छी युरबाउन दुना को ऑपरेटिव फ्योसपुर लक्ष्यपन नृष्टोचान जोसमांगोन द्र सहयोग पेन खोजा मलदुख सिमिमासुल्ला लस्खे वक्त थो वर्गो सुगुजरेन चैंपियंस ऑफ चेंज इनिशिएटिव नाल जोंस गमयुल रेरे ना रेरे आना खुद ना शेस योतखन शर्बना चून हुकूमत सिक्की मुनिस्कोरला हागोंता से दिवनिकाना फनखेल इन मिमी ना शांस्कूल बोजदर्यां असेरेन खुरी जिस खुरी वासला आशीष कुंद्रास इंटेग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर जल जीवन मिशन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट लसुन उर्दलुस इंफ्रास्ट्रक्चर दुना करेडे नालसोंस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट उन्ना पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इनालसोंस ग्रीडी थुदलुक सी लसुन सगयांस तालुक्स बस देर की अपना टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर पदुमा लोकल इदारा उन्ना मिमासुनी नुमाइंदा हम सगन एम्बो ग्राफिक मल एंख्यों से लोकसोफ माउन सगेस्को ला मिमासुनी कनंगियन मसों कवेंग यरगिया सिलासुनी मीना पेने हिम सरोवर पे नाल जोंस छुस किल बिस्टोलन सोमा माली यूलन उच्चाउन लामी थुल्लुक्सुन लूना की मीना लोकसो काउंसलर इमलसेक सिकिम्स न लद्दाख सी लस्खा पाउन स्पो से खेचाउन असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ऑफिस चेक चौचाउन दोना सेरहियांस न टैक्सी ऑपरेटर निशमा उनसक अद्रेसे एक्यूत पेन गावे के चीफ सेक्रेटरी सोपावला दिशमा उनसक सिर सिरिका फलतेबे मीना गुमबाउन लेने जरे उर्तियांग मबास खोजियांग जंसकारियां यरिया सिलास उनसक वक्त नाल जोंस गंगरिया बसे थमा थोन चुपी मीना छोक्षिगी लखथु तिखक पेकांग उंगतांसिन यूटी लद्दाख से शीप हस्बेंड्री डायरेक्टर डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन इस दिरिंग बरुआ द्रास न करगिल शीप हस्बेंड्री महकमे तालुक से ग्राफ सिग मलेंखोंस देवास्ता डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स एसडीपी दुना ए महकमे प्रोग्राम निस्कोरला स्पेराउन तांसिन गवानुक महकमे खखुरुनिस डायरेक्टर ला महकमे छोसना लेंस खान लोकसो यरगिया सिलास निस्कोरला सल्पो बसे हगुन तांस निवासला डायरेक्टर इस मतलब खखुरुन ला इजिन थोपखान डीपीआर सग हिसाबिका यरगिया सिडुलिन खान लासुन खसकोन नाल जोंस वक्स नाल जोंस गंगरगिया बसे थमा थुन चुगजरे खसकोन तांसिन ध्यान चौसला करगिल नदरास महकमा फार्म फील्ड एस्टेब्लिशमेंट दुना लाइफ स्टॉक थुत खन लजुन स्कोर ला हगुन लेनजिक ऑफिसर उन्ना स्टाफ उन्ला लखथुत बसे लज बोज जरे जर बसों गाज बसे सख्यत यद खान उन्ना बेनिफिशरी सुनला नोरो बसे फन खुन सख लेप चुकपा नियन चो पुर्गी खबर इंतेस आकाशवाणी करगिल के नसना बिंचिंग लद्दाख से अनुक स्वच्छ भारत मिशन पुर तनपो जक्सर चांदा गलू प्यानुक लेगिना जिंगसंग नेम्बो लसुन बेंचिक होते हैं रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी करगिल इग्रल सिरी कमल एंखोस खन जन सेवा से देश सेवे नालचोंस फेसपा पॉडकास्ट श्रीनगर खन डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर एसबीएम रूरल मोहम्मद तोहस करगिल सनलोस्तुंगिस ने चुपग्ञात यानुक ओडीएफ यानी फिस्ताज गो छचस पे कना गंगरिया बसे शख्सी थोर तांस इंजरेन जिला गांपु दरा इन नसांस चांदक पुर तनपो जकपिमी स्वच्छ भारत मिशन सिरपुर जिले अनुकमल से जिले बुलाक चौगे अनुकुमी मलसा अनुष्ठो से मलसा रेरे न रेरे का मिंगार किया लसखाउन थोपसे ध्याना चौसला मीमांसुल्लर चांदा के लक्ष्यपन गिरजान मीमांसुल्ला थोचा बसे यों से इंजरेन अर्गुनलर गलम पुना एलम उनसक गाड़ियों ने छायों पे फिला अजगस लुशाज बसे सरसों उजदुम बिमीना गाड़ियों ने सरसों की मलसे का मिले चाज बसे कबल अज बर्दुन थो मत जरां सर सेट खोजियां सोसो बिंखन नापा उनला एसबीएम पे नाल जोंस छक्सा उन अर्सिक बिमीना फ्रलुक सुनसगा बेंचिक इयो ते इंजरेन जिस कबल अज बर्दो चन नमसे नाल जोंस जिल्ला गांपुल शखमो जक बिमीना महकमेश तंदुस फ्रलुक सुन बेंचिक इयो ते इंजरेन
1: हर घर को हमने जो हमारा लेटरिन है जिसको इस एसबीएम स्कीम के अंदर बनाया तो इसका बनाने का मकसद यही रहा यानी स्वच्छ भारत मिशन का बेनिफिट है गवर्नमेंट की तरफ से जो 12,000 का एक इंस्टीट्यूट रखा हुआ था वो हमने लोगों के अकाउंट तक पहुंचाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मकसद यही रहा कि लोग बाहर पाखाना न करें बल्कि अपने घर में आप टॉयलेट बनाया है लेटरिन बनाया है उसका इस्तेमाल करें। तो वैसे ही हमने फेज सेकंड के अंदर हम वीबीजी राम जी जो अप हुआ है तो उसके साथ कन्वर्जेंस करके हमने हर हाउस होल्ड को सेमली स्वॉक पिट बनाया जिससे हमारे घरों के अंदर जो आपका वॉशिंग मशीन का पानी है आपके कपड़े धोने का पानी है आपके बर्तन धोने का पानी है आपका ब्लैक वाटर जो है ने स्वॉक पिट बनवाए। तो हमेशा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जितना हो सके डिपार्टमेंट के जो नेशनल स्कीम्स है उनको लोगों तक पहुंचाया है और 2022 में हमने हमारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का वो शुरुआत

0: बात हमने 1 जून 2022 को ये जो वेस्ट प्रोसेस से हमने यहाँ हमारे मुस्मा से हमने शुरू किया।
1: वेलिडेट्री कम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चिक ननिंग सी बेची ट्रेनिंग लेनखन ने मिंगा इंगीशुर सख्सु में ट्रेनिंग पो गहरिया छचाओ नजोम से स्टॉक असिस्टेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कैंप कोरबथंग करगिल लहम लेंख्योंस दिवाक्सा दी प्रोग्राम पियंग फिशरीज ना एनिमल हस्बेंड्री महकमे डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल ना यूनियन टेरेटरी लद्दाख से शीप हस्बेंड्री महकमे डायरेक्टर डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन इस खखलेंस देवरिया तकरीब नगरान चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर करगिल डॉक्टर गुलाम मोहम्मद इस दी ट्रेनी लेन खनुन लक्सेप्शन ट्रेनी पुताम मीना सती केम करगिल खगोन स्कोरला अजर वसों खोजां दी इंस्टीट्यूट पु सनलोस तोंग इस ना चुरगुई लो अमल आयों स्पिंजरन मिंगर या नतुरगा दक्षन सुपा ट्रेनिंग तांग सेंजरे अजर या महकमे डायरेक्टर इस ट्रेनिंग लेन खानुल्ला मुबारक बाद तंग अंचिक टुड्डो बला उन्हें आशी पौन सख्यत गेत खानुल्ला खुंदी छोस न खुरे खिदमत उन सक मल अंख्यों में उर्थियंग मबास ध्यान चौसला शीफ हस्बेंड्री डायरेक्टर इसम ट्रेनिंग लेन खानुल्ला मुबारक बाद तंग अंचिक दी ट्रेनिंग पेकन नोरो बसे फन खे उन सक खुंती लस्खे वसला मीमा सुनला लेपचुक परगो सुजरे जुआ बसेन दिवसला ननी सी बेची ट्रेनिंग लेंस खान मिंगा इंगीशुर चकसुम पुलर सर्टिफिकेट उन गो से तांचा और नंबो प्रोग्राम पुथा माथुन ग वसला महकमा इसके सीनियर ऑफिसर उन्ना वटर री प्रोफेशनल उनसक अशुक से अहियत पिन यूथ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर सोसाइटी वखा स्कूल उन्हीं क्विज कंपटीशन चिकी मॉडल मेडल स्कूल वखा ग्रल सिरबास गवे स्कूल उर्दू निफ्रू निस खा कल स्पेन गवे मॉडल मेडल स्कूल वखा गोमा सिरपो मेडल स्कूल शर्गो लंगी सिरे सिरपो दोना हाई स्कूल वखा सुमी रसी सिरपो लगे इंखे उमीना लख चेपसोंग दिवासला दुनमा एग्जीक्यूटिव काउंसलर मोहम्मद अली चंदन फेस पर डुनफेज ओस्ते का दुना हाई स्कूल वखे हेडमास्टर रिंचन डुनफेज ओस्ते का अशोक से अहियत पिन देवरियांग वाई एस डब्ल्यू वखे सदरिस एरगल खान स्कूल उन ला मुबारक बा तांचे खोए सोसाइटी छोस ना फ्रू ने अनुक्षेस पुलिस केत खो में फिला दी जाती प्रोग्राम उन यों में वक्स ने अनुगां ग्रल बे और थियंग मबास ईरानी फिरमाए वजीर सईद अब्बास इराकची मकमीनस गक्सु निशमांग पो अमरीका नंगम्बोस पर रतरा उन इस्ट्रोलिका फलते बांग एंचाइन जरह से रेन एम्बेसडर उन्ना यूलोनी नुमाइंदा उन दुना म्यूले एदारा उन नंबो तेहरान ला ग्रगंचिक खुरी छोसना अमरीकास निशमांग पे का संबा तामीर दियां बेंचिक अमरीकास ईरानी का गाजाती हमले बनरिक हों दुनमा वक्सुन बसंग लेगिन लक्षिप नंगम्बो लेन जोपाचा तक अयोत इंजरे अजर सेट इराकची दी बयान पो अमरीका ने ईरानी बरियांग ईरानी का अमरीकी इक्तिसादी गत पुन से मलियानुक हुसैन दियाबाने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प इस दिथामो ईरान नेम्बो ग्योस्पा छमशा सिंजरेन तेली रिन पॉइंग ग्योस्पा बसे बफशा इंजरे जर बसों कसता खबर निशांसे का नमजा स्कोर लदरिंग करगिल अंगिमा नमजा उथांसलो ज्यान दरिंग इंगिमी छाती थिक पो करगिल अंगिशुर चब्दुन एशारी एचपी डिग्री सेल्सियस दुना गोंदे सनी छाती थिक पो गा एशारी अर्दुन डिग्री सेल्सियस तखनाबास लदरिंग इंगिमी छाती थिक पो इंशुर चक्षी एशारी एचपी डिग्री सेल्सियस दुना गोंदे सनी छाती थिक पो सुम एशारी अर्कियत डिग्री सेल्सियस तखनाबास द्रास लदरिंग इंगिमी छाती थिक पो इंशुर चागा एशारी अर्गु डिग्री सेल्सियस दुना गोंदे सनी छाती थिक पो निस एशारी अगा डिग्री सेल्सियस तखनाबास यां पदुम दरिंग इंगिमी छाती थिक पो इंशुर चक्नेस डिग्री सेल्सियस दुना गोंदे सनी छाती थिक पुचिक एशारिया और घट डिग्री सेल्सियस तक नवा दिन दर सक पेपुर की खबर आयोजन छस दबोस यशु खुदा नर संगमानी फकरियां।

0: नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: तेरी वाइफ है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
6: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: बढ़ सकता। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेज रफ्तार तरक्की करने वाली मईशतों में से एक है, साथ ही वो तेज रफ्तार तकनीकी पेशरफ्त और तरक्की के दौर में भी दाखिल हो रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मजबूत आत्मनिर्भर भारत की तामीर में आईसीएसआई की इज्तिमाई कोशिशों के बदौलत मुल्क एक दिन दुनिया की वाहिद सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। वजारत खारजा ने पाकिस्तान के सफीर को तलब करके सरहद पार से गैर कानूनी तौर पर दरअंदाजी के लिए हिमायत देने के खिलाफ भारत का सख्त एहतियाज दर्ज कराया। भारत ने साथ ही पंजाब के फैरोजपुर सेक्टर में बैन अवकामी सरहद के मुतसिल एक वाक्य की नस्बत से लगाए गए इल्जाम को भी सिरे से ही मुस्तरद कर दिया। वजारत खारजा ने बताया कि पाकिस्तान को यह बावर कराया गया है कि वह अपनी तरफ से मनशियात और गैर कानूनी दरअंदाजी को रोकने के लिए सरहदों की हिफाजत करने वाले अपनी फोर्सेज को जवाब दे और इस सिलसिले में बाहमी मुहदों की पासदारी को यकीनी बनाए। अपग्रेड किए गए आईटीआईज के जरिए प्रधानमंत्री हुनरमंदी और रोजगार के मौके फराहम करने वाली स्कीम पीएम सेतु का आज एक साल मुकम्मल हो गया है। हुनरमंदी की तरक्की और सनअतकारी की वजारत की स्कीम पीएम सेतु का आगाज पिछले वर्ष 4 अक्टूबर को किया गया था। इस स्कीम का मकसद सनअत पर मबनी हुक्मरानी को मजबूत करना, तरबियत से मुतालिक बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना और उभरती हुई अफरादी कुवत की मांग के मुताबिक कोर्सेज को फरोग देना शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के अपने सफर के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। इन 25 बरसों के सफर की कामयाबी वज़ीर-ए-आज़म के जनसेवा से देश सेवा के जज्बे से वाज़ेह हो जाती है। इस खसूसी सीरीज के सिलसिले में समाप्त करें वन नेशन वन टैक्सेशन से मुतालिक हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट।
1: मुल्क के बिलवास्ता टैक्स निजाम में बड़ी इसलाह के तौर पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी 1 जुलाई 2017 को नाफिज किया गया। इसका बुनियादी मकसद मुख्तलिफ मरकजी और रियासती बिलवास्ता टैक्सों को एक मरबूत निजाम में लाना और मुल्क भर में एक मुश्तरका कौमी मंडी को फरोग देना था। जीएसटी के नफाज के साथ 17 मुख्तलिफ टैक्स और 13 सेस एक मुश्तरका फ्रेमवर्क में शामिल किए गए, जिससे टैक्सों पर टैक्स लगने यानी कैस्केडिंग इफेक्ट को कम करने की कोशिश की गई। इस निजाम में मरकज और रियासतें जीएसटी काउंसिल के जरिए अहम फैसले करती हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड टैक्स दहिंदगान की तादाद 2017 में 66,50,000 से बढ़कर मई 2026 में 1,65,00,000 हो गई है, जबकि इसी अरसे में जीएसटी महसूलात में भी नुमाया इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर में भी जीएसटी ने कारोबार और तिजारत के लिए एक यकसां टैक्स निजाम फराहम करने के साथ बैनुल जिली तिजारत को आसान बनाने और मईशत को रस्मी व डिजिटल टैक्स निजाम से जोड़ने में अहम किरदार अदा किया है। 2025 की जीएसटी इस्लाहात के तहत टैक्स ढांचे को मजीद आसान बनाने के लिए बुनियादी तौर पर 5% और 18% की शरहों पर मबनी निजाम मुतारिफ कराया गया, जबकि चंद मखसूस अशिया और खदमात के लिए अलग शरह मुकर्रर की गई। यूं एक मुल्क एक टैक्स एक कौमी मंडी का तसव्वुर हिंदुस्तान के टैक्स निजाम को मजीद मरबूत शफाफ और डिजिटल बनाने की समत में एक अहम तब्दीली है।
2: नसीर अहमद के साथ मैं सैयद मुबशिर रुफाई, आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर।
0: नायब वज़ीर-ए-आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज सांबा जिले के सांबा ब्लॉक में ज़ेर तामीर दो पुलों की पेशरफ्त का जायजा लिया। मौसूब ने पुलों की तामीर में ताखीर पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वह काम की ताखीर में वजूहात का पता लगाकर जरूरी इकदाम करें और तामीरी काम में सूरत लाकर इनकी तकमील को यकीनी बनाएं। वज़ीर तालीम सकीन नायतु ने कहा कि असाजा तालीमी निजाम की बुनियाद है और मुआशरे और कौम के मुस्तकबिल की तश्कील में उनका एक अहम रोल है। मौसूफा जम्मू कश्मीर रहबर तालीम असाजा फोरम की जानब से एससीईआरटी बेमिना में मुनकिदा एक रोजा मेगा टीचर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। कॉन्फ्रेंस का मौजू था असाजा के किरदार, हकूक और जिम्मेदारियां। इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कौम की तामीर में तदरीसी अमले की खिदमात को सराहा और रहबर तालीम असाजा की लगन और मेहनत को तस्लीम किया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के दूरदराज और मुश्किल गुजार इलाकों में अपनी खिदमात अंजाम दी है। सरकार तालीम याफ्ता नौजवानों को कारखानादारी और खुद रोजगार हासिल करने के मिशन को फरोग देने के लिए ठोस इकदाम कर रही है, जिनमें हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम एचईडीपी और जम्मू कश्मीर कम्पिटिटिवनेस इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स जेकेसीआईपी शामिल हैं। इन बातों का इजहार जिरात के वजीर जावेद अहमद डार ने अनंतनाग जिले के दौरे के दौरान हमारे नुमाइंदे तसदुक रशीद से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि सरकार नौजवान कारखानादारों को मुख्तलिफ किस्म के मुराद फराहम करके उनकी हौसला अफजाई कर रही है, ताकि नौजवान खुद रोजगार यूनिट कायम करके न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के मौके फराहम करने के अहल बन सकें।
3: फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहा है एचईडी और जेके से। कोशिश हमारी ये होती है कि नए नए जो हमारे बच्चे होते हैं, पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स, हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, सब्सिडी कंपोनेंट देते हैं, ताकि वो अपना रोजगार खुद कमा सके। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग जो है यहाँ

0: स्ट्रीम्स काफी है, फिशरीज डिपार्टमेंट में काफी पोटेंशियल है और मुझे जो इतला है कि बहुत सारे नौजवानों ने फिशरीज बॉन्ड्स जो है उसमें अपना इन्वेस्टमेंट किया है और गवर्नमेंट की तरफ से उनको सब्सिडी मिली। एचएटीपी में 29 कंपोनेंट्स है और पीपल फ्रेंडली है, उसमें स्कीम्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ग्राउंड पे होता है और एचएटीपी को सप्लीमेंट करने के लिए जेके सिप उसमें भी हमारी कोशिश है कि नई नई इंसेंटिव्स लोगों को दिए जाए और जहां जहां कमी होता है उसको भी दूर किया जा रहा है।
1: वजीर मौसूफ ने मटन अनंतनाग में एक कैफे का भी इफ्तिताह किया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। आज जानवरों का आलमी दिन है। ये दिन हमें जानवरों की बहबूद, इनका तहफ्फुज यकीनी बनाने और इनके तई नरमी और हमदर्दी के साथ पेश आने की तरगीब देता है। इस दिन जानवरों के हकूक और इन पर हो रहे इस्तेसाल से इज्तनाब करने की भी याद दहानी कराई जाती है। दुनिया के मुख्तलिफ मजाहिब ने जानवरों के साथ नरमी से पेश आने की ताकीद की है। गौरतलब है कि कुर्रे अर्ज पर कुदरती माहौल में तवाजुन बरकरार रखने के लिए हैवानों का कलीदी रोल है। मुल्क में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक जारी वाइल्ड लाइफ वीक 2026 के एक हिस्से के तौर पर जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट यूटी भर में कई प्रोग्रामों का इनेकाद कर रहा है, जिस दौरान कुदरती पनागाहों का तहफ्फुज, माहौलियाती राबता और जंगली हयात को महफूज रखने में अवामी शिरकत की हौसला अफजाई पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। इस सिलसिले में रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वॉक फॉर वाइल्ड लाइफ, वॉक फॉर ड्रग फ्री सोसाइटी के मौजू के तहत एक तहजीबी विरसे की एक दौड़ का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा, मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन, मुहक्किकीन, फितरत के शायकीन और मकामी लोगों की एक भारी तादाद ने शिरकत की। दौड़ को जंगलात माहौलियात की कमिश्नर सेक्रेटरी शीतल नंदा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर महकमे के सीनियर अफसरान के अलावा जिला इंतजामिया और यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेम्बरान भी मौजूद थे। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के अहतमाम से इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स का 60वां सालाना डायमंड जुबली कन्वेंशन कल से यूनिवर्सिटी के शालीमार कैंपस में मुनक्किद हो रहा है, जो 7 अक्टूबर तक जारी रहेगा। प्रोग्राम के दौरान काश्तकारी के जदीद तरीकों और जेनजी एग्रीकल्चर के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल करने के लिए बैन अलाक्वामी सिम्पोजियम का इनेकाद भी किया जाएगा। आज बांडीपोरा में वुलर मैराथन के तीसरे एडिशन का इनेकाद किया गया। बीएसएफ की तरफ से मुनाकिद इस मैराथन में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए 3000 से जायद एथलीटों ने शिरकत की। बाद में बीएसएफ के आला अफसरों और बांडीपोरा की जिला तरक्याती कमिश्नर इंदू कंवल चिब ने दौड़ के मुख्तलिफ जुमरों में इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वालों में इनाम तकसीम किये। ये दौड़ 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर और 50 किलोमीटर जुमरे में मुनाकिद की गई। दौड़ के पेश नजर ट्रैफिक पुलिस रूरल कश्मीर ने मैराथन रूट पर आज सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक गाड़ियों की आमदरफ्त मुअत्तल रखी थी। हमारे नुमाइंदे सुहेल भट्ट के मुताबिक दौड़ के अहसन इनेकाद के लिए इंतजामिया और दीगर महकमों ने खातिरख्वाह इंतजाम किए थे। नुमाइंदे के मुताबिक दौड़ के दौरान शोहरा आफाक झील वुलर को तहफ्फुज देने और झील को आलूदगी से पाक रखने की तरफ लोगों की तवज्जो मबजूल कराई गई। अनंतनाग पुलिस ने ड्रग कंट्रोल महकमे के इश्तराक से जिले के मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तरक तौर पर मेडिकल स्टोरों का मुआयना किया, जिस दौरान लाजमी रिकॉर्ड बरकरार न रखने और दीगर जाब्तों की खिलाफ वर्जियों की पैदाश में 5 अद्वियात की दुकानों को सर्बमुहर कर दिया गया। हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे तसदुक रशीद ने पुलिस जराया का हवाला देते हुए खबर दी है कि यह कार्रवाई मनशात कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026-29 के तहत जारी मुहिम का एक हिस्सा है। हुकाम के मुताबिक अद्वियात के जवाबित पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए ऐसी कार्रवाइयां मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा ने कहा है कि पार्टी जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला में 7 अक्टूबर को सेवा ज्योति यात्रा के जरिए सेवा का जज्बा जम्मू कश्मीर के हर कोने तक पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि यात्रा सिर्फ एक इंतजामी प्रोग्राम नहीं बल्कि अवामी खिदमत के जज्बे को लोगों से मिलाने का एक मौका भी है। वह आज त्रिकोटा नगर जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर पर इस मुहिम का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि सेवा ज्योति यात्रा नामवर शहरियों, सिविल सोसायटी के मेम्बरान, जिंदगी के मुख्तलिफ तबका फिक्र के लोगों और नौजवानों के दरमियान एक पुल की मानद काम करेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉ फारूक अब्दुल्ला ने मशरक वस्ता के जारी बहरान पर तश्वीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस बहरान ने मशरक वस्ता के साथ साथ पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ इंसानी जानों के जिया और इकतसादी बहरान की वजह से पूरी दुनिया को तश्वीश लाहक हुई है, वहीं दूसरी तरफ आलमी तिजारत और इकतसादी मंजरनामे पर भी इसके मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। अनंतनाग और पुलवामा में पुलिस ने 2

0: ये इनकलाबी कदम एक ऐसे वक्त में शुरू हुआ है जब नरेंद्र मोदी ने भारत के वजीर आजम की हैसियत से अपने कामकाज के 12 बरस बड़ी कामयाबियों और होशियारियों के साथ मुकम्मल किए हैं। इस मुहिम के तहत आम लोगों बिलखसूस नौजवानों के लिए माई भारत और जनमंथन जैसे प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है ताकि मशावरत के काम में हमारे मुस्तकबिल के मेमारों यानी नौजवानों को शामिल किया जा सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस रिफॉर्म उत्सव को किस तरह से यकीनी बनाया जा सके। इसके लिए जरूरी था कि आबादी के उस हिस्से को भी कवर किया जाए जहां हमारे 80% लोग रिहाइश पजीर हैं, यानी हमारे देही इलाके जिनको तरक्की के हवाले से कुदरती तौर ज्यादा हिस्सेदारी है। इस जमन में इस बात का खसूसी ख्याल रखा गया है कि रिफॉर्म उत्सव की तवज्जो आबादी के तनासुब के लिहाज से ज्यादातर देही इलाकों पर मरकूज रहे। इस हवाले से मुल्कगीर सतह पर ग्राम सभाओं का इनेकाद हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन ग्राम सभाओं में शिरकत करने की तरगीब दी जा रही है जहाँ वो अपने तजुर्बात की बुनियाद पर हुकूमत के एहलकारों को तामीर तरक्की और इस सिलसिले में मौजूद कोताहियों को दूर करने के सिलसिले में अपने मुफीद मशवरे दे सकें जो आगे चलकर पॉलिसी साजी के लिए एक अहम किरदार के तौर पर काम आ सकें। ग्राम सभाओं के हवाले से जो इत्तलात मौसूल हो रही है उनके मुताबिक मुल्क भर में लोग इन सभाओं में बड़े जोश खरोश के साथ शिरकत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अतराफ अकनाब से खबरें मौसूल हो रही है कि लोग बड़ी तादाद में इन ग्राम सभाओं यूथ मोबिलाइजेशन और जनमंथन सभाओं में शिरकत कर रहे हैं और हुकूमत की तामीर तरक्की के जिम्मन में अपने कीमती मशवरों से आगाह कर रहे हैं। इस जोश खरोश को देखकर यह कहा जा सकता है कि अवामी सतह पर रिफॉर्म उत्सव को काफी पजीराई हासिल हो रही है और लोगों में एहसास जिम्मेदारी पाया जा रहा है। तबसरा खत्म हुआ। शब बख़ैर।
1: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
2: हे गर्ल्स, कांग्रेचुलेशंस, आज तो पार्टी चाहिए।
3: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्ज़, मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़ और एफएम चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी करगिल है। 8 बजे चाहते हैं पेशकश में है प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए।

अभी आप सुन रहे थे आशिकी फिल्म का ये गीत कुमार सानू और अनुराधा पोडवाल की आवाजों में। बोल समीर के औरत तरस बनाई थी नदीम श्रवण ने। आइए सुनते हैं अनुराधा पोडवाल की आवाज में सड़क फिल्म का ये नगमा। नगमनिगार समीर और मौसीकार हैं नदीम श्रवण।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल को फिल्म सड़क में ये गीत। गीतकार समीर और मौसीकार थे नदीम श्रवण। लीजिए सुनते हैं दिल वाले।

0: फिर से लेट। बेटी का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी भी अपडेट करना है।
1: अरे ये तो एकदम झटपट काम है।
0: कैसे?
1: अगर केवाईसी तफसीलात में कोई तब्दीली नहीं है या सिर्फ पता तब्दील हुआ है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से खुद की तरफ से जाती तस्दीक दे दो।
0: और बाकी तब्दीलियाँ?
1: घर बैठे वीडियो केवाईसी, आधार ओटीपी, ई केवाईसी से अपडेट करो। सिंपल।
0: ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
1: RBI कहता है
2: केवाईसी महफूज बैंकिंग की तरफ पहला कदम।
3: दीदी नौकरी मिल गई।
4: अरे वाह, मुबारक हो, फिर तो ढेर सी शॉपिंग।
3: हाँ दीदी, नया मोबाइल, जीन्स जैकेट।
4: खैरो शहजादे, तनख्वाह से पहले ही खर्च।
3: इंस्टेंट कर्ज भी तो मिलता है।
4: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
3: पर दीदी
4: देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन दावत देने से नहीं बचोगे तुम।
3: हाँ दीदी, दावत मेरी, बजट तुम्हारा।
4: अच्छा।
5: RBI कहता है
6: सही माली बर्ताव करे आपका बचाव।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए।
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
4: क्या हुआ अबू?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: कोई डर खौफ ना करे अबू, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI वगैरह के नाम से आने वाले साइबर मुजरिमों के फोन या वीडियो कॉल से होशियार रहे। उन्हें कोई पैसे ना भेजे, बल्कि फौरन पुलिस में शिकायत करें। अगर समझदारी नहीं दिखाएंगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक को दिल वाले फिल्म से एक गीत। अभी सुनते हैं दिल तो पागल है फिल्म से एक नगमा। नगमा निगार आतिश कपाड़िया, मौसिकार ए आर रहमान और इस नगमे को गाए हैं उदित नारायण और लता मंगेशकर ने।

अभी आप सुन रहे थे थ्री इडियट्स फिल्म से गीत शानू मोहित्रा की आवाजों में। आइए सुनते हैं कुमार सानू और उदित नारायण को इश्क फिल्म में ये गीत। बोल रहा दिंदोरी के और तर्ज बनाई है अनु मलिक ने।

0: अभी आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे फौजी भाइयों के लिए मीडियम वेव्स और एफएम चैनलों पर यह आकाशवाणी करगिल की आवाज है। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में खबरें रिले करेंगे। रिले का इंतजार कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3,00,000 मकान सौंपे। उन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग कर देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला रखी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। ईरान ने कहा, अमेरिका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा, हुर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा। ईरान की मिसाइलों की रेंज बढ़ाने की भी योजना। और जापान में एशियाई खेल भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, 21 स्वर्ण पदक सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
2: There are countries who are emerging.
3: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्य स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3600 करोड़ रुपए की लागत से 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। ये कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक

0: उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। इसके अंतर्गत 14 करोड़ रुपए की लागत से 177 घरों का निर्माण किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार राज्य भर में विकास को गति देने और इसे देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मिलकर काम कर रही है।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3,00,000 मकान बनाने की पहली किस्त आंध्र प्रदेश के गरीबों को समर्पित की है। 100% मकान गरीबों को बनाने में आपके साथ भारत सरकार खड़ी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कम्प्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए।
0: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि भारत की निरंतर आर्थिक मजबूती, मजबूत कॉरपोरेट प्रदर्शन और निरंतर निवेश गतिविधियों का असर अब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा देश के विकास अनुमानों में की गई बढ़ोतरी में परिलक्षित हो रहा है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव के दौरान श्री गर्ग ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बरकरार रखी है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव वित्तीय शक्तिकांत दास ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक मजबूती का मुख्य कारण वित्तीय क्षेत्र में सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि दिवालियापन और दिवालिया संहिता, बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और रचनात्मक नियामक निगरानी जैसे सुधारों से भारत का वित्तीय क्षेत्र आर्थिक विकास का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है।
2: Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile 5 economy, we become the 4th largest economy and I'm sure soon we are going to be the 3rd largest economy of the world.
0: नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि एक क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जैन परंपरा में क्षमा को आध्यात्मिक अनुशासन में परिवर्तित किया जाता है जो आज समूची मानवता के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थन्नट चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की तेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास

0: और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे 3 नए आपराधिक कानूनों के जरिए न्याय को आसान और सुलभ बनाया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शामिल हैं।
1: नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत 0 FIR, त्वरित जांच, सीमित स्थगन, फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह और वीडियोग्राफी तथा लैंगिक रूप से तटस्थ अपराध जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है सिटीजन फर्स्ट। ये कानून नागरिक अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ईज ऑफ जस्टिस का आधार बन रहे हैं। पहले FIR करवाना भी कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब 0 FIR को भी कानूनी रूप दे दिया गया है।
1: संगठित अपराध से निपटने और महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। पहली बार भीड़ द्वारा हत्या को धारा 103 की उपधारा 2 के तहत एक अलग अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यदि 5 या उससे अधिक लोगों का समूह नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जनस्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो समूह के प्रत्येक सदस्य को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड के साथ साथ जुर्माने की सजा हो सकती है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुनील कुमार ने कहा,
3: 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह ली है। इनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आधुनिक, तेज और तकनीक अनुकूल बनाना है। इनमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों पर विशेष प्रावधान है। साथ ही EFIR, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही और फोरेंसिक जांच को बढ़ावा दिया गया है।
1: पहले 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान था। अब इस प्रावधान में संशोधन किया गया है। वहीं अब 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के अपराध के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हुर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आईची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2023 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा। खेलों के दौरान कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा।
4: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहिन ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। वो 2014 में मैरीकॉम के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार लगातार 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 42 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांस्य पदक

0: हासिल किया। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: भारत और कनाडा कल से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगे। दोनों देश व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में पांच दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय और दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देश के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3 लाख मकान सौंपे। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। और जापान में एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says changing global landscape opens new avenues for cooperation among emerging and middle powers, highlights peace, supply chain resilience and connectivity as their key agendas. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan hands over 3 lakh houses worth 3,600 crore rupees to Andhra Pradesh, lays foundation stone for country's first pilot housing project using 3D concrete printing technology. Campaigning ends for by-polls to 5 assembly seats across Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and a Lok Sabha constituency in Assam, voting on Tuesday. Iran says Strait of Hormuz to remain closed until US meets its 7 conditions, plans to expand range of missiles. And Asian Games 2026 draw to a close in Japan in a dazzling ceremony. India sign off in 4th place with 85 medals comprising 21 gold. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are among the key areas where emerging and middle powers can play an important role. Dr. Jaishankar was speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi today. He said the world, its agenda and its geopolitical landscape are all undergoing significant changes, creating substantial scope for cooperation among emerging and middle powers. He said it is marked by the repositioning of the United States, the rise of China and growing global interdependence.
3: There is today a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. The world is changing, its agenda is changing, the landscape is changing, the architecture is changing. And I'm very glad today that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
2: Citing the Quad as an example, Dr. Jaishankar said it demonstrates cooperation among middle powers with an established major power.
3: Today in a maritime space, in the Indo-Pacific space, we have Quad as an example of, I would say, emerging middle power cooperation with an emerged power. A second example would be in the field of connectivity, where you have something like the IMEC initiative, the India-Middle East-Europe connectivity corridor, the international north-south transport corridor, even the polar route, the northern sea route could be the subject of cooperation.
2: Second Principal Secretary to the Prime Minister Shaktikant Das has said restoration of the health of the financial sector has been the defining feature of India's resilience in recent years. He was speaking at the Kautilya Economic Enclave in New Delhi today.

0: Changing global landscape opens new avenues for cooperation among emerging and middle powers, highlights peace, supply chain resilience and connectivity as their key agendas. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan hands over 3 lakh houses worth 3,600 crore rupees to Andhra Pradesh, lays foundation stone for country's first pilot housing project using 3D concrete printing technology. Campaigning ends for by-polls to 5 assembly seats across Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and a Lok Sabha constituency in Assam, voting on Tuesday. Iran says Strait of Hormuz to remain closed until US meets its 7 conditions, plans to expand range of missiles. And Asian Games 2026 draw to a close in Japan in a dazzling ceremony. India sign off in 4th place with 85 medals comprising 21 gold. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं हबीबुर रहमान। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया के बदलते हुए मंजरनामे से उभरती हुई और औसत दर्जे की ताकतों के माबैन ताउन के नए मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने अमन, मजबूत सप्लाई चेन और कनेक्टिविटी को इनका अहम एजेंडा करार दिया। दही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3 लाख से ज्यादा मकानात सुपुर्द किए जिनकी लागत 3,600 करोड़ रुपए है। उन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पहले आजमाइशी हाउसिंग प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। तमिलनाडु, पुडुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली सीटों और आसाम में 1 लोकसभा हल्के के लिए जिमनी चुनाव की मुहिम अपने अख्ताम को पहुंची। वोटिंग मंगल को कराई जाएगी। ईरान ने कहा है कि अबनाई हुरमुस उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक अमरीका उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं कर देता। ईरान का इरादा है कि वो अपने मिसाइलों की किस्मों में इजाफा करेगा और एशियन गेम्स 2026 जापान में जगमगाती हुई एक तकरीब के दौरान अपने अख्ताम को पहुंचे। भारत 85 तमगों के साथ 4th मकाम पर रहा, उसने सोने के 21 तमगे हासिल किए। अब खबरें तफसील से। वजीर खारिजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि बैनुल अक्वामी अमनो सलामती, सप्लाई चेन की मजबूती और कनेक्टिविटी वो अहम शोबे हैं जिनमें उभरती हुई और औसत दर्जे की ताकतें अहम रोल अदा कर सकती हैं। डॉक्टर जयशंकर आज नई दिल्ली में 62वीं म्यूनिख सलामती कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि दुनिया, इसका एजेंडा और इसका जोग्राफियाई व सियासी मंजरनामा, ये सब अहम तब्दीलियों के मरहले से गुजर रहे हैं जिससे उभरती हुई और औसत दर्जे की ताकतों के माबैन ताउन का एक खातिरखा माहौल पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा है कि यह सब अमरीका की एक नई हैसियत कायम होने, चीन के तरक्की करने और बढ़ते हुए आलमी इन्हिसार के मुतरादिफ है।
2: देयर इज टुडे अ सब्सटेंशियल एजेंडा फॉर इमर्जिंग एंड मिडिल पावर्स टू कोऑपरेट। द वर्ल्ड इज चेंजिंग, इट्स एजेंडा इज चेंजिंग, द लैंडस्केप इज चेंजिंग, द आर्किटेक्चर इज चेंजिंग। And I'm very glad today that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
1: क्वाड को मिसाल के तौर पर पेश करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इससे औसत दर्जे की ताकतों के माबैन ताउन का इजहार होता है।
2: Today in a maritime space, in the Indo-Pacific space, we have Quad as a example of, I would say, emerging middle power cooperation with an emerged power. A second example would be in the field of connectivity, where you have something like the IMEC initiative, the India Middle East Europe Connectivity Corridor, the International North South Transport Corridor, even the Polar Route, the Northern Sea Route could be the subject of cooperation.
1: वजीर खारजा ने जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर्स, मसनूई जहानत AI और खला से मुतालिक सलाहियतों को ऐसे अहम शोबे करार दिया जिनमें भारत यूरोपीय यूनियन ताउन में तौसी की जा सकती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं जो जनसेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अजम का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अनथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम तस्करा कर रहे हैं कि फौजदारी के 3 नए कवानीन के जरिए इंसाफ के हुसूल को किस तरह आसान बनाया गया। ये कवानीन भारतीय न्याय संहिता 2023, BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

0: BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA हैं।
1: यकुम जुलाई 2024 से नाफिज होने वाले नए फौजदारी कवानीन शहरियों को बाइख्तियार बनाने की सम्त एक अहम कदम है। इन कवानीन का मकसद सबके लिए एक मजीद काबिल रसाई मुआविन और इंसाफ का एक मौसर निजाम तश्कील देना है। नए फौजदारी कवानीन के तहत जीरो FIR, जल्द तहकीकात, मुकदमात के इल्तवा को कम करना, फोरेंसिक शवाहिद इकट्ठा करना और वीडियोग्राफी नीज ऐसे जराइम के लिए दफात मुकर्रर की गई हैं जिनके इर्तिकाब में सिन्फी लिहाज न रखा गया हो। नए फौजदारी कवानीन के निफाज के बाद एक इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता का बुनियादी मंत्र शहरी मुकदम है। उन्होंने कहा कि यह कानून शहरियों के हकूक की हिफाजत करने वाला है और इससे इंसाफ की आसान फराहमी हो सकेगी।
2: भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है सिटीजन फर्स्ट। ये कानून नागरिक अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ईज ऑफ जस्टिस का आधार बन रहे हैं। पहले FIR करवाना भी कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब जीरो FIR को भी कानूनी रूप दे दिया गया है।
1: एक बड़ी कानूनी इसलाह के तहत भारतीय न्याय संहिता 2023 में मुनज्जम जराइम से निमटने और खवातीन और बच्चों की सलामती को और पुख्ता करने के लिए सख्त दफात मुतारिफ कराई गई हैं। ऐसा पहली बार है कि मॉब लिंचिंग को दफा 103 की जैली दफा 2 के तहत एक अलग जुर्म करार दिया गया है। अगर 5 या इससे ज्यादा अफराद नस्ल, जात, बिरादरी, जिन्स, जाय पैदाइश, जबान या जाती अकीदे की बुनियाद पर किसी शख्स का कत्ल करते हैं तो हर मुजरिम को उम्र कैद या सजाए मौत के साथ साथ जुर्माने की सजा दी जा सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट के वकील सुनील कुमार ने आकाशवाणी न्यूज से खसूसी बातचीत में कहा कि नए फौजदारी कवानीन में मुनज्जम जराइम, दहशतगर्दी और मॉब लिंचिंग से मुतालिक दफात शामिल की गई हैं, जबकि डिजिटल शवाहिद को भी तस्लीम किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक FIR के इंदराज की भी सहूलत रखी गई है।
3: 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह ली है। इनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आधुनिक, तेज और तकनीक अनुकूल बनाना है। इनमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों पर विशेष प्रावधान है। साथ ही EFIR, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही और फोरेंसिक जांच को बढ़ावा दिया गया है।
1: नई दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: ज़राअत और किसानों की बहबूद नीजदेही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज 3 लाख मकानात की पहली खेप आंध्र प्रदेश के सुपुर्द की, जिन पर 3,600 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह मकानात प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे मरहले के तहत आंध्र प्रदेश के सुपुर्द किए गए हैं। इसके लिए गुंटूर जिले में एक तकरीब मुनाकिद की गई। जनाब चौहान ने पहले आजमाइशी हाउसिंग प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा, जिसमें 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके तहत 14 करोड़ रुपए की लागत से 177 मकानात तामीर किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू भी इस मौके पर मौजूद थे। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने इज्तिमा से खिताब करते हुए इस प्रोजेक्ट को देही मकानात को जदीद शक्ल दिए जाने की जानिब एक बड़ा कदम करार दिया।
4: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3 लाख मकान बनाने की पहली किस्त आंध्र प्रदेश के गरीबों को समर्पित की है। 100% मकान गरीबों को बनाने में आपके साथ भारत सरकार खड़ी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कम्प्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली हलकों और आसाम में 1 लोकसभा हलके के जिमनी चुनाव की मुहिम आज खत्म हो गई। मंगल को इन 6 सीटों के लिए पोलिंग कराई जाएगी और वोटों की गिनती जुमा को की जाएगी। असेंबली हलकों की पोलिंग तमिलनाडु में मधुरांतकम और धारापुरम, पुडुचेरी में थट्टन चावड़ी और मगरबी बंगाल में रेजीनगर नीज नंदीग्राम में कराई जाएगी। आसाम में पोलिंग नावगांव लोकसभा हलके में कराई जाएगी। ये असेंबली सीटें मौजूदा कानून साज अरकान की तरफ से इस्तीफा दिए जाने की वजह से खाली हो गई थीं, जबकि नौगांव लोकसभा सीट कांग्रेस रहनुमा प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी। इसी दौरान बीजेपी ने दिनेश आर्या को उत्तराखंड में राज्यसभा के 2 साल में 1 बार होने वाले आइंदा इंतखाब के लिए पार्टी उम्मीदवार

के तौर पर उतारा है। बीजेपी ने रुक्मिणी मलिक का नाम मगरबी बंगाल में राज्यसभा के जिमनी चुनाव के अपने उम्मीदवार के तौर पर पेश किया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड नीज मगरबी बंगाल में जिमनी पोलिंग इस महीने की 16 तारीख को कराई जाएगी। अदादुशुमार और प्रोग्राम पर अमल दरामद की वजारत के सेक्रेटरी सौरभ गर्ग ने आज कहा है कि भारत की इक्तसादी मजबूती, जिसे कारपोरेट की जानिब से पुख्ता कारकर्दगी और मुस्तकिल सरमायाकारी की मदद हासिल है, अब मुख्तलिफ बैनुल अक्वामी एजेंसियों के भारत की तरक्की से मुतालिक तखमीनों से ऊंचाई की तरफ बढ़ती हुई जाहिर हो रही है। नई दिल्ली में कौटिल्य इक्तसादी कॉन्क्लेव से अलग नामा निगारों से बात करते हुए जनाब गर्ग ने कहा कि भारतीय मईशत ने माली साल 2026-27 की पहली सहमाई में 7.8% शरह तरक्की हासिल करने के बाद अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि भदोही जिला अब संत रविदास नगर भदोही के तौर पर जाना जाएगा। भदोही में मुनाकिदा आज एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि नए नाम से कुरूने उस्ता के साधु संत और समाजी मुसलह संत रविदास की जिले से वाबस्तगी का इजहार होता है। इस मौके पर वजीर आला ने 1,340 करोड़ रूपये के 112 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। भारत और कनाडा कल से ओटावा में जामे इक्तसादी शराकतदारी के अपने मुजव्वजा मुआहदे CEPA के बारे में पांचवीं दौर की मुदाकरात शुरू करेंगे, क्योंकि दोनों मुल्कों का मकसद इस तजारती मुआहदे को 2026 के अवाखिर तक मुकम्मल कर लेना है। दोनों मुल्कों के आला मुजाकरातों की क्यादत में ये पांच रोजा मुजाकरात इस महीने की 9 तारीख तक जारी रहेंगे। गुज़िश्ता दौर की बातचीत नई दिल्ली में पिछले महीने 18 तारीख को मुकम्मल हुई थी, जिसके तहत अफसरान कतई मुआहदे की जानिब तेज तर पेशरफ्त पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। इस साल मार्च में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कनाडा के उनके हम मनसब मार्क कार्नी ने तय किया था कि दोनों मुल्कों के दरमियान CEPA के मुजाकरात साल के आखिर तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इसके अलावा नई दिल्ली में अपनी मीटिंग के दौरान तवानाई और अहम मैदानियात के शोबों में दो तरफा तालमेल में गहराई लाने से इत्तफाक किया था। एशिया के शोबे में भारत कनाडा की दो तरफा तजारत 2024-25 के दौरान 8.66 अरब अमरीकी डॉलर थी, जबकि इससे मुल्क के लिए भारत की बरामदात 4.22 अरब अमरीकी डॉलर थी। ईरान ने कहा है कि अबनाए हुरमुज उस वक्त तक दोबारा नहीं खोली जाएगी जब तक अमरीका उन 7 शर्तों को पूरा नहीं कर देता जो जून के एक अबूरी मुआहदे में पेश की गई हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने आज पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ के हवाले से बताया कि उन्होंने कहा है कि अबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने पर ईरान का मौकिफ पूरी तरह वाज़ह और मुसम्मम है। उन्होंने कहा है कि अबनाए हुरमुज को दोबारा उस वक्त तक नहीं खोला जाएगा जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं हो जाएंगी। ये शर्तें इस्लामाबाद मुफाहमतनामे पर मबनी हैं। इसके अलावा ईरानी फौज के तर्जुमान मोहम्मद अक्रामीनिया ने कहा है कि ईरान अमरीका के साथ अपनी हालिया जंग के बाद अपने मिसाइलों की तादाद में इजाफा करेगा। एक खबर रसा एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तनाजे से ईरान की यह जरूरत उजागर हो गई है कि वो तवील दूरी की मिसाइल तैयार करे, और मुल्क ने इस तरह के इकदाम शुरू कर दिए हैं। स्विट्जरलैंड के सदर गाय परमिलिन भारत के 3 रोजा दौरे के लिए कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। वह आला सतही वफ्द, सीनियर सरकारी अफसरान और कारोबारी लीडरों के साथ मीटिंग करेंगे। वजीर आजम मोदी और सदर परमिलिन मुख्तलिफ मामला समेत दो तरफा ताउन में पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए बाहमी बातचीत करेंगे। जापान के आईची नागोया में मुनाकिदा शानदार तकरीब के साथ एशियन गेम्स इख्तिताम पजीर हो गए। इस दौरान 43 खेलों के लिए 2 हफ्तों से ज्यादा जारी रहने वाले सनसनीखेज मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इख्तितामी प्रोग्राम में रवायती तौर पर खिलाड़ियों की परेड, एशियन गेम्स के परचम को उतारने और 2030 के मेजबान शहर दोहा को बाजाब्ता तौर पर मेजबानी सौंपने की तकरीब शामिल थी। एशियन गेम्स की अलामत समझे जाने वाली मशाल और परचम कतर के नुमाइंदों के हवाले किए गए, जिसके साथ अगले एशियाई खेलों की मेजबानी की बाजाबता तौर पर मुंतकली अमल में आई। इख्तितामी तकरीब में भारतीय तिरंगा उठाने का एहसास शूटिंग की उभरती हुई भारतीय खातून खिलाड़ी नीरो धांडा को हासिल हुआ। सोने के 2 तमगे जीतने वाली नीरो ने इस काबिले फख्र लम्हे में भारतीय दस्ते की क्यादत की। भारत मजमूई तमगों की फहरिस्त में चीन, जापान और जनूबी कोरिया के बाद 4th मकाम पर रहा। भारतीय दस्ता 85 तमगों के साथ वतन वापस लौटा, जिनमें सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगे शामिल हैं। ये एशियन गेम्स की तारीख में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तमगों की तादाद है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर।

0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि दुनिया के बदलते हुए मंजरनामे से उभरती हुई और औसत दर्जे की ताकतों के माबेन ताउन के नए मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने अमन, मजबूत सप्लाई चेन और कनेक्टिविटी को इनका अहम एजेंडा करार दिया। देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3 लाख से ज्यादा मकानात सुपुर्द किए, जिनकी लागत 3,600 करोड़ रुपए है। उन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पहले आत्माइशी हाउसिंग प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा। तमिलनाडु, पुडुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली सीटों और आसाम में 1 लोकसभा हलके के लिए जिमनी चुनाव की मुहिम अपने अख्ताम को पहुंची। वोटिंग मंगल को कराई जाएगी और एशियन गेम्स 2026 जापान में जगमगाती हुई तकरीब के दौरान अपने अख्ताम को पहुंचे। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: میڈیم وی درگین شیش بنیٹ پی کلو ہرٹس میڈیم وی سوچ گنا غب جانا شیش بنیٹ پی کلو ہرٹس دونا ایف ایم چینل رگیائی شہریا چگ میں کے ہرٹس کا دیو آکاش وانی کر گئے لین واسپت سانی تو ستر گونہ منٹ سمجھ سو سو کستا پروگرام ین مزد بلتی پروگرام رکس گد پروگرام فرچکن پوین سبتے حسن کلیم